0: आपका अच्छा हो जाएगा, आपके जो भविष्य को उसका जीवन भी आपका सुखमय हो जाएगा, खुशी से भर जाएगा। लेकिन अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं अपने जीवन में जो आपके साथ चल रहा है, वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं और उसका विरोध करते हैं, तो आप एक दुखी जीवन जी रहे होंगे, क्योंकि आपने वो एक्सेप्टेंस नहीं करी है, आपने उसको स्वीकार नहीं करा है, आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप हमेशा अपने लिए ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, यानी कि आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं अगर आप पुरानी बातों को लेकर हमेशा अपने मन में बैठे रहेंगे और जैसा उसको सोचेंगे कि ये जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो आप ही के लिए नुकसानदायक है और आप इसमें दुखी रहेंगे। तो ये सोचिए, तो अगर आप ये पुराना बातें सोचते रहेंगे तो आपका मन भी दुखी होगा, बिना शांति और आनंद के आपका जीवन कटेगा, ना आपको शांति मिलेगी ना आपको कोई सुख मिलेगा। इसलिए आज ही आप अपना मन बना लें और संकल्प लें कि जो कुछ भी होगा उसे स्वीकार करेंगे, यह जानते हुए कि यह आपका कर्म है और आप जीवन नामक इस नाटक का आनंद लेंगे। तो ये जहां आपने स्वीकार कर लिया जो चल रहा है, ये हमारे जन्मों जन्मांतर के जो हमारा जीवन रहा है, हमारे जन्म रहे हैं, तो उसका ही जो हमने अच्छा बुरा जो करा है उसी का हम कर्म भोग रहे हैं। तो एक बार स्वीकार कर लिया तो आपका जीवन अच्छा कटेगा और आप अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं, आगे का जीवन अच्छा बना सकते हैं, ये सोच कर क्या कर कि हम अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे तो आज आने वाला पल आपका अच्छा कटेगा। तो संजय जी आइए एक और गीत हो जाए।
1: बिल्कुल, एक और गीत हो जाए तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। संदेश जो आज का है कि जीवन का दुख सुख

रुकना हमें नहीं चाहिए। ओ राही किशोर कुमार जी के आवाज में हम सब सुने। दोस्तों, ये ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम और इस बात को भी हम जानते हैं कि वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाती है। और ये जीवन का सुख दुख के अंतर्गत जो हम सबको अनुराधा जी सुना रहे हैं, तो अनुराधा जी आप अपना वृतांत को आगे ले जाइए।

0: पहले बात कर रहे थे कि जीवन में अच्छा बुरा चलता रहेगा और ये आपके ऊपर है कि आप अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। पर अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि जो पिछली बातों को आप भुलाना चाहते हैं पर भूल नहीं पा रहे हैं और उससे आपका मन दुखी हो रहा है और आप तनाव में हैं, तो उसका एक उपाय है कि आप क्या कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप तनाव में हैं और आप कुछ खो सकते हैं, तो आप ये व्यायाम कर सकते हैं, जैसा है कि आप गहरी सांस लें, खूब गहरी सांस लें। गहरी सांस लेने से आपको एक बहुत ही एक शांति सी एक एहसास होएगा, शांति का एहसास होएगा, एक सुकून का एहसास होगा। जहां आपको लगता है थोड़ा तनाव है और आप अपना जीवन अच्छा व्यतीत करना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं, तो आप अपने आप में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप रोज सुबह उठकर, या सुबह ना भी हो, दिन में कहीं कभी भी किसी भी वक्त आप गहरी सांस लें। अच्छा होगा कि खुली हवा में लें, अगर बाहर हो तो बहुत अच्छा, ना भी हो तो जहां हो आप वहां पर थोड़ा गहरी सांस लें और अपनी सांस धीरे धीरे छोड़ें, तो आपका मन एकदम से शांत हो जाएगा। तनाव अगर महसूस करने पर ये आप ये अगर टिप्स अपनाएंगे तो आपको बहुत इसका आपको आराम मिलेगा। दूसरी चीज आप जो कर सकते हैं, अपनी आंखें बंद करें। बंद करके जो आपके साथ खुशियों के पल जो भी कोई अच्छे आपके बीते हैं उन्हें याद करें, या कोई भी अच्छी कोई किसी चीज की या कोई आपके साथ अच्छा हुआ है उसकी कल्पना करें, या कोई भी इंसान जो आपके साथ अच्छा करता है, या कोई भी आपके जीवन में जो अच्छी बात घटी है, या बच्चों के बारे में, या परिवार के बारे में, या जो भी आपको अच्छा लगता है उसकी कल्पना करें, उसके बारे में सोचें, तो एकदम से आपका मन शांत होगा। और उसके बाद आप धीमी और गहरी सांस लें। जब भी आप अच्छी कल्पना कर रहे हैं तो आप धीमी और अच्छी और गहरी सांस लें, अपने मुख या नाक से धीरे धीरे फिर सांस छोड़ें। पहले तो आपने एक कोई भी चीज अच्छी चीज के बारे में सोचेंगे, और जब सोचने लगे तो आपने पहले धीमी गहरी सांस ली, पहले इनहेल करा और धीरे धीरे अपने मुंह या नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ें। आप अपनी सांस को छोड़ें, एक्सहेल करें। ये आप कई बार धीरे धीरे ये कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है आप आपके पास 5 मिनट का टाइम है, 10 मिनट का टाइम, 15, जितना भी आपके पास वक्त है, आप ये ऐसे गहरी सांस लें और छोड़ें, और इस प्रक्रिया को कई बार आप दोहराएं। इसको काफ़ी बार आप कर सकते हैं, जब तक कि आप खुद को शांत महसूस ना करेंगे करने लगे। जब आपको एकदम से ये करने पर थोड़ा सा आराम मिले, शांति मिले, तो ये आप तब तक करते रहें। अगर आपको धीमी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो हर सांस के साथ 5 तक गिनती करें। तो दूसरा तरीका यह है कि आप एक बार सांस लें और उसको रोक कर रखें और 5 तक गिनती करें, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें। जब सांस छोड़ते हैं, फिर से आप थोड़ा रुकें, फिर से थोड़ी देर बाद फिर से लंबी सांस लें, 5 मिनट की गिनती, 5 मिनट तक गिनती गिनें और फिर उसको छोड़ें। तो ये तरीका भी होता है, और आप आप ये जब एक बार शुरू कर देंगे, आप देखेंगे आपका तनाव कितना खत्म हो जाता है, आप एकदम से आपकी प्रक्रिया आपको शांत आपको लगने लगेगी। जब ये करें उसके बाद आप दुखी पलों को स्वीकार कर लें, जो आपके साथ दुख हुआ है उसको स्वीकार कर लें और अपने मन को बताएं कि जो हो गया है वो आपने स्वीकार कर लिया है। देखिए, अच्छी और बुरी चीज़ें सभी के साथ होती हैं। अगर आप अच्छी बातों के साथ बुरी बातों को भी अपनाने की आदत डाल लेंगे तो आपकी खुशियां डबल हो जाएंगी, दुगनी हो जाएंगी। अगर आप को कोई बुरी खबर मिलती है या कोई गलती हो जाती है या ऐसा लगता है कि आप किसी मुसीबत में हैं, तो भी खुश रहने की कोशिश करें, दुख की भावना को स्वीकार करें, एक पल के लिए खुद को दुख का एहसास करने दें और फिर ये सोचें कि आप इस दुख के साथ रह सकते हैं क्या। आपको तुरंत ही जवाब मिल जाएगा। ये जीवन इतना आसान नहीं होता है जीना, पर जीवन तो जीना ही है। जीवन का मतलब ही है कि हमारे साथ खुशी के पल भी होंगे, जहाँ खुशी होगी दुख भी है। जैसे कहते हैं ना, सूरज उगता है, डूबता भी है, फिर चांद आता है, चांद आता है उसके बाद दिन, फिर से अगले दिन सूरज उगता है। तो ये दिन रात जैसे रहता है, ऐसी जीवन की शैली में दुख सुख तो चलता है। ये हमारे ऊपर है, हमारे हाथ पर है कि हम इसको कैसे व्यतीत करते हैं, कैसे बिताते हैं। और ये हमारे हाथ पर है कि हम इसको, हम दुख के पलों को हम कैसे स्वीकार करते हैं और अपना जीवन कैसे हम उसको सह कर भी स्वीकार करके हम खुश रहकर अपना जीवन बिता सकते हैं, जीवन को हम अच्छा बना सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज की बातें आपको पसंद आई होंगी। चलिए संजय जी, एक और अच्छा सा गीत हो जाए।
1: जरूर अनुराधा जी, एक गीत हमने खोज करके रख चुके हैं कि ये जीवन है, इस जीवन को क्या करना है, ये गीत से हम सुनते हैं।

समय सब कुछ बदल देता है, जरूरत सिर्फ सब्र की है। अपना जीवन व्यतीत कीजिए और समय पे विश्वास रखिए, क्योंकि समय सब कुछ बदल देता है। कहते हैं कि जरूरत सिर्फ सब्र की है, और जिस प्रकार से अभी अनुराधा जी ने संदेश रखा, आप क्या कर सकते हैं ये मैं नहीं कह सकता हूं। फाहुन रेडियो बस रेडियो बनाना जानता है, करना तो आपको है।

0: कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश में कुछ और संदेश रखना है और बबली जी भी अपना तैयारी करके बैठे हैं।
1: सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आपको एक वृत्तांत सुनाने की कोशिश करूंगी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलरी क्लिंटन ने हार्ड चॉइसेस नामक एक किताब लिखी है। इसमें उन्होंने एक चौंकाने वाली बात का खुलासा किया है। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कुछ हफ्ते बाद एक रूसी सैनिक को घर जाने की छुट्टी मिलती है। छुट्टी पर अपने गांव गया यह सैनिक गांव में प्रवेश करते ही चौंक जाता है। उसके गांव पर दुश्मन ने बमबारी कर दी है। सैन्य वाहनों में लाशों के ढेर लगे हुए थे। वहां सैकड़ों लाशें पड़ी थी। उन्हें सामूहिक कब्र में ले जाने की तैयारी थी। सैनिक कुछ देर तक शवों के सामने खड़ा रहा। अचानक उसकी नज़र एक महिला के पैरों पर एक जोड़ी जूतों पर पड़ी।

वह उन जूतों जैसे लग रहे थे जो उसने एक दिन पहले अपनी पत्नी के लिए खरीदे थे। वह तुरंत घर भागा। घर पर कोई नहीं था। वह जल्दी से वापस लौटा और वाहन में शव की जांच की। वह उसकी ही पत्नी थी। सदमे में आकर उसने शव देने की गुहार लगाई और कहा कि वह उसे सार्वजनिक कब्र में नहीं बल्कि एक निजी कब्र में दफनाना चाहता है। उसे इजाज़त मिल गई। जब उसने बड़ी मुश्किल से शव को गाड़ी से बाहर निकाला, वह यह देखकर दंग रह गया कि उसकी पत्नी अभी भी जिंदा थी। वह उसे तुरंत अस्पताल ले गया। वहां जरूरी इलाज के बाद सैनिक की पत्नी जिंदा हो गई। इस दुर्घटना के कुछ साल बाद पत्नी, जो लगभग जिंदा ही दफन होने वाली थी, गर्भवती हो गई। एक लड़के का जन्म हुआ। जन्म के गवाहों ने लड़के का नाम रखा

क्या आप जानते हैं उसका नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। क्या आपने यह नाम कहीं सुना है? यह नाम यही आज वर्तमान रूसी राष्ट्रपति हैं। वह एक ऐसी माँ से पैदा हुआ जिसे कब्र में जाना चाहिए था।

संयोग से और गर्भ में ही देवता बन गया और इस दुनिया में अवतरित हुआ और आज दुनिया पर राज करने वाली शक्तियों में से एक है। क्या हमें इस घटना को भाग्य मानना चाहिए या इसे कुछ और कहना चाहिए?

0: बबली जी, ये संदेश जो आपने रखे, ये जो रूसलैंड का प्रेसिडेंट ना,
1: हाँ जी,
0: और ये लिखने वाले है बिल क्लिंटन का पत्नी
1: हिलरी क्लिंटन ने लिखा है इस किताब को, और रूसी भाषा में। तो
0: और जो जा करके कि कितना ये एक ऐसा संदेश है, ये मैं कभी सुना नहीं था, फिर भी रेडियो फाहन कुछ ना कुछ संदेश जो हमारे खोजी सेना रखते हैं, तो कहने के तात्पर्य यह है कि वो उनकी माँ यानी कि पुतिन का माँ को ऐसा वृतांत हुआ था, लोग समझते थे कि वो मर गए, पर ऐसा नहीं हुआ।
1: नहीं, जो पुतिन के पिता थे वो सैनिक थे, सेना में थे।
0: हाँ, और ये बात है कि
1: जब वो वापिस आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर लड़ाई छिड़ी हुई है और शवों को दफनाने के लिए लेके जा रहे,
0: ढेर लगा हुआ है।
1: हाँ जी,
0: और उसमें
1: और उन्होंने अपने पत्नी के जूतों को पहचाना,
0: यानी जूता से वो पहचान
1: की। हाँ जी,

0: और इससे ये अर्थ निकलता है कि जब किसी को बचना हो, कहते बचाने वाला भगवान, अगर पुतिन की माँ को अगर दफना देते तो फिर पुतिन कहाँ से पैदा होता।
1: बिल्कुल सही कहते हैं, बचाने वाला भगवान और मारने वाला भी भगवान एक गीत है ना।
0: हाँ जी, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान।

0: जाते हैं, जो मुकाम गुजर जाते हैं वो फिर कभी नहीं आते हैं। बबली जी, ये कौन सा फिल्म का गीत चलाया गया?
1: इस फिल्म का नाम है आपकी कसम।
0: आपकी कसम फिल्म का नाम, जिसमें राजेश खन्ना ने काम किया ना?
1: हाँ जी, राजेश खन्ना, मुमताज।
0: सुंदर संदेश गीत और जो रखा गया कहने के,
1: और लिखने वाले ने देखो कितना अच्छा गीत, उसका एक एक शब्द कितना अच्छा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इतना सुंदर सा संदेश रखा है
1: कि जो आज का दिन है वो कल लौट कर नहीं आएगा।
0: जो आज का दिन है कल वापसी, कल वापस नहीं आता।
1: हाँ, क्योंकि नया दिन आता है, और जो लोग यहाँ से चले गए हैं वो भी वापस नहीं आते। अगर एक पत्ता पेड़ से गिर जाए तो दोबारा भी नहीं लग सकता, उसमें नए पत्ते आते हैं दोबारा।
0: नए पत्ते आते, पर मेरे ख्याल से कुछ आज कुछ चुटकुला भी सुनाने वाले हो आप?
1: हाँ जी, कोशिश करूंगी चुटकुला सुनाने का।
0: तो देखते हैं क्या सुनाने वाले हो आप, रख दीजिए।
1: एक महिला एक साधु के पास गई और बोली, महाराज आपने प्रवचन में कहा था अहंकार ही सबसे बड़ा पाप है, पर जब मैं आईना देखती हूँ तो सोचती हूँ मैं कितनी सुंदर हूँ, तो मुझे बहुत अहंकार हो जाता है, मैं क्या करूँ? साधु ने कहा, बेटी ये अहंकार नहीं गलत फहमी है, और गलत फहमी कोई पाप नहीं है।
0: आपने सुना कि गलत फहमी में ना पड़ो ना?
1: हाँ जी,
0: क्योंकि जब थोड़ा से उसमें गलत बोल देना तो वो फैमिली हो जाता है। हाँ, और फैमी और फैमिली में दो बड़का अंतर है।
1: हाँ, अंतर तो है, गलत फैमिली हो गया कि गलत परिवार,
0: परिवार,
1: और गलत फैमी कि किसी हम किसी बात को लेके चलते हैं कि वो अच्छी बात है, लेकिन अपने उसमें गलत फैमी में रहते हैं।
0: तो फैमी और फैमिली का अंतर भी हो गया। सुनो वालों,

ना घमंड में रहो, ना गुरूर में रहो, बस जिससे विचार ना मिलते उसे दूर रहो।

तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि मुस्कुराओ, क्या गम है जिंदगी में, टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। इन्हीं शब्दों और विचारों के साथ सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार।

वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त दे कर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

फिर भी दिल के करीब है निशाना तेरा।

आज के कार्यक्रम में हमारे साथ सहयोग दिए अनुराधा चंद्र जी जो भारत से कनेक्ट हुए थे, और बबली आसरा जी, और मैं हूँ आपका सेवक संजय। आशा यही रखता हूँ कि कुछ न कुछ संदेश आप तक जरूर पहुँचे होंगे।

लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को एक शुभ दिवस, नमस्कार, फिर मिलेंगे।

0: वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा। रुब्ररू मिलने का मौका नहीं पा रहा, अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। ये फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो है और हम सब यहाँ फिर उपस्थित हो गए स्टूडियो में ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम लेकर। कार्यक्रम में सहयोग देने वाले हैं आज शांता जी, जो अपने ओर से और हम सब का संदेश देने वाले हैं। शांता जी, क्या संदेश है, फिर हम आज का और विषय उसके बारे में बात करेंगे।
1: जय माता जी, जय माता दी, करते जाओ शाम सवेरे। माता, आपने मिटा दिया मेरे जीवन के सभी अंधेरे। जय माता जी, यहाँ से हमारे साप्ताहिक प्रोग्राम ज्योति का प्रकाश शुरू होने को आ गई है और आपको मेरी यानी कि शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम यहाँ से आप तक पहुँचे।
0: दोस्तों, शांता जी ने अपना और यानी कि संदेश को सुना चुके हैं और आज कार्यक्रम में सहयोग देने दे रहे हैं बबली जी।
2: सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार, जय माता दी।
0: ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश है और शांता जी, इसमें आप कुछ और कहने वाले हैं कि विषय क्या है आज का?
1: विषय तो जैसे इस वक्त में नवरात्र चल रहे है, तो नवरात्र के विषय भी आज भी रहेगा।
0: तो नवरात्रि जैसे चल रहे है दोस्तों, तो हम सब क्यों ना उस ओर छलांग लगा देते हैं, क्योंकि समय कम है और संदेश शायद ज़्यादा होगा। तो जो लोग अपने घर से और ये कार्यक्रम को बैठ के सुन रहे हैं, तो हम एक सुंदर सा गीत के ओर बढ़ रहे हैं और देखा जाए कि आज का और नवरात्रि के अंतर्गत विषय जो नवरात्रि रखा गया है, उसमें कौन सा संदेश हम सबको और मिलने वाले हैं। हम बढ़ते हैं एक सुंदर गीत के ओर।

0: ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम है और हम सब यहाँ आज उपस्थित हुए हैं और सुंदर सुंदर गीतों के साथ ये कार्यक्रम को सजाया जाएगा। और शांता जी, क्या नवरात्रि से पहले आप किस प्रकार की तैयारी करते हो?
1: हाँ जी, वैसे तो हम तो सबसे पहला है कि हम उत्सव में रहती हूँ, मंगन में रहती हूँ, क्योंकि वैसे ही नॉर्मल मंगन में रहती हूँ और ऐसे भी हम मंगन में रहती हूँ, क्योंकि ये एक पर्व या त्यौहार है जहाँ पर हौसला होता है कि कोई के यानी कि माता की सेवा करने के पर उनका प्यार मिलता है, उनका सेवा करना पड़ता है, सभी कुछ मिलता है कुछ करने के लिए, इसमें बहुत आनंद मिलते हैं मेरे को।
0: ये कार्यक्रम जो हम सब इस समय यहाँ सजाया जा रहा है दोस्तों, तो शांता जी को आनंद मिलता है और बबली जी, इसमें ये नवरात्रि से पहले आपका तैयारी में और क्या करते हो आप?
2: मैं तो नवरात्रि से पहले घर की सफाई करती हूँ, पहले सोचती हूँ घर स्वच्छ होगा तो फिर मन भी स्वच्छ होगा। तो
0: यानी कि सफाई आदि करते हैं। और शांता जी, आपने मुझसे पूछा नहीं मैं क्या करता हूँ।
1: वही तो मैं देख रही तेरी तरफ, अगर आप भी मौका दे तो मैं भी पूछूं आपसे, संजय जी आप क्या कर रहे हो?
0: बस यही कहना चाहूँगा शांता जी कि हम नवरात्रि जब प्रारंभ हो जाए ना, तो बस यही एक ही चीज सिर में रहता है कि बड़ा निराला, बड़ा ही पावन, मन भवन एक नाता, एक तरफ है सारी दुनिया तो दूसरी तरफ है माता, यही बस यही रहता है सिर में। और नवरात्रि शुरू होता है धीरे धीरे और भी नवरात्रि का अंत के ओर हम सब पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अभी कुछ और संदेश हम सब आपके लिए लेकर आने वाले हैं।

0: जय जय माँ, जय जगदम्बे माँ। और शांता जी,
1: हाँ,
0: जैसे कि आपने कह रहे थे कि आज और कुछ संदेश हम सबको और सुनाने वाले हैं, आप कौन सा संदेश आप हम सबको सुनाने वाले हैं?
1: हाँ, वैसे तो हम अकेले नहीं सुनाएंगे, हम यहाँ तीन हैगा, तो यहाँ हम तीन अपने अपने बारे में सुनाएंगे। तो हम पहले सुनाते हैं कि नौ दीप जले नौ फूल खिले, नौ दीप जले नौ फूल खिले, रोज नई बहार मिले, नौ रात्रि के इस पर्व पर आपको यानी कि हम सभी को माँ का आशीर्वाद मिले। तो यहाँ से हम के एक प्रश्न है, तो बबली जी, माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए, माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कौन सी उपाय करनी चाहिए? ज़रा हम मुझे भी बताओ, हमारे साथ साथ है। तो वैसे हमारे श्रोतागण जो भी है सुन रहे हैं पावन हिंदुस्तानी रेडियो के, उन सभी को ये उत्साह है जानने के लिए, तो ज़रा आप अपना मुखारबिंद से जरूर सुनाए।
2: शांता जी, मैं माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कोशिश करूँगी कुछ सुनाने के लिए। तो माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि दुर्गा भक्तों द्वारा सच्चे मन से की गई व्रत पूजा से प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। लेकिन यदि कुछ उपाय किए जाएँ तो देवी माँ जातक पर विशेष कृपा करती हैं।
1: अच्छा, हाँ, जातक का हजार हम पूछे आपसे, तो
2: जातक का मतलब इंसान, मनुष्य।
1: मनुष्य जो भी पूजा प्रार्थना करते हैं मन चित से लगाकर, माँ के जो ध्यान धरते हैं उनकी मनोकामना जो है, शुभ शुभ मनोकामना जो है वो पूर्ण होते हैं।
2: हाँ जी।
1: अच्छा, ये तो बहुत अच्छा बात है।
0: शांता जी, इस पे मैं भी कुछ कहना चाहूंगा।
1: हाँ, जरूर।
0: आप तो ये जब मंदिर जाते हैं ना, तो या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपे न संस्थिता, ये जरूर साथ में पंडित लोग के साथ कहते होंगे ना,
1: हरदम या सुनाते हैं इस
0: तो
1: मंत्र में भी आते हैं।
0: इसका भी खुलासा हो गया कि हम क्या कहते हैं।
1: हाँ, तो जरा आप भी बता दे।
0: नहीं, बस यही, जैसे कि बबली जी ने अभी कहा है कि जातक का मतलब क्या है।
1: अच्छा।
0: और इसी प्रकार से उसे भी हम सब मिल करके गवाते हैं, पर कभी काल के हम सब कितने बात संस्कृत शब्द होते हैं और हमें नहीं पता होते, पर हम सहयोग देते रहते हैं। और ऐसे भी कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सब कुछ ना कुछ संदेश और लेकर पहुँचते हैं, जिसमें हमारे जीवन का ज्योति जो है, जीवन का ज्योति में थोड़ा और प्रकाश आ जाए, यही लक्ष्य लेकर ये कार्यक्रम बनाया जाता है। और इसमें कुछ ना कुछ संदेश लेकर के आते हैं हम सब। और कौन सा प्रश्न आप करने वाले हैं शांता जी?
1: वो ये है कि माँ दुर्गा के कितने स्वरूप है बबली जी, आपको पता है? हाँ जी, आपको पता है, ये मुझे नहीं पूछना चाहिए, तो फिर भी पूछ लेती हूँ हमारे श्रोतागण के जो भी पूछना चाहती है।
2: माँ दुर्गा के नौ स्वरूप है
1: जी,
2: शांता जी।
1: अच्छा, माँ दुर्गा के नौ स्वरूप है संजय जी, और कौन कौन सी है अगर आप चाहे बताने के लिए, तो हम भी उत्साह है सुनने के लिए भी संजय जी।
0: शांता जी, ये तो आपने पूछे कि कौन स्वरूप है माता के, तो ये गत सप्ताह के कार्यक्रम में और हम सब भी सुने थे कि माँ के नौ स्वरूप शुरू होता है।
1: पहली है शैलपुत्री, पहला जो है माँ के स्वरूप शैलपुत्री, और दूसरी है ब्रह्मचारिणी,
0: तीसरी
1: चंद्रघंटा,
0: चौथा
1: है कुष्मंडा, और पांचवा है स्कंद माता, सैस्दह है कत्यायनी, सातवा है कालरात्रि, आठवा है महागौरी, और नौवा आखिरी जो है सिद्धिदात्री। ये नौ माता के नौ स्वरूप है जो अलग अलग, जो हर एक रोज इनकी माँ की पूजा की जाती है।
0: हाँ जी दोस्तों, तो हम क्यों ना एक सुंदर से माँ के भेंट की ओर बढ़ेंगे, जिसे हमें, जैसे कि शांता जी ने कहे कि माँ के नौ रूप है, ये तो शांता जी ज़्यादा तादाद में हम सभी जानते थे, और आपने उसे कह के और भी हम लोग के थोड़ा से ख्याल करवा दिए, पर इसमें संदेश और क्या है, जरूर अभी उस ओर भी बढ़ेंगे। पहले हम चलते हैं एक माता का सुंदर सा भेंट के ओर।

0: भक्तों के दर्शन दे दिए एक छोटी सी कन्या। शांता जी, अभी आपने हम सबको बताए कि माँ के नौ रूप, और नौ रूप के बारे में आप नौ नामों को और हम सबको बताएं, फिर भी उन नामों पे और क्या संदेश है? अगर उस पे हम सबके कुछ और संदेश दे सके तो जरूर बताएं।
1: जी संजय जी, जैसे अभी ने हम गीत से पहले जो हमने कहा ना कि माता के नौ स्वरूप होते हैं, तो नौ स्वरूप में से पहला स्वरूप है जैसे कहा कही थी शैलपुत्री माँ, तो उसको हम थोड़ा से दश में बता दे। ऑफ द एर्थ दाह फन नवरात्रि वर दुर्गा माता फॉर एर्थ इन द फॉरम फन शैलपुत्री दुर्गा फन दोख्तर फन हिमालया। शैलपुत्री इज एन अब्सोल्यूट फॉरम फन मदर नेचर एंड वर्थ ओक वेल देवी पार्वती हनुम द मेथ हसेल फन महादेव एंड मदर फन गणेश एंड कार्तिके जी। In the form van Shailputri wordt Durga Mata aanbeden als een jong meisje, een kind, en zit zij in de eerste fase van de vrouw. Shailputri staat symbool voor liefde, loyaliteit en standvastigheid. Toen je had छोटा रूप में डच भाषा में हमने आपसे बता दी, तो यहाँ से हम बढ़ चलते हैं सुनने के लिए हमारे अपने भाषा में, हिंदी भाषा में जो हमारे जो साथ में है बबली जी, उनके मुखारबिंद से हम भी सुनेंगे कि और क्या वो बता रही है।
2: माँ शैलपुत्री जी को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है। माँ के भक्त इस दिन पीला वस्त्र पहनकर उन्हें घी चढ़ाते हैं। इस दिन देवी माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से व्यक्ति को हर तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है।
0: शांता जी,
1: हाँ जी,
0: जरा ये तो बताइए दूसरा दिवस वाला।
1: हाँ, वही मैं शुरुआत करने को जा रही थी। दूसरा दिवस के है ब्रह्मचारिणी, माता ब्रह्मचारिणी। द्वैत फॉरम फॉर दुर्गा माता इस ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा बतेकंद हीर मेडिटेट सीतने तपस्या। ब्रह्मचारिणी स्लीप यार लंग ऑफ द फ्लोर फन हेड पोस ऑन एन ओपन हेमल ओम हर तपस्या मेट सक्सेस आफ्टर ओंदन सो फर दिन द सद नाम तपस्चारिणी ऑफ ब्रह्मचारिणी। दिस तपस्या फॉर ब्रह्मा ओम शिवाजी आज हर एक नोट krijgen. Brahmacharni wordt op de tweede dag van de Navratri aanbeden voor deugzaamheid, vrede, welvaart en adel. Haji.
0: तो बबली जी, इस पे ब्रह्मचारिणी माता के अंतर्गत आपके ओर से क्या संदेश है?
2: मेरी ओर से यही संदेश है कि माँ ब्रह्मचारिणी को उनके भक्त हरे वस्त्र पहनकर शक्कर का भोग लगाते हैं। इस दिन माता को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन इन खास चीज़ों का दान करने से आयु लंबी होती है।
1: चीनी और शक्कर, बबली जी आप थोड़ा से इसका डिफरेंट बताना। चीनी क्या है? चीनी तो शक्कर जो हम रोज किचन में कुकरों में इस्तेमाल करते हैं, और ये?
2: हाँ जी, और शक्कर है, गुड़ है, गुड़ से शक्कर बनती है।
1: गुड़ से, और आपने एक बात और कहा, चीनी और
2: शक्कर।
1: हाँ, चीनी और शक्कर।
2: हाँ जी, हाँ जी,
1: चीनी और शक्कर।
2: चीनी होती शक्कर,
1: हाँ,
2: और शक्कर होती है केन से बनता है गुड़
1: जी,
2: और गुड़ से बनती है शक्कर।
0: तो अच्छा। ये तो होता है शांता जी, अगर मैं आपसे कहूँ।
1: हाँ जी।
0: तो एक बार ऐसा हुआ जैसे कि बात हो रहा है, तो गुड़ क्या, तो मैं हरिद्वार से और गाड़ी से निकल करके और दिल्ली को आ रहे थे
1: जी।
0: तो आ रहे थे तो वहाँ ड्राइवर ने पूछा हमसे कि भाई और गुड़ खरीदना है? नहीं, वो वहाँ खरीदना नहीं बोला, बोले गुड़ लेना है। तो मैंने बोला चलो देख लेते हैं। तो मैं गया वहाँ पर, वही रास्ते पे पड़ता है जहाँ पर लोग गुड़ बनाते हैं। तो वहाँ जा कर के हमने देखा कि किस प्रकार से गुड़ बनाया जाता है। सो फिल हंत वैरक नॉक्सेट्स, अभी तक तो सोचा जाए कि हम सब इतना दूर पहुँच गए, पर ये तो भी हमारे परिस्थिति भी दिखा चुके कि हम लोग सोचते थे कि हम सब बहुत दूर पहुंच गए हैं, आया एक महामारी सबके और नीचे कर दिया। और इसी प्रकार से ये संदेश मैं जरूर कहना चाहूँगा कि वहाँ मैं जब गया,
1: हाँ जी,
0: तो देखा कि किस प्रकार से गुड़ बनाया जाता है। अभी तक जो हांतवर्क अतिस अलीमार हांतवर्क और वहाँ पर जिस प्रकार से केन को और उसमें से जो जो रस निकाला जाता है, निकाल करके उसे और कैसे बनाया जाता है, उसमें से कितना और खेमिस प्रोडक्ट निकल आते हैं।
1: वो गुड़ जो है वो केन से बनता है ना,
0: केन
1: उसका रस जो है गन्ना के रस निकाल करके उसको पकाते हैं।
0: पकाते हैं सिर्फ नहीं, बर और काम हो जाता है शांता जी, उसमें कुछ और मिलावट भी रखा जाता है, क्योंकि एक आदमी वहाँ एक रस्सी पकड़ के खाली पैर से अपना दबा रहा था कुछ, तो बोले मैंने प्रश्न किया कि भाई आप क्या कर रहे हैं, तो बोले मैं इसका केमिकल बना रहा हूँ, शायद असली खेमिस नहीं रहा होगा पर कुछ बना रहे थे, उसमें डाला जाता है। और हेल बिसोंदर मनीर फान अहमद फरफार्दख फान गुड़, जो अभी तक भारत में और कितने तादाद में हांतमातख बनाया जाता है। चलो हम सब एक गीत के ओर बढ़ने से पहले क्यों ना हम तीसरा दिवस के अंतर्गत में संदेश सुन लेते हैं, तो फिर और आगे बढ़ेंगे। शांता जी, तीसरा दिवस जो नवरात्रि के होता है तो वो किस माता के नाम से और हम सब भजते हैं?
1: तीसरा माता के नाम है चंद्र घंटा। The there the form of Durga Mata is Chandra Ghanta, had four hoof is Batek med man sickle Chandra. The leg of the form of an temple bell Ghanta. This isliye naam dhara Chandra Ghanta. Fandar the naam Chandra Ghanta. Dur Chandra Ghanta ta anbedan worden alle negatieve energieën zowel innerlijk als uitwendig vernietig. Chandra Ghanta brengt hiermee zuiverheid, geluk, kennis en vrede. Chandra Ghanta staat altijd, altijd, altijd klaar om het kwaadaardige te vernietigen. Maar voor een bhakt verschijnt ze altijd als de vriendelijke en medelevende moeder. Dus jis swaroop mein aap maa ko yaad karoge, wahi swaroop mein aap ko maa apna darshan deti hai.
0: Heel mooi verteld Shanta ji, jo apna sandesh maa Chandra Ghanta ke baare mein. Par Babli ji, aapke is pe kuch aur sandesh hai ya हम सब एक सुंदर सा गीत की ओर? चलो कुछ जरूर आपके पास इसके बारे में संदेश होगा।
2: हाँ जी, जरूर है। माँ चंद्र घंटा को दूध और दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है, जैसे खीर और मिठाई। माना जाता है कि इन चीज़ों का दान करने से माँ चंद्र घंटा खुश होती हैं और व्यक्ति के सभी दुखों का नाश करती हैं।
0: ऐसा संदेश देखिए सुनने वालों, ये बात हो जाता है कि हम सब ये संदेश जो कहीं से निकाला गया है और हमारे विशेषज्ञ लोग हम सब के लिए धरते हैं और इसे हम सब आपके साथ बांट रहे हैं, ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो शांता जी, ऐसा क्यों ना क्यों कि हम सब और धीरे धीरे अभी एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।

0: दोस्तों, हम सब कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश में यहाँ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं और आपके लिए कुछ न कुछ संदेश जरूर हम सब सुनाने वाले हैं, रखने वाले हैं। और शांता जी भी और संदेश लेकर आए, क्योंकि अभी तक तो शांता जी,
1: हाँ जी,
0: माता के संदेशों में सिर्फ तीन ही के पास पहुँचे हैं आप, और है ना होना
1: नौ माता के स्वरूप के यहाँ हम विज्ञान करेंगे। तो अभी तो समय है, तो समय के अनुसार हम बढ़ते ही चलेंगे।
0: नौ माता का नौ स्वरूप। शांता जी, एक यहाँ संदेश आया है।
1: हाँ बताओ जी।
0: संदेश आया है कि जमीन और मुकद्दर की एक ही फितरत है, जो भी बोया है वही और निकलता है, वो निकलना तय है। और ऐसा इसके बारे में क्या ख्याल है आपका?
1: ये सिंपल से बात है कि अगर जैसा आप करोगे, जैसा मैं भी करूँगी, वैसा ही फल मिलेगा। जैसे करनी वैसे भरनी, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कही तासु फल चाखा। ये एक बूढ़ी माँ हरदम कहती थी, हालांकि वो बूढ़ी माँ अब नहीं है, पर ये शब्द हमारे कानों में दिमाग में बैठ गए हैं। तो हर एक का काम करने से पहले, कोई हैंडलिंग लेवे से पहले ये शब्द कान में गूंजने लगते हैं।
0: अच्छा, देखो ये बढ़िया बात है कि अपने पुरखों से सीखे हुए और कोई भी कार्य आप करें तो वो पुरानी बातें, वो बातें जो संदेश रूप से हम सबके पास दिया गया है,
1: कवच बन के खड़ा हो जाता है।
0: बबली जी, इस पे क्या संदेश है आपका?
2: मेरा भी यही मानना है कि इंसान जो बोएगा वही काटेगा। तो आज हम जो काम करेंगे उसका फल हमें बाद में जरूर भुगतना पड़ता है।
0: तो जरूर हम सब आगे कार्यक्रम में बढ़ेंगे। कार्यक्रम आगे बढ़ते हुए और विषय रखा गया है नवरात्रि, और नवरात्रि के अंतर्गत में शांता जी और बबली जी काफी संदेश लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं स्टूडियो में। और
1: बिल्कुल हम सब पूरी तैयारी के साथ यहाँ,
0: पूरी तैयारी के साथ और पिटारा से भजनों के लेकर के, सुंदर सुंदर गीतों के लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए। तो दोस्तों, अभी कार्यक्रम तो चल रहा है, आप सुनते रहना कौन कौन सा संदेश आपके लिए प्रस्तुत करने वाले हैं हम सब, क्योंकि ऐसा ना हो। शांता जी, ये भी संदेश आया कि ऐसा बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। तो आप जो आ ही गया है तो लोग जरूर इंतजार में हैं, और क्या संदेश है हम सबको सुनावे?
1: कहते हैं जगत पालन हार है माँ, जगत पालन हार है माँ, मुक्ति का धाम है माँ। तो यहाँ से हम आपको सुनाते हैं फिर ददाख जो है माँ दुर्गा के स्वरूप है, और वो है कुशमंडा। कुशमंडा माता के फिर द स्वरूप है, द फिर द फॉर्म फॉर दुर्गा माता इस कुशमंडा एंड वॉर्ड ओक वेल द आख हांद देवी अस्त बुझा हनुमत। हाँ, दस आठ गो हाट है, उसको अष्टभुजा कहते हैं। द नाम कुशमंडा बस्तात अर्थ द्री संस्कृत वर्दन कु यानी कि क्लैन कुशम वारमत एन इनर्शी एन अंडा बतेकन कॉस्मिस यानी कि ऐ अंडा स्पर्श अंडा। तो है अंतलित करल जाए तो ऐसे आते हैं, और नाम है कुशमंडा। फ्रेय फर्तौत आज स्केपर फन हेत हेलाल खलोफ्त वर्ड दैट कुशमंडा इन द कैरन फन द सोन फर ब्लेफ एंड फन हीर अर्थ हेत हेल सोन स्टेलसल उंदर कंट्रोल हेफ्त सै स्ट्रालत आल रिख्टिंगन ओप नेत आज द सोन। क्या बात है, दूर कुशमंडा त अनबेदन वर्ड आल सिक्त एंड लेट फर नितख एन krijgt een leven energie, respect, kracht en gezondheid. क्या बात है कुशमंडा जी के।
0: बबली जी, इस पे आपका क्या संदेश? वत फुखिय हीर बै जो माँ कुशमंडा के अंतर्गत में, क्योंकि अभी हमने सुना है कि आपने हर बार माँ का भी एक अलग अलग रंग होता है ना?
2: हाँ जी, क्योंकि माँ अलग अलग कपड़े धारण करते हैं। और आप जानते हैं शांता जी कुशमंडा संस्कृत में क्या है?
1: अगर आप बता दे तो बहुत अच्छा था।
2: कुशमंडा कोहड़ा को भी कहते हैं।
1: अच्छा, क्यों?
2: क्योंकि कुष्मांडा संस्कृत से फिर हिंदी में आया, हिंदी में कहते हैं सीताफल और पेठा भी कहते हैं।

0: अच्छा अच्छा
1: हाँ, थोड़ा थोड़ा लपसी रोटी जैसा भी है, लेकिन उसमें आटा छान के और उसमें गुड़ या चीनी मिलाते हैं। तो मालपुआ का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता के भक्त नारंगी वस्त्र पहनकर।
0: अच्छा, आपने कहा नारंगी, नारंगी, ये नारंगी खाने वाला?
1: हाँ जी, जैसे नारंगी का रंग है
0: और रंग है उसका, हाँ,
1: वैसी, तो वो वस्त्र धारण करके,
0: यानी ऑरेंज कलर।
1: हाँ जी सही बात। और भक्त नारंगी वस्त्र पहनकर माँ कुष्मांडा जी की पूजा करते हैं। इस दिन मालपुआ का प्रसाद बनाकर ब्राह्मण को दान करने से भक्तों की बुद्धि का विकास होता है।
2: संदेश और आ गया और आप बढ़ने वाले हैं अगले माता का और संदेश के ओर पर। ये अगर आप चाहे तो मैं सुना सकता हूँ।
0: बिल्कुल, हमारे साथ सभी श्रोतागण, लिसनर जो है, सुनने वालों,
2: सभी सुनने वालों जो कि हमारे पास व्हाट्सएप बरिख आते रहते हैं और कुछ ना कुछ जो सुनाने वाला होता है जरूर हम सब आपके लिए जरूर रखते हैं। और यहाँ पठाया गया कि कुछ बातें का मतलब है, कुछ बातें का मतलब है और कुछ मतलब की बातें। हाँ,
0: ये समझ समझ के बात है, समझ समझ के बात है।
2: एक बार फिर दोहराता हूँ कि कुछ बातें का मतलब है और कुछ मतलब की बातें। जब से ये फकर समझा जिंदगी बहुत आसान हो गया। तो अभी इसके बारे में और चर्चा किया जाएगा क्योंकि ऐसे तो लग रहा है दोनों सेम टू सेम, ऐसा है कि ना?
0: अगर गौर से ना सुने तो ऐसा ही लगता है, सेम टू सेम, उसमें एक दो शब्द है जो उसमें विकार लाती है,
2: विकार ला देते हैं। जरूर आगे अभी उसके बारे में सुनाया जाएगा। पर दोस्तों, आज का कार्यक्रम जो नवरात्रि के अंतर्गत है, क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।

0: माता रानी का ध्यान धरिए और काम चाहे कोई भी करिए ना शांता जी।
1: हाँ, कहते हैं काम करते चलो नाम जपते चलो।
0: काम करते चलो और नाम जपते चलो दोस्तों।
1: हाँ, आप सोचे कि ये कैसे मुमकिन है, तो जैसे जो इंसान गाड़ी हाँकता है ना, तो गाड़ी हाँकते हैं तो पैर अपना काम करता, हाथ अपना काम करता, आँखें अपना काम करता है, एक साथ में उसी के साथ गाड़ी हाँकते रहे, चलते रहते, इसी एक ऐसे बना ले कि काम करते चलो नाम जपते चलो।
0: आप अपना काम करते चलो और नाम लेते चलो। आज कार्यक्रम का विषय जो नवरात्रि है, और शांता जी क्या संदेश है, क्योंकि आपने तो नौ माह का अवरूप हम सबको जरूर सुनाए थे, पर उसका और क्या संदेश है हम सबको सुनाने का, और कोशिश करो।
1: हाँ जी, बताने से पहले ये मैं कहूँगी मूर्ति के बारे में, हालांकि हम सभी माँ भगवान के दूसरा स्वरूप है, अगर आप मानो तो, अगर नहीं मानो तो ये आप पे हम निर्भर छोड़ते हैं। और यहाँ हम मूर्ति के बारे में कहते हैं कि मूर्ति मंदिर में रखी हो या घर में या सड़क के किनारे, उनकी इज्जत कभी कम नहीं होती।
0: मूर्ति चाहे घर में हो चाहे सड़क के किनारे, उनके मंदिर में
1: उनकी इज्जत कम नहीं होती।
0: सही बात, आप जहाँ भी चलो, खास करके इंडिया में देखो पेड़ के नीचे भी रखल रहे हैं
1: जी,
0: और तो वहाँ कम से कम आप जय माता दी तो कहेंगे
1: जी। और अब भारत तो वैसे ही ना, अगर आप यहाँ हमारे बगल के देश में भी चला जाओ ना, बेल्जियम या डचलैंड, तो वो पे भी आप ऐसे कॉर्नर पे, सड़क के कोने कोने में ऐसे जहाँ क्रॉसिंग रहे, तो आप भी देखोगे यीशुस क्रिस्टस के भी मूर्ति, मुदर मारिया,
0: चाहे जिनका
1: मुदर मारिया के भी
0: संप्रदाय के हैं,
1: खेतों में भी धरा रहता है, अच्छा लगता देखने के, और ऑटोमेटिक से आप उनका इज्जत करोगे।
0: ये कहावत, ये भी कहावत है शांता जी, क्योंकि चाहे गिरजाघर, चाहे मंदिर, चाहे मस्जिद, कोई भी तीर्थ स्थान पे आप जाओ तो अपना सिर झुका करके और प्रणाम करते हैं ना,
1: वो तो है।
0: तो व्यक्तिगत बातें चलते रहेंगे शांता जी, और हमारे कार्यक्रम का जो संदेश है आज नवरात्रि, उसके अंतर्गत हम उस ओर के ओर हम बढ़े, तो क्या संदेश है अगले माता का?
1: हाँ, तो है ये माता हैगा, हम अगर देखे तो पांचवा दिन वाली है, और माता का नाम है स्कंड माता, है ना बबली? स्कंड माता, स्कंड माता, स्कंड माता वर्ड फाक ऑफ बेल्ट में था सोन सेतंत इन हार शोत से इज द मदर फन कार्तिके ऑफ वेल स्कंड एंड नेम सो ओक हर भक्त इन द शोत एंड बीत सहनेहन है। Skand Mata staat symbool voor vruchtbaarheid, moederschap en de relatie tussen moeder en kind. Kitnacha. Door Skand Mata te aanbidden worden alle verlangens vervuld en ervaart men in deze veranderlijke wereld gevoelens van vrede en geluk. हाँ, तो सुनने वालों, हमने यह थोड़ा से डच भाषा में कह दी, और कितना मैं पढ़ती हूँ तो मुझे आनंद आती है।
0: तो आप हम सबके सुनाते हैं, और दोस्तों बबली हाँ, जी आपके ओर से क्या संदेश है माँ स्कंद माता के अंतर्गत?
2: पांचवा दिन माँ स्कंद माता जी का होता है। एक दिन उजला वस्त्र पहनकर माता रानी जी को केले का भोग लगाने के बाद ये प्रसाद किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए,
0: क्योंकि देखा जाए तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि सबके अलग अलग रंग होता है। तो शांता जी, मैंने इस बार तथा पिछले साल से मेरे ख्याल से मैंने देखा हूँ कि जैसे कि कहीं दुर्गा पाठ हो ना
1: जी,
0: तो वहाँ रंग बिरंगी और रंगों से और झंडी का चढ़ाया जाता है।
1: उसके बारे में आप मुझसे प्रश्न करोगे तो मैं उस
0: नहीं, पर ये एक नया नहीं चीज, क्योंकि मैं पहले आगे से नहीं देखता था, और आजकल देखो तो यही माध्यम से लोग वो रंग का भी और झंडियों को बनाने लगा मेरे ख्याल से।
1: हो सकता है, मुझे नहीं पता,
0: ये भी एक व्यक्तिगत बात है, और हमें भी ये इसके बारे में, पर अब आजकल ये चलने लगा है
1: इसके बारे में, उस पर लिखा जानकारी लेना चाहिए। हाँ, हाँ।
0: कभी इसके बारे में और चर्चा करेंगे। दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बबली जी कुछ कहने वाले हैं।
2: जैसे भारत में रंगोली बनाई जाती है अलग अलग रंगों से, तो यहाँ पर मेरे को लगता है झंडी चढ़ाई जाती है अलग अलग रंग से। हाँ जी, अब शुरुआत हो गई है।
0: हाँ, ये क्योंकि पहले ऐसा नहीं होते थे, पहले हम नहीं देखा था कभी।
1: लाल
0: रंग के सुरीनाम में भी ऐसे लाल रंग का और सब होते थे। अब आजकल मैं देख रहा हूँ कि उस पे नाम भी लिखा होता है कि कौन माता का नाम के साम नाम से, तो शायद ये जानकारी हम सब
1: परिवर्तन हो गए
0: जरूर हम लोग। इस कारण तो शांता जी ज्योति का प्रकाश भी बनाया जाता है, हमारे जीवन के ज्योति में और भी प्रकाश आए, और हम सब के लिए खास करके हमारे विशेषज्ञों जो सुंदर सुंदर संदेश खोज खोज करके रखते हैं और हम सब यहाँ लेकर उपस्थित होते हैं, उसमें हम सब का भी कुछ न कुछ नया चीज़ों के और सुनने को मिलते हैं। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, क्यों ना शांता जी अगला माता का और कौन सा दिन पे हम लोग पहुँचे?
1: हम देखे तो हम पहुँचे हैं सैजद दाह, छठा दिन है, छठा दिन कहते ना सैजदा। हाँ, तो सैजदा है माता कात्यायनी की। कात्यायनी इज द सैजद फॉर्म फ्रॉम दुर्गा माता एंड स्टार्ट बकेंट अस क्रेस्टर, एन फ्रॉम द मेस्ट गवेलदादिगस्ट फॉर्म फ्रॉम देवी पार्वती। कात्यायनी इज वर्नूम्ड नार अन ऋषि गनाम्ड कात्यायन। Hij had geen nakomelingen en wenste dat Durga Mata als zijn dochter op aarde zou komen. Dat gebeurde en zij kreeg de naam Katyayani.
0: Yani ki Rishi Katyake aur wo bahut tapasya karne se aur ja kar ke ma aur Katyayani Katyake ghar mein janam liya na?
1: Na, usko santan nahi thi.
0: Kaise hua to?
1: Haan to जहाँ की माँ उनका बेटी बनकर धरती पे आई।
0: ओके इस हाँ। प्रकार से तो कात्यायनी नाम से और वहाँ पर प्रसिद्ध है
1: तो ये माँ कात्यायनी नाम से और उनका ऋषि के नाम जो इसमें जोड़ा गया है। कात्यायनी इज द सेस्ड फॉर शाइनिंग फन दुर्गा माता एंड स्कैंगस्टर फन द फिर ले फंस दुलन, यानी कि धर्म एथेंटिक एंड मोरल अर्थ मटेरियल रेगडोम काम यानी कि खनोत एंड लेफ्रयुक्त एंड मोक्ष स्पिरिचुअल फरलोस्टिंग। आप हम ये चार बातें हर हमेशा सुनते हैं हमारे विद्वानों के मुख से, और ये है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये हम हर शायद सुनते हैं जब कोई प्रवचन ऐसे कम होती है, तो इसके बारे में आपको यहाँ से बताया गया थोड़ा से छोटा स्वरूप में। धर्म हैगा, धर्म के मतलब है इथेंटिक एंड मोरल, और अर्थ है यानी कि मटेरियल राइटम। काम को कहते हैं खनोत एंड लेफंस फ्रेड, और मोक्ष को कहते हैं स्पिरिचुअल फरलोसिंग।
0: इस प्रकार से और शांता जी हम सबको संदेश दिए। बबली जी इस पे आप क्या और जोड़ना चाहते हो?
2: मेरा कहना तो ये है कि माँ कात्यायनी जी की इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए और शहद का भोग लगाना चाहिए।
0: शहद जो होनी कहा जाता है ना?
2: हाँ जी, क्यों शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है।
1: हाँ, उसका भोग लगाने के लिए।
2: हाँ जी, माँ को भोग लगाने से।
1: माँ के भोग लगाने से।
0: ओ, ऐसे बात है।
2: नहीं, अगर हम शहद खाएं भी रोज,
1: अच्छा
2: पिए, तो उससे हमारे सौंदर्य में भी थोड़ा फर्क होगा।
1: वही तो हम सोच रहे थे, तकल से शुरुआत कर दे यात्रा से।
2: जरूर जरूर
0: जरूर, क्योंकि शहद भी एक औषधि होता है ना, और खास करके जब हम लोग के खोखी आदि होती है ना
1: जी,
0: हाँ खांसी,
1: तो उसमें हमने सुना है अगर उसमें नूत मुस्कात उसमें घोर के।
2: हाँ जी, नूत मुस्कात भी डाल सकते हैं और खैम्बर पाउडर भी, तो या काली मिर्च वगैरह। हाँ। तो उससे खांसी दूर भाग जाती है,
1: गला साफ हो जाता है।
2: हाँ जी,
0: छेतवा यानी सैजद दाह के, और जैसे कि बबली जी ने और हम सबको बताए, हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।

0: शांता जी, जैसे कि कार्यक्रम नवरात्रि के अंतर्गत बनाया जा रहा है, तो आपका और संदेश क्या है, और बबली जी जो तैयार हो चुके हैं अपना संदेश देने के लिए, तो पहले आप सुनाइए तो फिर हम सब बबली जी की ओर बढ़ें।
1: हाँ जी, तो यहाँ हमने पा गई है, और साथ ही साथ ये कहना चाहती हूँ कि यकीन और प्रार्थना यानी कि दुआ, यकीन और प्रार्थना नज़र नहीं आते हैं मगर नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। सुनने वालों, तो यहाँ से सातवीं दिन कालरात्रि की थी और है। कालरात्रि स्तात ओक वेल बकेंत आस माँ काली एंड इज द सेफ एंड द खदांत फन माँ दुर्गा। कालरात्रि इज फनितखर फन द दोत एंड नेगेटिव एनर्जियन दोर हार्ट अनबेदन वर्ड एंड द क्वाद एनर्जी Energieën, zowel innerlijk als uitwendig verdreven, men zal nooit enige vorm van angst of vrees ervaren. Kalratri staat ook wel bekend als Devi Shubhamkari, Shubhamkari, skengster van goede daden. Zij beloont bhakt door de zorgen uit hun leven weg te nemen. De je Kalratri ki.
0: अष्टमी माता के अंतर्गत क्या संदेश है आपके?
1: अच्छा, हाँ हाँ, अष्टमी माता के है तो वो है महागौरी। महागौरी यानी कि, अच्छा बता दे, महागौरी इज द मैनिफेस्टेशन फॉर दुर्गा माता इन हर अक्ष्त फॉर्म। सै वर्ड अनबेदन ऑफ द अक्ष्त दा फॉर नवरात्रम बेहतर बकेंट अस अष्टमी। Mahagauri staat symbool voor puurheid en rust. Door haar te aanbidden, verdwijnen al het leed en de zonden van het huidige en de vorige levens. Ja, wat hè? Er wordt ook aangenomen dat Mahagauri de 16-jarige ongehuwde vorm van Devi Parvati is. To aapko sunaya gaya sunne walo Mahagauri गौरी के बारे में ये छोटा सा संदेश।
0: बबली जी, इस पे आपका क्या संदेश है, क्योंकि ये एक दिन अष्टमी जब नवरात्रि के आ जाता है ना, तो हम सब यहाँ पे तैयारियाँ भी करते हैं, और ख़ास करके अष्टमी के व्रत आदि कितने लोग जो अष्टमी का पूजन करके व्रत को तोड़ते हैं, उस अंतर्गत में भी कुछ संदेश देना। इस दिन के महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है, क्योंकि दित इस एन फन द बलंगराइक आलस इस बलंगराइक ऐतरार्थ पर अष्टमी के दिन खास करके और
1: महागौरी के दिन,
0: महागौरी के दिन खास करके कुछ और कार्य किया जाता है। तो बबली जी, इस पे और हम सबको संदेश।
2: हाँ जी, अष्टमी के दिन महागौरी जी माँ की पूजा होती है। सुबह सुबह स्नान करके माता रानी का पाठ करना चाहिए, और सूर्य निकलने से पहले उठना शुभ माना जाता है। इस दिन गलती से भी देरी तक नहीं सोते रहना चाहिए। अगर व्रत रखा है तो स्नान करके पूजा करके साफ कपड़े पहनने चाहिए, और माँ दुर्गा की पूजा का सुबह का समय अच्छा माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार अष्टमी पर पूजा के बाद दिन में सोना नहीं चाहिए, ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता। अष्टमी के दिन हवन बिना पूजा करने की गलती नहीं करनी चाहिए, हवन जरूर करना चाहिए, नहीं तो पूजा अधूरी मानी जाती है। और हवन करते वक्त आहुति की सामग्री कुंड से बाहर ना जाए, हवन कुंड के अंदर ही रहनी चाहिए।
0: बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हवन कुंड के अंदर रहना चाहिए। और
1: आप ये जरूरी नहीं, आप इस प्रश्न पर आंतवर दे पर पूछना जरूर चाहती हूँ, ऐसा क्यों कि हवन के बाहर सामग्री नहीं चाहिए? हमके थोड़ा से मालूम है, तभी सत्संग की तो उसमें हमने जानकारी की है, पाई है। जैसे हम खाना खाते हैं तो उसको भी सब खा लेना चाहिए ना, ऐसे ही हवन है। अगर हवन कुंड से बाहर कोई जो सामग्री गिर जाता है तो जो देमोन है वो लेता है
0: ऐसा,
1: तो साथ ही साथ आप उनको भी भोग लगाते हैं। जो अंदर रहता है वो भगवान को मिलता है, जो आप जिसका आप आराधना करते हैं उसको मिलता है, जो बाहर जाता है तो वो मिल जाता है।
0: दोस्तों देखिए, सत्संग का और महिमा, और शांता जी जो सत्संग किए हैं और ऐसा संदेश हम सबको
1: अगर हम भी पूजा घर पे करते हैं तो पंडित जी भी इस पे गौर देते हैं कि ऐसा जो हवन कर तो उसमें सिर्फ बाहरे ना गिरे पाए,
0: ना गिरे पाए।
1: हाँ, तो ये इसका जो महत्व है।
0: हाँ। और देखा जाए तो शांता जी नेखंद, माँ के नेखंद, हाँ, हाँ। जल्दी चलाना चाहिए क्योंकि हम लोग समय ज्यादा लेते हैं।
1: सिद्धि धात्री है नौवीं माता की नाम द नेखंद फोरम फान दुर्गा माता वर्थ अन खबेदन ऑफ द नेखंद द महानवमी। हाँ जी, हैत आन बेदन फान सिद्धि धात्री लय तोत हैत फरखरोतन फान कैनस एन हैत अफनेमन फान लयदन Doordat zij alle vorm van kracht en verlossing geeft, wordt zij Siddhidhatri genoemd. Zij bezit de kracht om verschillende wensen te vervullen. Door haar zegen en genade krijgt men niet alleen wereldse, maar ook hemelse plezier, innerlijke vrede en gelukzaligheid. क्या बात है। तो ये सब है अगर आप नवरात्र में अपना कुछ कार्य करते हो, नियम से करते हो, तो इसमें आप जरूर से परिवर्तन पाओगे। ये आप पर निर्भर है आप कैसे करते हो।
0: तो शांता जी, हम जरूर इस पे भी कुछ कहना चाहूंगा।
1: जरूर से।
0: दोस्तों, ये है आज के कार्यक्रम, आज का विषय जो रखा गया नवरात्रि। तो नवरात्रि से तप व्रत आदि करने से और हम सबके अपना शरीर, जैसे कि यहाँ संदेश में भेजा गया है, एक पके हुए फल के तीन पहचान होती है और उस तरह बन जाना चाहिए। पके हुए फल का तीन पहचान होते हैं, हम जब उसे बन जाए तो हमारा बस मंगलमय। कहा जाता है कि एक तो वो नरम हो जाता है, पके हुए फल जो नरम हो जाता है, दूसरा वो मीठा हो जाता है, और तीसरा उसका रसीला नहीं, यहाँ नहीं लिखा वो।
1: अच्छा अच्छा,
0: आपने चला दिया रसीले। जरूर पका हुआ नरम होने से तो रसीले हो जाएंगे, पर कहने के तात्पर्य ये कि उसका रंग बदल जाता है। रंग बदल जाता है, और इस तरह से अच्छे परिपक्त व्यक्ति जो ऐसे नवरात्रि कार्य में भाग लेते हैं, नवरात्रि का और सब प्रकार से मन तन से और कार्य करते हैं, तो उसकी ये कहावत है कि वो तीन पहचान उसमें हो ही जाते हैं। पहले कि उसमें नर्मता हो जाता है, जो किसी से बात करे तो नरम भाव से सरलता से। दूसरा, उसके वाणी में मिठास हो जाता है, और तीसरा, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग हो जाता है। आत्मविश्वास कहते हैं सेल्फ फट्रोवन के। हाँ। तो ऐसा नवरात्रि करने से जिसके पास ये रूप रंग देखेंगे आप, तो जान ले बस माँ का कृपा, माँ का दया, माँ का रक्षा उस पे जरूर हुआ होगा। बबली जी, आप नवमी दिन के अंतर्गत और आप कुछ और संदेश सुनाने वाले हैं।
2: हाँ जी, जरूर। माँ दुर्गा का नौवा रूप है माँ सिद्धिदात्री माँ। यह समस्त वरदानों और सिद्धियों को देने वाली माँ है। यह कमल के पुष्प पर विराजमान है और इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद है। कहा जाता है कि शक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना करने से नवरात्रि के दिनों का फल प्राप्त हो जाता है।
1: नवरात्रि के नौ दिन के प्राप्त हो जाती है। हमारे बबली जी के आवाज़ में आप सुने वालों,

सुनने वालों, धुन तो आपको पता हो गए है, तो यहाँ से हमारे प्रोग्राम का खत्म होने को आ गई है या हो गई है, होने को आ गई है। तो मैं कहूंगी जय माता जी करते जाओ शाम सवेरे। माता आपने मिटा दी मेरे जीवन के सभी अंधेरे। ये जो प्रोग्राम आप तक पहुँचाया गया, सजाया गया, बनाया गया, हमारे साथ में जो हमारे साथी है बबली जी और संजय जी, यहाँ से हम मिलजुल कर जो बनाए आपने साथ दी, तो यहाँ से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है और स्वीकार कीजिए शांता जी के प्यार भरी राम राम प्रणाम।

दोस्तों जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। यहाँ तलक कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश हम सब आपके लिए प्रस्तुत किए। आशा यही है कि कुछ ना कुछ संदेश जरूर आपको अच्छा लगा होगा और अब आपके पास पहुँचे होंगे। और अगले सप्ताह तक फिर मिलेंगे। सभी को हार्दिक से धन्यवाद दिया जाता है। हमारे साथी जो शांता खेमाए बबली आसरा जी जो इस कार्यक्रम में सहयोग दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आपका सेवक संजय, सभी को नमस्कार।

मित्रों, सुख शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने में है।

दोस्तों, तुम्हारी असली सच्चाई ही तुम्हारी असली ताकत है मित्रों। और यदि तुम्हारे पास सच्चे रिश्ते हैं तो वह तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है मित्रों। और सबसे बड़ी सौभाग्यशाली स्थिति वे होती है मित्रों, जब व्यक्ति के पास खाने को हो। ध्यान करना, जब व्यक्ति के पास खाने को हो और उसे भूख भी लगे, बिस्तर हो और नींद भी आए और पैसा हो, लेकिन उसमें धर्म भी शामिल हो। वाह, क्या बात है मित्रों। ये तीन का संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है मित्रों। और जो अपनी गलतियों को नहीं स्वीकार करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आप अपने गलतियों को स्वीकार कीजिए मित्रों।

दोस्तों, महान वही है जो अपनी भूल को खुले मन से स्वीकार करता है। आप ऐसे करते हो? खुले मन से भूल को स्वीकार करते हो? तुम तो कसूर दूसरों पे ठोप देते हो। आपका बात नहीं है, वो आपके पीछे वाला जो वहाँ खड़े हुए हैं ना, उनकी बात हम बता रहे हैं, उनके बात है। और उसमें सुधार करता है, गलती को स्वीकार किया और आगे में चलकर सुधार भी किया। मित्रों, तो ये सही व्यक्ति होते हैं। और यार दास का कमजोर होना हर बार बुरा नहीं होता है। मित्रों, बुरा नहीं होता है। कुछ बातें भूल जाना मन की शांति के लिए जरूरी है। सब बतिया सोच के बैठल रही तो खपड़िया खराब हो जाएगा मित्रों। तो इसलिए जो जरूरी बातें नहीं है उसे भूल जाओ, फेंक दो, गोतरों में फेंक दो। और सभी बातों को दिल में रखना केवल आत्मा पीरा को बढ़ाता है। बोले हियाँ पीरा महुआ पिराई, सोच के बैठिए जरूर पिराएगा मित्रों। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है। इसीलिए ये सीखा जाए कि क्या सहजना है और क्या छोड़ देना है। छोड़ दियो तो आपका भलाई होगा मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत भलाई होगा।

0: दोस्तों, मोहब्बत खेल नहीं जो हर कोई खेल ले। मित्रों, ये उनके लिए है जिनका दिल मजबूत हो, क्योंकि जब प्रेम में धोखा मिलता है, जब प्रेम में धोखा मिलता है तो केवल आंखें नहीं आत्मा भी कांप जाती है। जैसे आपके धोखा मिलल एकदम गड़बड़ा गए लो, आपका बात नहीं, वो पीछे वाला जो आपके पीछे खड़े हो उनकी बात। मित्रों, तो आत्मा भी कांप जाती है। अरे बाप रे, तुम्हारी पहचान वे बातें नहीं है जो तुम्हारे सामने कही जाती है मित्रों, बल्कि वे है जो तुम्हारे पीछे कही जाती है। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनका मूल्य समय तय करता है। तोरिया कैसे है वो समय बतलावे है, और ना कोई और। मित्रों, ना कोई और।
1: इस संसार में सभी मुसाफिर हैं, आते हैं और जब ईश्वर का बुलावा आता है तो चले जाते हैं। आज जिसका शोक कर रहे हैं उसे तो नया जीवन ही मिल गया होगा। यही रीत है ये संसार की।

दोस्तों, टूटा हुआ रिश्ता भी जुड़ सकता है, पर पहले जैसा नहीं हो सकता है, नहीं हो पाएगा। मित्रों, कभी कभी वे केवल समझौता रह जाता है। दुई पति पत्नी बिछड़ गए ने, फिर सलाह कर ले लें, मैं फिर से संगे रहो, पहले जैसा नहीं हो पाएगा। खबरदार खबरदार मित्रों, प्रेम वहाँ नहीं है, वहाँ समझौता है। इसलिए दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। जो ठीक लगे वैसे ही दूसरों से क्या करो। मित्रों, अगर तुम सम्मान, सच्चाई और प्रेम की अपेक्षा रखते हो तो पहले दूसरों को वही दो, वही सम्मान, वही प्रेम। मित्रों, क्योंकि यही जीवन का सबसे पवित्र और स्थायी नियम है। यही नियमवा है मित्रों, और कुछ नहीं है।

मित्रों, समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है और जिसे ना तो खरीदा जा सकता है और न ही रोका जा सकता है। आप समय को रोक नहीं सकते, काम असंभव बात है, इतोरिया ना चलेगा। मित्रों, रोक नहीं सकते हो समय को आप। जो समय एक बार निकल गया मित्रों, वो फिर कभी वापस नहीं आता। तो जीवन का हर क्षण, ध्यान करो, जीवन का हर क्षण, हर पल एक बीज की तरह है। यदि हम उसे ठीक से बोएं, तो वह भविष्य में एक विशाल वृक्ष बन सकता है, बहुत बड़का पेड़। तो आप समय का कदर करो, समय आपका भी कदर करे, बड़ा इंसान बनो मित्रों। और जो व्यक्ति समय का आदर करता है, वो ही जीवन में उन्नति करता है। और समय की कीमत वही समझता है मित्रों, जिसने उसे गंवा दिया हो। जैसे तुम नहीं, ठीक बात, बहुत ठीक बात, आपने समय को नहीं गंवाया, सही उपयोग करो मित्रों। और ये नक्षत्रों से भी तेज है ये समय, और क्षणों में, एक पल में जीवन की दिशा बदल सकता है, एकदम बदल देंगे जीवन की दिशा मित्रों। सौंदर्य सा भी

मित्रों, समय ही वह शक्ति है जिससे सृष्टि का चक्र चलता है। समय ही, समय का आदर करना मित्रों स्वयं का आदर करना है। आपने समय का कदर किया, समय ने आपका कदर भी किया। उल्टा करोगे तो उल्टा ही होगा आपके साथ भी मित्रों। यदि आप सुबह उठते ही अपने दिन की योजना बनाते हैं तो आप अपना जीवन भी योजना से जीते हैं, और समय बर्बाद करना आत्मा का अपमान है मित्रों, बिल्कुल आत्मा का अपमान है। दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति, ध्यान करिए, दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति समय का सबसे अच्छा उपयोग करने वाले होते हैं। इसीलिए जीवन को सफल बनाना है मित्रों तो समय को व्यर्थ ना गंवाए। सोमवार समय को ना फेंक दे बेकार को, दिन भर सूतल लगिए बोलिए हम कुछ ना हासिल कर पाएगा, खबरदार पास हो गए। समय की गति कभी किसी के लिए नहीं रुकती है मित्रों, अने स्टॉप गियू। घड़िया के टिक टिक टिक टिक चलते हैं, तुम्हारे लिए नहीं रुकेंगे, इसीलिए उसे पहचानिए, सराहिए मित्रों, और सही दिशा में उपयोग कीजिए। सही दिशा में उपयोग कीजिए मतलब सही ओर अपने जीवन को ले जाइए मित्रों, सही ओर।

करतुंडा महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विदिनं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा।

विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

मम माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

सुनने वालों की सेवा में मैं हूं आपका सेवक संजय और आपके साथ जुड़ गई है। सभी को एक शुभ प्रभात कहता हूं।

जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना किया जाता है भगवान से कि उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन आए। जिसके घर पे दुख है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपका दुख निवारण होए। जिनका घर में नया बच्चे ने जन्म लिए है परिवार को हार्दिक से स्वागत किया जाता है।

जो अपने तैयारी कर रहे हैं नौकरी के जाने के लिए, तो आपको कहा जाता है कि आपको फाइन अदाख्तु खवंस। जो तैयारी में लगे हुए हैं स्कूल यानी कि अपने पढ़ाई की ओर बढ़ने के लिए, तो ये जरूर कहूँगा कि माँ सरस्वती को भूलना नहीं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जो अभी तैयारी कर रहे हैं अपने सफर के लिए या कहीं और जाने के लिए, तो ये मत भूलना कि श्री गणेश पहले तो आगे कार्यक्रम चलता है। जो और देश से हॉलैंड देश में और आए हैं वैकेंसी के लिए, तो आप सभी को हार्दिक से स्वागत किया जाता है। ऐसा सोचिए कि आप एक सुंदर सा देश में आए हैं। देशों में जो एक सुंदरता हॉलैंड के है, आप जरूर दर्शन करके दे आइए। और जो आज अपना मन में ये रख रहे हैं कि हमें अब सफर पे जाना है, हमें कुछ दर्शन करना है, तो जरूर आप अपना तैयारी में लगे रहिए। क्योंकि कहते हैं कि ये सुंदर काया को हमें जो प्राप्त हुए है, इनके लिए तो देवताओं भी तरसते हैं। और जब तक ये सुंदर सा काया हम सबके है, हम ना सिर्फ सत्संग ना सिर्फ सफर पर जो चाहे और अपने सुंदर शरीर से यानी कि अपने जीवन में जो करना चाहे, पढ़ना लिखना कुछ भी करना चाहे तो कर सकते हैं। क्योंकि संतों ने कहा है कि किस कारण हम इस दुनिया में आए हैं, जरा सोचो सरा और समझो सरा।

सभी को एक शुभ प्रभात कहते हुए कुछ भजनों के साथ कार्यक्रम को श्री गणेश करते हैं।

सुनवालो कहते हैं कि केवल रक्त संबंध से ही कोई अपना नहीं होते हैं। प्रेम, सहयोग, विश्वास, निष्ठा, सुरक्षा, सहानुभूति और सम्मान, ये सभी ऐसा भाव है जो पराये को भी अपना बना देते हैं।

से शक्ति देना। कहते जो चीज हाथ में ना हो उन्हें मन से भी आजाद कर देना चाहिए।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि आपका रेडियो इस समय चुन है फाहुन एफएम पे, जो इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक देशों में सुना जा सकता है।

जो इस समय तैयार हो रहे हैं अपनी नौकरी पे जाने के लिए या सफ़र कर रहे हैं, तो आपको बहुत सा और ये कहना चाहूँगा कि अंदाख फॉल फ्रोइद। और गांधी जी का ये संदेश बोलना मत, उन्होंने ऐसा कहा था कि हमारे जो देश है हमारे लिए क्या कर सकते हैं ये सोचना कोई गलत बात नहीं है, पर हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं ये सोचना ये समझने वाला बात हो जाता है। गांधी जी का ये बात भी आपको जरूर ख्याल होगा कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो।

कहते हैं कि उदासियों के विजय तो बहुत है जिंदगी में, कहने के तात्पर्य है उदास होने का वजह तो बहुत होते हैं जिंदगी में, पर बेवजह खुशी रहने का मजा कुछ और है।

कि गरीबों की दुनिया जीने नहीं देते, पर इस बात पे किसी ने और कुछ लिखा है कि स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति इंजेक्शन की तरह होती है। स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति इंजेक्शन की तरह होती है, इसमें दर्द थोड़ी देर का होता है लेकिन फायदा जीवन भर रहता है।

जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है। जिंदगी के हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है कि रास्ते कैसे भी हो, सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो। रिश्तों का बगिया

जिनके परिवार में एक नया शिशु ने जन्म लिया है तो उन्हें बहुत सा बधाई। जो अपने घर से सत्संग आदि का कार्यक्रम आज रखने वाले हैं तो बहुत सा बधाई भी। और बहुत से शुभकामनाएं प्रस्तुत है। फाहुन रेडियो के पूरी टीम की ओर से जो हमारे देश में सफर करने को आए हैं तो बहुत सा स्वागत।

कहते हैं कि जहां हवा है और पानी है वहां हिंदुस्तानी भी है। और यहां से भी फाहुन हिंदुस्तानी द्वारा रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है। जो दुनिया पे 195 देशों तक जहां जहां इंटरनेट है वहां वहां सुना जा सकता है।

कहते हैं कि इंसान उस कल की चिंता में डूबे रहते हैं जिस कल का कोई भरोसा नहीं। आज में जियो, खुश रहो।

क्या हमें इस पे चिंतन करना चाहिए या नहीं। इंसान उस कल की चिंता में डूबे रहते हैं जिस कल का कोई भरोसा भी नहीं है। आज में जियो, खुश रहो। हम एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे जो जुबिन नौटियाल के आवाज में हम सुनेंगे।

पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। कहते हैं कि सबसे पवित्र वस्तु मोबाइल है दोस्तों, और ऐसा क्यों कहा गया है?

सबसे पवित्र वस्तु मोबाइल है, ऐसा क्यों कहा गया है? क्या हम उनके बिना जी नहीं सकते हैं? क्या उसे हमें हर एक समय रखना चाहिए? आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हुए थोड़ा से इसके बारे में चर्चा जरूर करना चाहूंगा। कहते हैं कि सबसे पवित्र वस्तु मोबाइल है।

ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोबाइल जो बाथरूम में, अस्पताल में, शमशान में से होकर के आने पर

क्योंकि हम अस्पताल शमशान आदि से आते हैं तो सीधे बाथरूम की ओर जाते हैं और स्नान को करते हैं, लेकिन कहते हैं कि मोबाइल में वो खूबियां है जो

यहाँ तक कि जो बाथरूम अस्पताल शमशान से होकर आने के बाद भी बिना धोए हुए घर में, मंदिर में, रसोई में, सब जगह जा सकता है।

तो दोस्तों, हम जो जिद पे हो जाते हैं, जिद कर बैठते हैं, जिसे हम जिद्दी कहते हैं, और अपने जिद में रहना, क्या ये ठीक है या नहीं, हम रेडियो बनाते हैं और आप तक संदेश को कोशिश करते हैं पहुंचाने को। और आज का दिवस में इस पे जरूर ध्यान देना कि हम कितना जिद्दी है। क्या हमें जिद करना ठीक लगता है? क्योंकि कहते हैं कि केवल जिद की एक गांठ जो बन जाता है, खुल जाए तो उलझे हुए सब रिश्ते सुलझ जाते हैं।

कथा खूब सुनाए हैं हंसराज रघुवंशी जी कि अगले साल फिर आना गणपति बप्पा मोरिया। क्या हम ये जानते हैं कि हम अगले साल रहे या नहीं, फिर ये आशा जरूर रखते हैं। कहते हैं कि सत्य मौन इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कुछ बातों को जवाब सिर्फ समय ही देता है। मौन इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देता है।

कहते हैं वो आगे निकलते जा रहे, उसमें रिवर्स भी नहीं है, वो आगे बढ़ रहे हैं। सत्य मौन इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय ही देता है।

विमला जी जो ये गीत का मांग किए तनहा शहर से, उनके ओर से ये सुंदर सा संदेश आए हैं कि सुख और उम्र की आपस में कहाँ बनती है।

क्या संदेश रखे हुए है श्रीमती विमला जी? सुख और उम्र की आपस में कहां बनती है? सुख और उम्र की आपस में कहां बनती है? कड़ी मेहनत के बाद सुख घर में लाओ तो उम्र नाराज होकर चली जाती है। क्या संदेश रखे विमला जी ने? समझने वाले बात हो जाता है और कैसे समझेंगे। कहते हैं कि समझ समझ के समझो। सुख और उम्र की आपस में कहां बनती है? दूसरा लाइन कहते हैं कि कड़ी मेहनत के बाद सुख घर में लाओ तो उम्र नाराज होकर चली जाती है। बिल्कुल सच कहे हैं। हमारे रेडियो का डायरेक्टर श्रीमान कुमार घिराव जी की ओर से ये सुंदर सा भजन

डमरू वाले तू ना संभाले तो हमें कौन संभालेगा। दोस्तों ये सुंदर सा और भजन हम सब सुने,

कहते हैं कि स्वाभिमान हमेशा पगड़ी की तरह ऊंचा होना चाहिए। स्वाभिमान हमेशा पगड़ी की तरह ऊंचा होना चाहिए कि बाकी जूते चाहे जितने कीमती हो जगह जगह पर उतारने ही पड़ती है। तो इस बात पे जरूर ध्यान देना। आपने ठीक सुना कि स्वाभिमान हमेशा पगड़ी की तरह ऊंचे होना चाहिए, बाकी जूते चाहे जितने कीमती हो जगह जगह उतारने ही पड़ते हैं।

खाटू वाला शाम सुन वालों, ये सुंदर सा भजन सुनने को हमें प्राप्त हुआ और ये कहना चाहूंगा कुछ ख्याल भी आ गया कि अगर आप खाटू श्याम दर्शन करने को जा रहे हैं भारत में, तो दिल्ली से कुछ घंटे के रास्ते हैं। पर आप वहां दर्शन के बाद लौटेंगे तो रास्ते में आपको एक स्थान प्राप्त होगा जहां पर आप जाटा, जिसे आप कहते हैं कि चक्की, सील लोढ़ा, जिसे हम अपने शादी में और सील लोढ़ा का प्रयोग किया जाता है, तो इन चीजों को आपको मिलेगा रास्ते में। वहां से आप निकलेंगे दिल्ली के ओर। और ऐसा मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि चलो हम बाद में ऐसा चीजों खरीद पाएंगे, पर भारत उतना बड़ा है, पर कुछ चीजों जो कोई कोई शहरों में आपको खरीदने को मौका मिलेगा।

और कहते हैं कि रिश्ता वही श्रेष्ठ है। रिश्ता वही श्रेष्ठ है जिसमें शब्द कम और विश्वास ज्यादा हो। शब्द कम और विश्वास ज्यादा हो, अहंकार कम और प्रेम ज्यादा हो। तो आपने ठीक सुना है कि रिश्ता वही श्रेष्ठ है जिसमें शब्द कम और विश्वास ज्यादा हो, अहंकार कम और प्रेम ज्यादा हो। एक और सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे।

कि अच्छी भूमिका, अच्छे व्यवहार और अच्छे विचार वाले लोगों को हमेशा ही याद किया जाता है। अच्छी भूमिका, अच्छे व्यवहार और अच्छे विचार वाले लोगों को हमेशा ही याद किया जाता है। मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी।

कहते हैं कि इंसान के शब्दों पर नहीं, उसके इरादों पर गौर कीजिए। कोई डांट कर आपकी भला चाहता है, तो कोई मुस्कुराकर आपकी जड़ काटता है।

अंगन मोरे आवरे हे दुर्गे मैया, अवश्य अवश्य हम पुकार करें तो मैया जरूर आवेगी। नौ दीप जले, नौ फूल खिले, माँ का रूप सबसे निराला है। इस नवरात्रि आपको हम सबको दुनिया की हर खुशी मिली। मेरी ओर से आपको नवरात्रि की हार्दिक से शुभकामनाएं पेश किया जाता है फावन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।

जय जय माँ, जय जय माँ, सजा माँ का दरबार, सजा है माँ का दरबार लाल रंग की चुनरी से। सजा माँ का दरबार, हर्षित हुआ माँ, पुलकित हुआ।

की महिमा माँ से पुकार, माँ से प्रार्थना हम भजन के रूप में श्रवण करते हैं। देश नवरात्रि स्टार ऑफ मैत माँ दुर्गा, वाओ मैत माँ दुर्गा ओम ऑप्टस्तान एंड हार सीखनें तो ontvangen, ओ वत गेलुकसालिग इस दैट। Laat iedere gebedsvlam in de afbeelding

0: Mijn lieve mensen, het is al 9:04. En je gaat ze bood pjarke saad. Sri Pandit Rajkumar Mahatam ji ko hardik se swagat kehti hu. Pandit ji, aapko swagat hai, aapko namaskar hai. Aap aakash mein hai.
1: Namaskar, dhanyabad. Namaskar. Santa ji.
0: Ji, Pandit ji.
1: Hari Om Mahadevam Narayana Param Brahma नारायण परम तपाम नारायणो परो देव सर्वनारायण सदाम ओम नीलम भुजिश्यामल कुमलंगम सीता समारोपितवाम भागम पाणु महासायिक चारु चापम नमामि राम रघुवंश नाथम हरि ओम नमः संभवाय च मयूभवाय च नमः शंकराय च नमः शिवाय च सुतराय च मुक्षुक्षुरूप विश्वरूप को नमस्कार संसारिक सुख देने वाले प्रभु को नमस्कार आनंद देने वाले प्रभु को नमस्कार मंगलमय विश्वरूप को नमस्कार और अत्यंत स्वरूप और कल्याणकारक ईश्वर को हमारा बारंबार नमस्कार हो। सर्वप्रथम आकाशवाणी के सोले जहां तक हमारा आवाज पहुंची आप सभी को जागृत था मेरा प्रणाम नमस्कार यार राम राम सीताराम पहुंचे। खास करके रेडियो फान को जो मालिक हैं मैं उनके भूरी धन्यवाद दे रहा हूं। हम वाफ अभी कितने ले रहे थे जहां प्रसन्नता जी ने रेडियो फान के माध्यम से कितने अच्छे ढंग से मैं आपकी सेवा कर रही थी उनको मैं भूरी भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ। आकाशवाणी के सुने जैसा मालूम है हमारी सनातन धर्म अंतर्गत इस समय नवरात्रि चल रहा है और आज चौथा दिवस है। आज फिर से बात दोहरा रहा हूँ मैया के चौथा दिन है ना और माँ के हमारे माँ के नौ स्वरूप है मैया के नौ नाम है उसमें से आज का नाम मैया क्या है क्या ना है माँ के आज का नाम है कुष्मंडा और वो क्या है पर ब्रह्म स्वरूपनी देवी का चौथा स्वरूप कुष्मंडा देवी का रूप में विख्यात है। चलो माँ के बारे में कुछ विचार किया जाए। माँ क्या है माँ क्या है एक ही आदि शक्ति है वही पुरुष है वही स्त्री है वही नर है वही नारी है वही जड़ है वही चेतन है। ओम नमो भगवते दुर्गाय नमः। कौन सारे जगत के जो जगनी माँ माँ शब्द जो है मंगल कारणी शब्द जो माँ उसे कहे हैं जो दूसरे के दुख जो देख न से कोई मैया है कौन सारे जगत की जो जगन माँ आकाशवाणी के सुनने वालों उससे थोड़ा विचार किया जाए। अपनी जननी के प्रति आदर और प्रेम मनुष्य का सबसे प्रमुख कर्तव्य है इस पे ध्यान रखना। फिर से मैं बात दोहरा रहा हूं अपनी जननी के प्रति आदर और प्रेम मनुष्य का सबसे प्रमुख कर्तव्य है। जिस माँ ने उसे 9 महीना तक अपने गर्भ में धारण किया है उसे जन्म दिया है उसे उसे आश्चर्य और दिया है यदि व्यक्ति उसके प्रति अघात प्रेम और पूर्ण श्रद्धा का भाव नहीं रख सकता तो फिर वो संसार में किससे प्रेम करेगा। मातृत्व का सिद्धांत तो स्वयं परमात्मा से धनुष्य बंध रखता है ना। वो परमात्मा जिसने इस सृष्टि की रचना की है और जो मनुष्य के प्रति एक आवश्यकता की पूर्ति करता है अतः हमारे इस ध्यान की अनुभूति निश्चय ही अत्यंत व्यापक है व्यापक होना चाहिए। इस पे ध्यान करना यदि तुम अपनी माता को ही साक्षात देवी मानते हो पर दूसरे की माँ के प्रति ऐसा भाव नहीं है तो निश्चय ही ये एक बड़ी भूल है। साथ ही हमें ये भी सुमरण रखना चाहिए कि यदि हम इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि अपनी माँ के प्यार पा सके, तो निश्चय ही हम परमात्मा के उदार प्रेम को कभी प्राप्त न कर सकेंगे। वो माँ जिसने बालक को अपने गर्भ में 9 मास तक धारण किया है और सभी प्रकार के कष्ट और कष्ट उठाकर उसकी रक्षा की है, हर सृष्टि से तुम्हारा अधिकारनी है। व्यक्ति को अपने इस परम कर्तव्य को कभी ना भूलना चाहिए। हमें अपने दैनिक जीवन में मातृ तत्व का प्रकृति के अनेक उदाहरण देखने को मिलता है। गौ को लीजिए ना, वो अपने रक्त को दूध में परिवर्तित करके सबको पोषण करती है। इसी कारण उसे हम मातृ मूर्ति के रूप में सम्मान देते हैं। पृथ्वी हमें अपने वश पर धारण करते, इसलिए पृथ्वी को भी हम पृथ्वी माता कहते हैं ना। इसी प्रकार अंगीरा है, ये अनेक रसों के रूप में शरीर से उत्पन्न होते हैं और हमारी पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। ये रस स्वरूपनी हमारे अंगों में निवास करती है और हमारे शरीर के क्रियाशील बनाती है। वो हमारे जीवन रक्षा करती है, आकाशवाणी के सुनने वाले, और इस कारण हम उसे माँ मातृ मूर्ति समझते हैं। महर्षि ने इसे ये शिक्षा दी है कि हमारे लिए जीवन में क्या उपयोग है और क्या अनुपयोगी। शास्त्र के द्वारा उन्होंने श्री मार्ग और प्रिय मार्ग का दर्शन कराया है, इसलिए हम ऋषियों को भी मातृ मूर्ति मानते हैं। आचार्य जो हमें सुज्ञान विज्ञान तथा प्रज्ञान की शिक्षा देता है, मातृ मूर्ति ही है। अतः गौ पृथ्वी अंगिरा तथा आचार्य सब दिव्य माँ के ही प्रतीक हैं। जननी साक्षात क्या है? जननी साक्षात सर्वशक्ति स्वरूपनी है। माँ के इस दिव्य पक्ष को संसार के समक्ष रखने के लिए ही नवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। इस पे ध्यान करना, रखने के लिए ही नवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। ये 9 दिवस हम दुर्गा लक्ष्मी तथा सरस्वती की पूजा और उपासना में व्यतीत करते हैं। आकाशवाणी के सुन आइए हम इस पर विचार करें कि देवी माँ के इस 3 पक्षों को आधार क्या है। दुर्गा शक्ति स्वरूपनी है, वह हमें शारीरिक मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। लक्ष्मी माँ हम पर सब प्रकार के ईश्वर यानी सब प्रकार के ईश्वर की वर्षा कराती है, और सरस्वती माँ हमें बुद्धि विवेक तथा वाणी के शक्ति प्रदान कराती है। हमारी माता सच्चे अर्थ में दुर्गा लक्ष्मी तथा सरस्वती की मूर्ति है। वो हमें हर प्रकार की शक्ति प्रदान करती है, हमें हर प्रकार की संपत्ति उपलब्ध कराती है और हमारी उन्नति और वे हमारी सहायता कराती है ना। वो इसकी भी अभिलाषा रखती है कि उसके संतान उत्तम शिक्षा द्वारा नाम कमाए। इस प्रकार ये तीनों देवी सिद्धियां स्वयं हमारी माता के रूप में एकाग्र करके हो जाते हैं। इस पे हम आगे ले जाते हैं आकाशवाणी के सुनने वालों। पांडव का अपनी योग्यता तथा कुशलता के कारण भगवान कृष्ण का कृपा प्राप्त नहीं हुआ, किसे ना ही उनका तपस्या के कारण उन्हें ये विशेष किससे शक्ति प्राप्त हुआ, ये तो उनकी माता कुंती का उनके प्रति अन्य प्रेम था जिसके कारण उसके पुत्र भगवान का प्राप्त कर सके। कुंती कुंती माँ अपने ये जीवन का अंग मानती थी। उसने उन्हें भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए नाना प्रकार की प्रार्थना सिखाई थी। जब उसके कहा गया है जब उसके पुत्र लग गृह में रहा तो उस दुर्घटना के समय कुंती माँ भी उनके साथ थी। लक्ष्मण का उदाहरण लीजिए, वनवास में श्री राम के तन्मय सेवा कर रहे थे, पर इस सेवा के मूल में उनकी माता सुमित्रा का अन्य प्रेम ही था। जब श्री राम को वनवास दिया गया तो कौशल्या अत्यंत दुखी हो गए, किंतु सुमित्रा तनिक भी विचलित नहीं हुए। आकाशवाणी के सुनने वालों, उन्हें लक्ष्मण से कहा, पुत्र जहाँ राम है वहाँ अयोध्या है, तुम सदैव अनेक साथ रहो और वे जहाँ भी हो और जिस परिस्थिति में हो ये देखो कि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न होना पाए, यानी किसी प्रकार की कठिनाई न होने पाए। सुमित्रा का लक्ष्मण को यही आशीर्वाद था, आदेश था कि लक्ष्मण निरंतर भगवान राम के सहायता में रहे, तो उसका एकमात्र कारण उनकी जननी सुमित्रा का आशीर्वाद था। नवरात्रि जो है आकाशवाणी के सुनने, नवरात्रि का ये पूर्व हमारे पुराणों तथा ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ का सार आपको समक्ष उपस्थित करता है। ये इस सत्य को उपलब्ध करता है कि माता का प्रेम तुम्हारे सभी आकांक्षाओं में आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकता है। तो आकाशवाणी के सवाल कहने एक बहुत है, लेकिन समय के अंतर्गत कथा विराम करना चाहिए। इस पे हमें जोर देना है, माँ यो नवरात्रि जो है तो माँ के हम माँ कितने प्यार प्रेम लगाओ उसे, हमें उनको पूजन करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन माँ की उपासना करने से पहले हमें अपने माँ को सेवा करना है, इस पे ध्यान करना। माँ जीवित है, माँ से बोल चाल नहीं। अब मंदिर में जा करके हम मूर्ति जो पत्थर की मूर्ति का आरती उतारते हैं और घर में माँ से बोले चाल नहीं, तो क्या है आकाशवाणी के सवाले, जब तक हम अपना माँ बाप के आशीर्वाद ना प्राप्त करेंगे जगदीश्वर, तो कैसे हम जगदीश्वर के आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। आकाशवाणी के सवाले, हम आप ही बात जानते हैं कि माँ शब्द मंगलकारी, माँ से महान कुछ नहीं। ज्यादा ना कहते हुए ये वाणी द्वारा अपना परिश्रम विराम करने जा रहा हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यम्। शान्ति शान्ति शान्ति, हरि ओम।

मेरे प्यारे सुनने वालों, हम यहाँ से श्रवण की है श्री पंडित राजकुमार मुखान राजकुमार महात्म की के मुखारबिंद से सुंदर सा कथा। आनंद में मैं भी गुम थी यहाँ पर और समय कब निकल गया पता नहीं चला। और पंडित जी जो आखिरी में कहे वो वाकई में सोचनीय के काबिल है। मैं उसे नहीं दोहराऊंगी क्योंकि पंडित जी एक बार कह दी है और पंडित का बोल भी उसमें भी कोई वजन है, तो आप जरूर से उसे सुने होंगे और गौर करेंगे और अपने जीवन में भी उसे उतारेंगे। पंडित जी को हार्दिक से धन्यवाद किया जाता है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से सभी सुनने वालों की तरफ से, और एक शुभ दिन शुभ नवरात्र आपको हम सभी को भी। बुधवार के प्रोग्राम यहाँ से चल रहा है आपके लिए, नेह तीन ओफर नेह हो चला है और 14 तारीख आज है, फिर तीन एंड तीन द मंथ या 10वां महीना का 14 दिन आज गुजर रहा है। हाँ, धीरे धीरे अब हम उसमें तो आ गए हैं और धीरे धीरे हम आगे ही चलेंगे। ये आशा उम्मीद है कि हम सब ये दिन जो हमके मिले हैं इसे हम लाभदायक बनाए। मुए हरे रंग माँ का हुए इन फिलिंग हेफन। और फिर ददाख नवरातम के भी आप सभी को हार्दिक से बधाई है। वादा के मुताबिक आपके लिए ये गीत यहाँ से ज़रूर से हम चलाएंगे जो हमने कही थी विज्ञापन और प्रवचन से पहले।

अवश्य दुर्गा मैया हमारे घर में पधारेंगे। नवरात्रम के आप सभी को, हम सभी को हार्दिक से शुभकामनाएं पेश हो रहा है फावन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।

सुनील गाया गया है लता जी और किशोर कुमार जी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है रूप तेरा मस्ताना, उसी फिल्म से निकाल दिया गया है न्यू फैशन में। Het is ook een heel mooi, prachtige, sentimentele, liefdevolle lied. Kutje deel neka ha.

0: आओ बच्चों, मैं तुम्हें
1: आशा भोसले जी के आवास में लाचेदाग नित इन हेत वाटर फालन रेगन geen probleem. Dat is dan gewoon extra glans op je dag.
0: मैं एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता हूँ।

सुंदर सा गीत फरमाए गया आपके लिए कि प्यार का दर्द है। इस बारे ऐसी हसीन चांदनी, गीत का बोल है आपके लिए।

नाइटिंगेल, लता जी के आवाज़ में न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग आपके लिए पेश किया गया आपिका फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से मेरे प्यारे सुनने वालों। और क्या कहे आप

वाकई में ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, किशोर दाजी के आवाज में मैंने रिफरमेंस ना हेल लंग तैत होर वेत लीत एंड दैट इज सो बिसोंदर ओम तो होर एंड द हाफ

हाँ, ये गीत कहते हैं कि बाय बाय मिस गुड नाइट, किशोर दास जी की आवाज में, व्हाट अ वॉइस। सेस टिप्स फॉर सुंदर हार, हाँ अपना बाल कैसे आप सुरक्षित रख सकते हैं। तो पहला है वश्यहार नितफाक ने, वश्यहार नितफाक खेप हो फैत एन हार वत रुस्तिसन वस ब्योर्तन एन ओली यहार फोरत वसन, हाँ फोरत वसन पयहार कंटी वेल ओलियन। गब्रैक अन

ये मातम होता है, कोई बिछड़ जाता है या रिश्ता टूटा है तो घर घर तो रहते हैं पर वो रौनक नहीं रह जाता है। तो ऐसे में ऐसे ऐसा गीत याद दिलाता है, दिल तड़पाता है। oprecht zijn is de mooiste manier om anderen te respecteren. Mogen uw dag geleid worden door rechtvaardigheid en

हफ्त खलित जा मुझे अब याद ना किशोर दा जी की आवाज में। हाय मेरे दोस्तों, स्लेक्ट वेर बस्तात नीत द परफेक्ट दाग ओम आलस ग्लात ते स्ट्रेकन रुस्तिग बिगिनन देन कोम द रेस फन सेल्फ स्ट्रेक द स्ट्रेस रुइट मेने लीफे मेंसे नीत द क्लेरन या। En wij wensen jullie allemaal, waaronder ik ook, een prachtige dag vol vrolijkheid, mooie momenten en positieve energie. Maak er iets moois van uw dag.

और दोस्तों तू मेरी आसमां परे और नए गीत कुछ पुराने गीत से आप लोग को हम सुनाएंगे करेंगे। मत कर इतना गुरूर, कभी कभी लोग को गुरूर बहुत हो जाते हैं। तो पंकज उदास अलका याग्निक क्या बताता है, मूवी के नाम है आदमी खेलो ना भैया खेलो ना।

और दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं, कितना चाहते छुपाएंगे हम और कितना चाह छुपाएंगे तुम, और ये गीत है

नाच पाएंगे बैठे आमिर खान या नाचो। दोस्तों जोंग ही जोंग आपको हम सुनाते हैं आंची और आप वहां हम यहां कि कभी राधा क्या बोलते हैं आओ सुना जाए।

0: अच्छा चलता हूँ।
1: और बोल ना राधा बोल, आज कुछ बोल किशन और राधा के सॉन्ग में आज हम मतवाला है दोस्ती, और राधा और कृष्ण का जोड़ी अत दुनिया पे और उससे जबर जोड़ी कहीं नहीं दोस्तों।

गोविंदा तेरे किशन कन्हैया मूवी का नाम है मेरा लहू। और दोस्तों आज कुछ किशन की मूवी में हम हैं तो एक और हो जाए, एक जान है हम आसमां के आसमां पे लिखेंगे दो।

और दिल चाहे तो आसमां पे जमी पे दिल परे और जहां भी चाहो लिख दूंगा तुम्हारा नाम और तू तू तू तू तू तरा थोरा ना दिल हमारा।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता जी जे हमको अपनी आजीर बांधे। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी दाम से सीकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी।

तो हमारे दोस्तों, हमारे जनता, हमारे प्यारे प्यारे लोग, हम एकदम से चला जाते हैं, शुरुआत करते हैं और हम चलते हैं अपना सूरीनाम देश में। सूरीनाम देश की ओर हम जाते हैं, हमारे मौसी मौसा नानी नाना देखो भैया रोफ ओवरफाल के ओर तो हम तो जाते। एक आदमी भैया सुतल्ला और सुतले में होकर 12,000 यूरो से बन रूफ कर ली से नानी। तो बोलिए चोरवन कैसे जानिस के रेमिया 12,000 यूरो लेके सुतल है। तो एगो 25 बरिस के आदमी ऐ एल जो है रविवार के यानी सोनदाग के रात के कोकोबिया वैक में सूरीनाम देश में ओके सबन ओवरफॉल करी से भैया खमस कर द क्रिमिनलन खवापन 12,000 एरो से चोरवन धनी होई गए भैया। और ये आदमी रोवे है मोड़ी पे हाथ धर के बोले है फॉर नूमन वर्ड कि उस सुतल रहा अबले सुतली में चोरवन ओके ओवरफॉल करी से ओकर घर में ओकर कवाड़ी तूर के भीतर गए है। और बोले ना द ड्यूरन फॉर वोनिंग वार वेल देख मार नीड ऑफ स्लॉट तू 12,000 एरो ली के और बिना कवाड़ी तारा कर ले सूते बाटे। तू सोचे मॉरिशियस में बाटे कहा रे भैया तू ऊ देश में बाटे एन फॉन द लंदन दार ऑफ दिट मोमेंट सो एर ना हमने द क्रिमिनल दिस सोर्ट रोफर्स मेंशन मिसहैंडलन। एंड आई हैव ओ गहोर्ड दैट दिस सोर्ट थिंग इज ओक इन गुयाना गेबर्ट मेंशन। एक हैव अ फ्रेंड फ्रॉम गुयानीज़ अफकोम जो यहां रहे हैं वो भी बतावे बोले बहुत जबर गायना में भी ऐसे रोफ हुए भैया और गायना और सरनाम में इतना जबर रोफ हुए द दादस ओवर मेस्टर द हेस्लाख्त ओवर बदरेक करी पिस्तौल से और ओकर 12,000 पैसा जो ओकर नख काशे में रहा ओकर बेदी लगे ओके लेके और सब झग भग गए भैया। बोले ना द दांत फॉर लीटन द फरदाख्तन ऊपर से ब्रोम फिश पेस चोर चल गए डॉलर स्ट्रांत में रेखतन इंदिरा लैंड में सिपाही एकर बारे में ऑब्सपोरिंग फॉर आन होल्डिंग खोजे हैं लेकिन ओके का पियो भैया ब्रोम पे सबन 12,000 से धनी हो गए है नानी। तो ये सब चोरी ऊपर से तुके 12,000 एरो लेके और तू कवाड़ी ना ताला कले भैया तू कितना चलाक आदमी बाटे मैं बतिया ये 12,000 वाई कहाँ पाई से वरना लिखल कि बिजनेस करे कि सा कमान है कि नीदरलैंडर है कि बैटरलैंडर एकर बारे में और ना लिखल। अब देखो दोस्तों हम जाई है रोनी ब्रंसवाइक की ओर। तो रोनी ब्रंसवाइक यानी कि बॉब के का बोले हैं फ्रीज साम फिन दैट एनडीपी लीडिंग स्टर्क मुस सैन उइटकोमा टेकन आइसप्राकन फन रोनी ब्रंसवाइक। हाँ एनडीपी के पार्लियामेंटारियर जो है जेनिफर फ्रीज साम एनडीपीयर है बोले उफेनी करेगा कि बहुत यामर दैट द लीडिंग फन हर पार्टी दिस एनडीपी के लीडर जो है बोले नित्रिया खेर जो आइसप्राक अबोप लीडर और बोले ऊपर से क्वालिटी पार्टनर है ब्रंसवाइक रोनी ब्रंसवाइक की एनडीपी के 18 सीटल है मैं 18 सीटल बोले अफक्लोपन फरकी सिंह में नीट हीफ को वोनन जो बोले 18 सीटल से बोले न जीतल ही बात अबोप यानी कि रोनी ब्रंसवाइक बोल ले रहा। तो एनडीपी के पार्लियामेंटर जेनिफर फ्रीडसम बोले एनडीपी बोले एकर बारे में बोले एक को अंतोत ओके ना दीज मैं भैया कभी कभी सच्चाई के आगे तो कौन चीज ये वहां मूड लड़ावे भाई एगो इरलक बांध है दन इस मुइलक अन यईस्ट अंतोर त गिवन रोमल अंतोत का ये ऑलटाइम गिवन अननोडक रोत्सोई का ये वेल आउट हालन मैं बोले सच्चाई के आगे झूठाई साथ ना देवे भैया एक सेखनी दत ब्रंसवाइक अलमाल ही रेक्स है मैं ओम अलखमी जही जब कभी तू सच्चाई बोलियो भैया तो आदमी थिथराई बतियाएगा बाकी ऊ ओकर संगे तेख स्प्रीक खाली ओनसिन करेगा मैं वार है तू ना कर पाएगा फॉल्स फ्रीसम ही द पार्ट्स ऑफ पार्टी द फरकी से वेल देख
degelijk gewonnen en moet zij haar positie nadrukkelijk opeisen. Bolega Jennifer Bolega en na Simons i dusa Jennifer bhaiya i parlamentarier hega fridsam ke banchit hue hai hamare janta aur bole the politica sit hai uitblijven die verzwakt maar wel aan een verzwakking van NDP, dat inderdaad een verzwakking en ik geef dat toe. En je moet zeggen, want als je het niet zegt, zal het ook zo blijven sudderen. Ibata Kahina vreedzaam ik erbare me prebole, want zij is zelf een NDP'er. De ik erbare me presentator Jenny Clifton bij jou Lomburgo. Lumburg kan willen merken op dat er tijden zijn geweest waarin hij ook actief was binnen NDP en deze Bouters de leiding had, want Bouters NDP Limburg STV op een april radiostation Colise. En je weet mensen, de meeste media in Suriname zijn politiek gebonden. Als je politiek ook een sponsor krijgt, politiek ook dan ben je geen vrije media, mensen. Dat hebben we heel veel in Suriname. Wel, de vrije media heb je niet, waardoor mensen alleen maar dingen in de voordeel gaan praten van zijn eigen politieke partij. Vrije media is een media namelijk dat je iedereen neutraal zonder enige belang namelijk kan interviewen en je commentaar kan geven. En dat hebben we in Suriname heel weinig mensen. De meeste media in Suriname zijn politiek gebonden en de houden ze zijn mond dicht als ze kritieke vragen moeten gaan vragen bij een politieke partij of ergens anders. Op Bolinja, ook bij de NPS was dit in de periode van voorzitter Roland Venetiaan het geval. Partijen kwamen dan sterk uit met een tegenverklaring. Toen ja, betekent het dus nu dat wel gebeurt en de NDP-leiding het ook nog accepteert vanuit de coalitiepartij, betekent volgens Kemke en de NDP inderdaad zwak. Maar ja, bouwt zwak, hè. Bolo tegen wat jij pa wehega. Ronnie Brunswijk, John Itrabarka Bolisega, kito Atala Seita Leke NDP, toen na Jitle Bate, want Hamlun Tor Saddeli Bate, tapto hij president van Lebate. En dat is ook de waarheid, mensen. Vreesan heeft de NDP wel de parlementariële meerderheid en moet de partij haar leidende positie binnen de coalitie duidelijk laten gelden. Toe je baantje hoor aan de NDP, wolle de partij heeft het ook, moet ook dat opeisen. Toch maar de janta, je ze bebaant aanplukken. Suriname DC, Suriname ke samachar ko hum sunate hai. Ab dekho bhai, ek laik bahi ke gail hai. Ego badreif hai, uhe Tutli Fo kanaal weg me volgens mij bhaiya. Hiya likhale Tutli Fo. Aur kanaal weg na likhale, tut hamme chahi bole ke ichi yuwa hai ga. Sinmeester Chilcher weg me, ego badreif hai. Tutli Fo. En hoe heb ik een lijk milke geil he, en heb ik een Hindustani ke bhaiya. Het lijk is besmeurd met bloed. Koen ook heel erg laag. Diverse instanties zijn ingeschakeld. En betalen we ki houtuin ke, de politie houtuin ke, kerbarem khoje he. Ek Hindustani, jo laatst oegera 84 jaar admi, ook een namba Roop Narayan Raghunath bhaiya. I tutli fo middenweg me rahat raha. En sanitcher ke 10 tarik oktober ke u ghar se vertrek bhaile. En kabhi loud ke nail he. En bole hega, o gekleed in een rood t-shirt, en een zwarte pantalon, en ook er op laas jijke middel he, tutli fo me bhaiya go bedrijf lage. To ye baant he. Hamara Suriname ke te bari duk ke baant he. To jo parwaar he, parwaar jo nhe Raghunath, aapke duk me radio fahun, jarur samil he. To hamare janta, aur aage ham jaila hiya ego, फोटो है भैया एगो फोटो है ओ मलिच है भाई ओ फोटो ने देखा टॉयलेट पॉट है एगो फीस बाक है भैया और फ्लोर तो तीखल करल इतना नासी गोरे बामी के पाकी अलिच मलिच सब बिगल है
टॉयलेट एकदम मली छे भाई थे एक बारे में बोले जग जर बंधन का बोले है जर बंधन बोले कार्ट स्लेक्ट आर्बेट ऑमस्टांडीन बाई डिफेंसी आन ते डिफेंसी के फोटो है भैया अमीरानी जर बंधन जेनिफर सिमोन के फोटो हुआ दिखावे है और बोले एक बारे में तू हमसे बताओ जो सानितेर हैगा सानितेर हैगा खाई क्यों है फिनाशील पोचिसी है डिफेंसी कम करतन के बोले तू ताक कितना स्लख्त जेनिफर बोले एक बारे में बोले तू अब तू बताओ कैसे ये चीज हो सके है बोले यहाँ हम तो कब भवेश दिखाएला तो 12 तारीख अक्टूबर के जरबंधन जो ने डिफेंसी मत स्थापन के फर्स्ट केलंद बोले गए मेमरे ब्रुकू का सरना में बोले सब देखी से और फोटो बनाई से और बोले हुआ के सन तेरे जो नहींगा फोर सीनिंग जो नहींगा बोले अंदर मात सेगा बोले हैगा फोलक जरबिंद जरबंधन बोले ब्लैक एट फोटो द टॉयलेट एंड बपाल डिफेंसी लोकांसी इन सो सेक्स द स्टार्ट फॉर केयर दैट मस्क अपन सेल्फ वाटर मुटन शोवन ओम देसना खबरई दूर तो स्पूले दरना सौदर द अनफोल्डिंग de schoonmaakmiddelen beschikbaar zijn om de sanitaire ruimtes hygiënisch te houden. De lantieke cheese van je defensieke cheese. Abbe koi oorlog aanjaga tap toilet kan de mien jai bhai wasi. To je maand hamara defensie me hee. Defensieke regels se bhaiya ki jor uniforme me toke chahi apan juta putsa kareke chamke ke je uniform moet schoon netjes uitzien. O sanitair de hoa de kyo bhaiya te 1 kilo मीटर दूर से गंधा है छाड़ भी कर दियो भाई जरबंधन वेल फंड रखेरिंग वीटन ऑफ शाय ऑफ द हुक ते इस फंड ओमस्टांड खीन एल वेलकम हाथ रेखले वर्ड खतरों ओम द सिन सैनिटरी फोर्सिंगन ते रिनोवेर एंड स्ट्रक्चरल स्कोन तो होदन ते बोले बहरे खब चमके भैया अ टॉयलेट में तू बैठ ना सके हैं ट्रैक ना कर पिए सबन बल्टी से लेके जा टॉयलेट में भैया अब्बे श्रीलाम हमार काए बरीसन पुराना खीन रात से चीज लेके चले हैं फूडिंग टेजेंट नाज सैनिटेर फोर्सिंग जरबंधन बोले है बोले खाई भी चाहिए हुआ पर वेख पर्सनल के मोई से देवे के मच कापन स्प्रे कैन फोकस हार हिन वार दे रहे एट फोर फॉर बी इतने न माल थे दी 12 बजे और बोले हुआ पे मिले के चाहेंगा सवेरे ईटन एंड ड्रिंकन ओख्तन फन वार अन अन फोर आफन हर फातन Verzoek op bij loonverhoging of financiële positie van het defensiepersoneel. Baart het DNA-lid zorgen. Obbele DNA-lid verdienen defensiemaatschappen. Respect waardering van de basisvoorziening. De foto die ik je bij je te chant hoe je hem jij hebt bij je terri. पीएल के फोर्सेटर जो रहे सोमो हार्जो भाई बोले वो उन्हें प्रोजेक्ट बोले मांडलेक्स अफ्लोसिंग फान हंड्रेड डॉलर यहाँ लिखल है तो सुमो हार्जो पर्चा लहूर के पेयल के का बोले के गो वोनिंग प्रोजेक्ट है बोले है मुखल क्रेकन से एक वोनिंग बोले मांडलक से अफलोस करी 100 अमेरिकन डाला बोले अफलोस करी पॉल सुमो हार्जो बोले है इनिशिएटिव एन इनिशिएटिव opgezet in kader van het 50-jarige bestaan van de partij. En bolle zomaar hardo bolle he. Bolle he ga partij zal functioneren. Partij zal fungeren. Het project is naar zijn zeggen toegankelijk voor de Surinamers. Surinamers die alleen voor partijleden ke he. Die partijleden he ga. Usab $100 per maand bari ga. I woningbouw project ke bhaiya. Or je oise kadiye te sowieso. To ke jai zomaar hardo ke stem kare ke bhai. तब तो देश चाहे चूली भक्कड़ में जाए मैं तो के 100 रुपया करवाए तो चाहे ओके करेगा दत इस अलमाल बदूने इधर इन कई नार से एक पड़ते ही मेंस दत जो अब मैं मुझ खान स्टेम मैं आज से इन द बलंग फन द अलगमीन लंट इस ना वर्टर वेनिक एरान गदान मेंस फॉल्गर सो मोहर जो कुन गे इंटरेसेर्ड इन विया एन ओवरइन कॉम्स मेट द बैंक फिनेंशियरिंग आन फ्रागन वोनिंग फॉर गेजिन एन यंगरन द गेप्लांड वोनिंगन मुटन अंडर मेयर 2 स्लैपकामर ego woonkamer, koekroep, badkamer, toilet, tjahinga, somohar, dus stel dat de partij verder wil kijken naar de eerste groep van 100 woningen, gezien de woningbehoefte in Suriname. Toen i project gebaren mega, boleki, aise aise tulun karsako hai.
तो ये बात है हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा जनता। गया दिन हाउट ऐट नर प्लेन ना वाइकरिंग स्कॉट सिंह फॉर राम सुकुल इन देना फिक्त। आप लोग जानो फे हपी के फ्रैक्सी लेजर असीस कुमार गया दिन बोले फोर सेटर हैगा और बोले हैगा अने फोर सेटर फाने नेशनल असेंबली के बोले है ओकर नाम बा इफानेल दो प्लेन के बोले उन नाम वो हैंडल करी सेगा और बोले हैगा और बोले हैगा फरखरिंग वां बोले नस कोर्स करी से खा हैंडल दोनों फरसुक कि एगो कोर्टे स्कोर्सिंग दे अफ्टरवेसन द स्कोर्सिंग वास बदुल्ड om VHP parlementariër Kiesje Ramsekool alsnog de gelegenheid te geven zijn spreekbeurt voor te bereiden nadat de sprekers volgorde onverwacht was gewijzigd. Bole bina verwacht kere, bole go spreker jona, bole chiwa wijzig karte, bole go kiefe temde, ki bole go chota scoring de voorbereid kariga, or bole hega gaya din bole se duidelijk aspraak hega, ki volgorde waarin parlementariërs het woord zouden voeren, eerst zouden de leden van commissie van rapporteurs aan het beurt komen, gevolgd door de overige parlementariërs, de parlementariërs, men via hoe hard hem te doen de keer, bina regels se kam hoe he, en dat gebeurt dit soort dingen. Ramsekool bole he, ki u samen pe gaya din fractiekamer me raha, waar hij bezig was zijn bijdrage voor te bereiden, toen duidelijk werd dat de twee andere commissieleden niet zouden spreken, haastte hij zich naar de vergaderzaal. Gayadin vertrok daarom om een korte schorsing, zodat Ramsekool zich op het spreekweer kon voorbereiden. Plein, die op dat moment de vergadering leidde als plaatsvervangende voorzitter, wees het verzoek echter af volgens VHP-fractieleider op de Kobolevia. Dat u verzoek mag leiden naar deze, omdat hij op dat moment namelijk de voorzitter was van de DNA. Op de Kobolevia man met revolvers. Pistolen leken bij ja 10-33 lijvolle scherpe patroon bolle illegale goud aangehouden in Klaas Greek zona bioker pas paise o illegale zona bi paise sipai Klaas Greek me bij ja pistool 33 go orug illegale zona ego Toyota Fitz bestuurder aangeduid met de intentie Tialen je probeerde te vluchten toen het merkte dat hij de woorden Abu Bhagemang is, maar dat ook is bij Kabul RBTM ke regio bijstand in midden ke ook in de rijke pakkelijse. Bolle toen de bestuurder besefte dat ze zouden worden aangehouden, zette hij het op een lopen. Dat ik is geschoten op de pakkelijke zoek en is doorreken bij ja, doorke bag is, maar de politie wist hem enkele tientallen meter verder op achter te halen, ook een pakkelijse. Op het tijdens een verhoor verklaarde dat ook een paar pistool heeft. Op het paramaribo met Ugeil Haukinise gekocht om zichzelf te beschermen. Uit de verder politieonderzoek zou daarna zijn gebleken dat de verdachte het aangetroffen goud op een illegale wijze in zijn bezit had gekregen. Maar ja, de abtu ijaiga gana gawe, toen ondertussen met gele kahan gana gawel, ja, bhaiya. ना प्लाता हुकुपे हम जाएले भैया इकोनोम विंस्टन विंस्टन और रमौतार सिंह की ओर हम जाई है। रमौतार भैया कृति से ऑफ द यार रीड सिमोन के कंक्रीट डूलन इन फिनिशिंग्स ऑन यहां बताए गए हैं इकोनोम विंस्टन रमौतार सिंह फिनी करे के जो रार यार रीद भले और वो करी से हम लोग के प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन और वो बोले है और बोले है खेरलिंग्स बोले उन फॉल दून द डुइडलकाइट करी से के जो कंक्रीट रिजल्ट करी रखेरिंग के बोले विल ब्रेकन एंड हु से हर प्लानन गान फिनांसिएरन बोले फॉलगंस फॉलगंस हिम ब्लेवन द अनकोंडिग बलेज फॉरनेम्स द फ्री ब्लेवन सो लॉन्ग मीटबार डुलन इन द बेबे होरन बखरोटिंग्समिडल ऑन ब्रेकन de Ibade Boli Sega, Econom Winston Ramautar Singh Boli Sega en Jennifer Simonke bolle duidelijkheid na hem. Ramautar Singh plaatst daarnaast vraagtekens bij de rol van het kabinet, van de president bij de uitvoering van het regeringsbeleid. Oefenikare Hega, die een werkgroep heeft, die een platform heeft, voor de verantwoordelijkheid van de minister niet mogen ondernemen.
तो दोस्तों अभी आपको अभी हम आपको और समाचार को सुनाएंगे और हम सोचे आपको एक गीत सुनाई दे। तो अभी हम

Orieta Savita Zindustu, jo mehma ban ke aaye is nagesongen lied jo aapko hum zuna diya hai. To abhi hum aapki aur kuch geet ko jarur sunayenge. Hum chalte hain और आगे को अपना समाचार को लेकर. हाँ दोस्तों, तो तेलवा कब निकरे, तेलवा कब निकरे कि जनता बोले हम अपन जीवन अरमोई चलाए थे. एकर बारे में भैया एनपीएस के गो पार्लियामेंटारियर पुतिनी आतोम पाई भैया बोले है का बोले द्रेखंद आनकोमंद ओंटविकलिंग इन द ओली एंड खास सेक्टर फर्स्क्रिकलिक गफोलगन ते हैवन फॉर सुरीनाम. बोले तेलवाजा निकरीगा तो बोले देखिए कितना बड़का बड़का गफोलग फर्स्क्रिकलिक गफोलग होयो कर बारे में फरंदरिंग कौन क्यों हुई. बोले धनी आदमी धनी हो जाए गरीब आदमी गरीब हो जाए. ओकर मतलब ही ऐसे है सुरीनाम. बोले सुरीनाम बोले है वो volgens hem zal de groep rijke mensen kleiner worden terwijl de groep met armen juist zal groeien. बोले हैगा जो जो जो गरीब है और ज्यादा गरीब हो जाएगा. और बोले हैगा de groep rijke mensen kleiner worden. बोले है zal verschrikkelijk zijn in Suriname met olie en gas. बोले एक अरबान है बोले 5 को होटल बने भैया 10 को हाफन बने हैं. बोले जो धनी आदमी है rijke mensen zal kleiner worden terwijl de groep van de arme mensen groter zal worden. De goedkoopste perceel in Suriname subsidion sasta rahega. का बोले हैगा जगह आदमी के बोले जहाँ पे बोले जहाँ मेट लिख्त वाते ने फरदार दो वीकर नहीं बोले शुरू हैगा 22,000 यूरो से बिकाई के. बोले के ओके किन पाई एक बारे में आ तुम पाई बोली से. बोले धनी धनी हो जाए गरीब गरीब हो जाए. बोले द पॉलिटिकस फॉर द आन कि बोले जो जगह जमीन है ऑन रूरल खुद सुरीनाम में बोले 15% omhoog is gegaan. बोले het gevolg hiervan is dat meer mensen het moeilijker zullen hebben. एक बारे में प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन बोले aangeven करिस कि सुरीनाम में बोले onvoldoende is voorbereid कि ontwikkeling जो 2028 के बाद है worden verwacht. Atom Pai बोले है regering tijdig beleid moet maken om de gevolgen van burgers draagleker te maken. Dus zo pleit hij ervoor ki tarieven jo stroom ke hai pani ke hai bole chahega mark comfort chahe vaststel kare ke bole jo subsidie hai uitsluiten worden versterk ki burgers deze tarieven niet kunnen betalen bole verhoog hoi ge hai. और बोले है मैं दी तेईस साल में है सीन है बे बखरेपन वाले खाद नीट खमाकलक सेन है लंच साल मोई सेन अन देर साल ओकलविकलिंग सेन मारे खदेट लफान मेंसन दी het moeilijker hebben om zich te redden is niet om naar huis te schrijven. To ye baat bole hai atom pai atulon jano bhaiya itna karja deswa mein hui ge hai 2028 se je telwa nikle ta 30 tak to khali karja bharai bhai khali karja bharai aur je karja bharai to desh kahan se hum log ke chamki latwe hoop das onze regering een goede programma maakt mensen om dit allemaal goed te laten te cool lopen en niet alleen maar denken het komt goed, het komt goed, het komt goed. Zo werkt het niet mensen. Je moet het wel goed gaan voorbereiden. Drive-by shooting. Schutters vluchten in 2 voertuigen. Bhaiya chalte mein dagawal bhaile Suriname des mein hamara nani. Chalte mein 2 admi atwar ke bhaiya. Bole for a warning. Leonard Belstraat mein. Bole hai ga chalte mein atwar ke 2 manen se zondag beschoten. Terwijl zij zich voor een woning aan de Leonard Belstraat in Suriname voor ghar ke aage 2 mila khada raha. 3 मिला चल ऑटो लेके जाए चलते मी सबके दागी से माँ सबके मीसी कर दे भैया लैया ना लगल है. फोल्क द बस के बार इंफॉर्मेशन स्कोटन द 3 मानन बुर्टलिंग्स में द रिवॉल्वर इन द रिक्टिंग फॉर द स्लाक्टोफर. बोले द बस की तेगर फ्लुक्टन सही 2 फुर्टेगर एको ग्रैसे लेक्सस रहा ईएस एन ग्रैसे ट्योटा फिट फॉर अ न्यू मॉडल सही रीडन वेग इन द रिक्टिंग फॉर सैमुएल फिनोक स्ट्रैट में. तो ये भी भैया देखो सुरीनाम देश में
चलते में भैया घर के आगे खड़ा हुई है तो जरूर एमा कुछ रहा हुई सो उमार थोड़ो ऐसे कोई दागी ना नहीं सो उमार ऐसे कोई ना दागी गे जरूर एमा कुछ मेद मतभेद भइल होई तो ये बात ना है हमारे नानी। अब देखो भैया सही दौरफ के सब कोई जाने हुए फुटबॉलर रहेगा इंटरनेशनल फुटबॉलर रहा हम लोग के नीदरलैंड के नेशनल फुटबॉलर और बोले सही दौरफ के परफॉर्म आने का कि हन हाईवे पे भैया एगो सही दौरफ फुटबॉल फेल्थ है हम बीते हुए साल गए रही देखे भाई खाली भूस लगल है डाम कंती भाई का बोली हमने ये स्पोर्ट हो एंड इट इज सो मोई खमाक मान एंड इक विन जो एर जोन की चीज वक अंदर हूँ इतना स्लाख्त है सही दौरफ वर्ड होफ ट्रेनर बे ब्रासियां से क्लब कोर्टिंटियंस भैया अब जीदोरफ जाएगा ब्रासिलिया के क्लारेंस सीडोरफ के बाद बतियाला अब ही जाएगा ब्रासिलिया के हुआ के एगो फुटबॉल फरी लिखेंगे कोर्टिंटियंस लिखल है अन डिग्रादासी हो दर 50 यार का आउट इंटरनेशनल इस आंकस्टेल अल्स होफ्ट्रेनर फॉर द क्लब फॉर द मेम्फिस डिपाई एंड सकारिया लिबाई zijn contract loopt tot 2027. तो इत बोली कुछ स्पोर्ट के बारे में तो हम बहुत कम बोलते भैया ओकर बारे में और कोई लोग है जो अपना प्रोग्राम को मनाते लेकिन ये न्यूज है तो उसके बारे में हम जरूर कुछ बोल देते हैं हमारे सुनने वालों हमारे प्यारे प्यारे जनता जो आपको हम इस समाचार को रेडियो फाहन के माध्यम से सुनाते हैं और सुनाते रहेंगे हमारे प्यारे प्यारे जनता हम चलते हैं भैया शर्माकारी फिर में तुल जानो कितना मछली मर गया ओकर बारे में पता चलल क्विक फुएक ओमा रहा अब दे एना लेट जो है प्लेन वेल वेटन कि के फ्रांत वोर्ड लग हैगा शर्माकारी फिर में जो उतरा फरखे भैल हाँ और सिमोन तो बोले रहा कि एगो बदरेफ है एकर बारे में ब्रिंसवाइक बोले रहा बदरेफ हो बगलिए में मछरिया जिए हैगा तो कैसे जाए कि शर्मक्का मछरी मरल है दो सतीस अलमान ऑन दई लिख देंगे चेस सब जिंदा मछरिया ले गए रहा फ्रांकरेंक में कहाँ गए ऑन सुख करे कि कैसे से मरल रहा ब्लैक बैल है पनिया शर्माकारी फिर के फरफेल हो गए रहा जे मैं बहुत ढेर क्वेक क्वेक रहा भैया अब एक बारे में एन पी एस पार्लियामेंटारी इफानेलो प्लेन जो है बोले हम दई लख मांगेला ओवर वी फ्रांतोर लिखित फॉर द फरफेल for us Makari Fir in Suriname bulle has stelled dat de veroorzaker moet opdraaien voor de kosten van de schade en gevolgen van de getroffen gemeenschap plein reageerde hiermee op de voedselpakketten die het kabinet van president heeft versterkt aan de gedupeerde de kabinet jijke खाना पीना पकेट पठावे भैया बेनलांत में उस अमदा तो सबके पानी मोरसू हो गए है तब प्लेन बोलेगा उस सब कोस्त चाहेंगे बदरईफा या कोई के भरे के ये फरांत और लिखेगा जो मच्छरियन हुआ के रिपोर्ट जो हुआ फरफेल करी से En hier ben ik zeker eens met meneer Plein. Maar meneer Plein, niet alleen dat, we hebben nog steeds niet duidelijkheid over de andere diefstallen. Namelijk zoals de kwikverdwening bij de politie. Orokarbane met zona jo apkoam geila, ketra ketra drugs chalge, ketra ketra admi. Kees koutuke, politiebureau met ze chi chori hoige he. Okarbane met kabi duidelijkheid. Naam hele meneer Plein, ik zou u vragen. Om die ook namelijk boven water te krijgen. Offline hier willen we weten wie de slachtoffers zijn. Maar ik wil weten wie de dader is. Of willen we niet de slachtoffer waken. Hey, maar we willen niet hoe dat er was op kosten. Dat is voor mij een belang. Ibar bullet plein en dat geef ik je helemaal. Bullet, wie zal de kosten draaien, zei Plein in de interview. और बोले है एक बारे में जेनिफर सिमोन प्रेसिडेंट जो बकेंड कर ले रहा बोले है एक बारे में स्टार्समैन बोले ग्रासाल को बोले चीजों मोर सुकर इसे पनिया बोले ना नाम फन बद्रेव दैट ऑफ द इसे कॉन्सेस एक्टिव फोर्स इस एक्ट नीत नर बैठन खबरा फॉल्स एनपीएस इस एट ग्रोथ बलंग दर रखें दिस इनफॉरमेशन वेल डील ऑन दर डॉर्स कमीज कपन अंदर से निश्चित अनसीकर है सुन बैलीवन तो बोले हैगा एक बारे बोले हम लोग मांगले दैलक है एंड आई गिव देसे मनी
Gno. Ja, Neger Engels met bolie zeggen. En enkele keer een pakket geven. Deksma, Anno, Begisma. Die mensen willen waardige burgers zijn. En ze willen daar de regering kom en zeg welke structurele oplossing zijn kan aangedragen. En dan ben ik helemaal eens met de meneer Plein. Op de Kobaya, aangelegd brand in pan met Cubaanse bewoners aan de Prinsenstraat. Jabber agi huan legal bhaiya, jabber agi legal hai. Aur Nikeri mein bhaiya, Nikeri mein ek lake mila lega, joan bahut gandhat ra, kharaab hoi gara, laas hoi gara, hamari janta, stank lei polisi na lekham in faire staat van ontbinding in Nikeri. To Nikeri ke baan chithega, saniwaar ke huan saban ondek kari se ka Narpas straat mein van Petan Polder mein ek laash mile le huan ek school hai, ek Natin school hai, jo in verkeerde faire staat van ontbinding was, bhaiya loon, to hiya bataye hai ga, aur khair opskaking van de Surinaamse politie, sipahi goin huan dekhi sna ko ban karke, ta ook een sab Nikari se vermoedelijk dat de stoffelijke overschal enige tijd op die plek lag. Hoe lang precies, dat weten die mensen niet. Al hier wat hij gegeven heeft, volgens de eerste informatie gaat het lichaam van een geouderd. Bronnen in de westen van Suriname melden van de reactie. Bolle hega, een ouderdjake vrouw in kwestie van een chronische ziek zou zijn geweest. Mogelijk houdt haar overlijden daarmee verband met de doodoorzaak. Maar na wat hij zei, namen al ik al kikke hij die ouderdja, hamari janta. Maar dukke ke baat hai jo ye sab cheez milale bhaiya SLM ke banti phut gaye sab koi oto ke banti surat raha phut gaya hai brom ke banti basigri ke banti SLM flukh na Amsterdam bhaiya plane wa jatra Amsterdam wo kar banti hai dagge bhai ha hiya dagge hai offer tra khoi gaye SLM phino na bolila een vertraag hoe maar bolila pino weer vertraag mensen SLM vlucht naar Amsterdam vertraag uitgevoerde na klapbaan gehuurde Boeing 777 kian banti lagai hui bhaiya sasta plane liho tab ka hoi en bole atkaan baki thoro killa raha bhaiya SLM ke vliegveld pe de gehuurde Boeing ra 772-200ER raha SLM ke joan paramaribo Amsterdam ja hai onderhoud kare hai 11 tarik oktober ke okar banti dagge bhai aur bole hai ga opgelopen bij de landing op de Johan Adolf Pengel Internationale Airport. Sanderijpe Dagale Bahia. Want ja, het toestel door SLM wordt gehuurd. Bollega kon ondanks het incident door de piloot veilig naar de parkeerplaats worden gebracht. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken. Vooral was niet merkbaar voor de passagiers aan de boord. Bollega Najan Paiske Banti Dagge hai. तो बहुत अच्छा बात कि अच्छा से रुक गए भैया बाकी बांधती आंती दगे भाई एंड दैट सेम द इंसिडेंट व्हाट कैन gebeuren mensen dat kan allemaal gebeuren maar de onderhoud van de vliegtuigen moet wel goed zijn anders krijgen dit भैया देखो अल्बिना की ओर हम जाएला भाई माने को आदमी पकड़ के बंद करी से बदराई करी से अपन बहन के ओ बोले हप बहनिया के बोले दीदिया तो के हमें जान से मार दे

Dan moet je zeker de hulp halen van de instanties om jezelf veilig te houden. तो ये बात है हमारी जनता. 13 बरिस के लड़का भैया मैं ट्वीक्स तीख बोंद न सिकर है लड़त रहा 13 बरिस के लुंडा भैया सबन ओके भूख भांग देई से जानता और ये लड़का के सबन सिपाही ने यानी कि सिकन है इसमिली के कर दे से. अभी आप लोग को और समाचार को हम सुनाएंगे. हम चलते हैं एक की नवरात्रि का.

आँच में जाके पता चला है कि चोली के पीछे क्या होता है। चोली के पीछे दिल होता है दोस्तों, और दिल तो सबके पास होता है, लेकिन किसी को उजला दिल होता है तो किसी के काला दिल भी होता है।

छोड़ दो, ये आपका कौन सा दिल है आपको खुद मालूम होगा, लेकिन ये चोली के पीछे और कुछ दिल है दोस्तों। तो यहां से हम अगला और हॉट वन और कुछ नाचनी स्विंग के गीत हम आपको सुनाते हैं। क्या है

और नमकीन हो गई है, नमकीन हो गई वो, और पानी पानी का ये सॉन्ग थे हमारी यारो, और हम चलते हैं अगला अगला हॉट वन सॉन्ग की ओर। और वो क्या है, वो क्या है, चोली के बांति, चोली के बांति क्या आता है, क्या आता है।

और गुपचुप गुपचुप गुपचुप गुपचुप क्या होता है, गुपचुप में बहुत कुछ होता है। और जाए के और सो गए किसी और जगह जहां पान नहीं सोना था।

En daar gaan we weer. It's the dance and party time. Full heart.

और दारू पी के डांस करे और डांस करे, बिना दारू पिए यहाँ लोग डांस करते, और गीत कहते हैं कि दारू पी के और डांस।

छम्मा छम्मा कौन है, किसका नाम है छम्मा छम्मा, और छम्मा छम्मा के बाद तो हम और आगे चलते हैं, और वो क्या है।

0: और नौ एंट्री मारे बेरी यू फन हैप्पी ऑल टेट एंट्री सेंसेशन
1: चढ़ता है
0: फन रेडियो फन।

ओ नींद के मारे में क्या क्या होता है दोस्तों, कुछ गलत मत कर देना, नींद में बहुत कुछ हो जाए।

0: आई शुरू मेरा वतन जापान लता जी आपको सुनाए हैं और कार्यक्रम में हमने चलाए हैं। आप सबका स्वागत है जो लोग चून की मीटर पर। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये गीत इस तरह से, बस ध्यान दे के सुनिए।
1: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार,

कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। मैं थी मुकेश द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस, आपको सुनाइए ये शानदार गीत, जबकि आप भी सुन रहे हैं और मैं भी चला रहा हूँ, आप सबका हृदय से स्वागत है। आप सबका स्वागत करते हुए तो सुनिए, मैं आपको ये सुना रहा हूँ इस तरह से, लता जी है, जी हाँ लता जी है, फिक्टोरिया 2023।

थोड़ा सा ठहरो लता जी की आवाज़ में पेश किया गया फौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, क्या ख्याल है अगर साथ साथ चलने के वादा की जाए तो इस तरह से।

न थो छोड़ेंगे दामन तुम्हारा, वहाँ तक ये शानदार गीत चला। हमने पेश की रवि साहब आशा जी की आवाज़ में, और उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ख्याल है, प्रेम प्यार मोहब्बत में तो लोग बहुत वादे करते हैं लेकिन कभी निपता है कभी नहीं। लेकिन चलिए सुनते हैं कि एवरग्रीन किशोर कुमार क्या कह रहा है इसके बारे में।

शायद होगा जो, शायद कोई होगा जो ये फिल्म नहीं देखे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 95% लोग ये फिल्म अवश्य देखे होंगे। गीत में तो आपने नाम सुने, जूली, जूली फिल्म है का नाम है, राजेश रोशन के साज पर फिल्म जूली में से निकाले हैं, एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं। चलिए कार्यक्रम बढ़ाते हुए, तो क्या ख्याल है अगर आपको ये गीत सुनाऊं, इसे सुनिए, क्योंकि ये गीत बहुत नहीं चलता है और ये गायक का गीत बहुत भी नहीं चलता है, लेकिन आप तो आज तो हम आपको अवश्य सुनाएंगे, बस अंदाज़ा लगाइए आवाज़ किसकी है।

जी हाँ, आशा जी, आशा जी के साथ कौन था आप अंदाज़ा लगाए होंगे, सुबीर सेन। जी हाँ, सुबीर सेन की आवाज़ में ये गीत था। आशा जी के साथ एस महेंद्र के साज पर हमने पेश की फौन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, और वो है क्या ख्याल है, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाई ये शानदार गीत और हमने पेश की बस फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। तो अगर आप भी हैं मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है अगर ये चलाया जाए।

बस शारदा जी, बहुत देर ना समुचिए वरना पासा पलट ना जाए कहीं। बहरहाल फिर भी आपको सुनाएं शारदा जी के साथ ये शानदार गीत हम पेश किए। तो अगला गीत, ये गीत भी बहुत दिन हुए होंगे शायद आपने नहीं सुने, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं। कार्यक्रम में येसुदास।

हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, अब हम इसको रखेंगे संभाल कर। आवाज की दुनिया के दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। बुधवार शाम के कार्यक्रम में आपसे भी कह दे से स्वागत है। और जैसे आपको इतला किया गया है तो प्रति बुधवार को शाम में 5 से लेकर 8 बजे तक हमारे हिस्सा कार्यक्रम चलेंगे और इसके साथ साथ शनिवार को रात्रि में 8 से 11 बजे तक। तो शाम के कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हम आपके लिए पेश करेंगे 5 से 6 बजे तक कुछ वेस्ट इंडीज बैठक गाना और 6 से 8 बजे तक कुछ मिले जुले गीत, कुछ ज्ञान की रोशनी यानी कुछ ज्ञान की बातें होंगी, कुछ संगीत आपके लिए पेश करेंगे। तो कुल मिलाकर 3 घंटे तक हमारा और आपका साथ है और आशा है कि आप भी हमारे साथ देंगे।

संगीत न माने धर्म न जात, संगीत से जुड़ी कायनात, संगीत में है गीता पुराण, संगीत में है सीता और राम। इसी धुन के साथ शुरू करते हैं वेस्ट इंडीज संगीत सम्मेलन। ये बैठक गाना कार्यक्रम है और जो हम आप सुनने वालों के नाम ढूंढ कर रखे हैं, क्या है, शाम के वक्त है, आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन के समय पर चटनी हम आपको दे रहे हैं और आपसे कहेंगे कि आप स्वादिष्ट से भोजन करें। इश्क करते एकदम इशाक जानकरन।

लंगर मुरी गांगर फोड़ी गयो त्रिदांस की ठुमरी और लेकर आए थे शांत जान करें जो आज के कार्यक्रम में आपके नाम पेश किए हैं। गीतों की सिलसिला आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं अबकी बार जो गीत हम आपके नाम पेश करने जा रहे हैं, क्रिस राम खिलावन फरमा निकली जा रहे हैं।

इशाक जानकरन जी के बाद हम आपके लिए ला रहे हैं मिस्टर सनातन, और फरमाने के लिए जा रहे हैं अब की बार, देखते हैं तो प्यार भरे गीत हैं।

तारे राधिका तुझको पुकारे बजना बसुड़िया रे, आओ ना कन्हैया रे, पेश किए हैं आपके नाम और अब की बार हम लेकर चलते हैं एक भड़कते हुए नगमा है। परदेसी बलमोआ क्रिस राम खिलाउन के आवाज में है।

दुख हरु द्वारका नाथ शरण में तेरी, और पेश के हरी शिव बालक जी की मधुर आवाज में। राजू शिव गुलाम फरमाने के लिए जा रहे हैं हम बंजरवा।

हम बंजनवा जैबे और ये भी राजू से गुलाम के वंज में यही सुंदर से बैठक गाना पेश किए हैं आज शाम के कार्यक्रम में। अब दोस्तों जिस आप बैठकर भोजन कर रहे हैं तो आपके लिए चटनी लेकर आए हैं आपको स्वादिष्ट भोजन कहते हुए और आपके पास लेकर चलते हैं कि जो आपके नाम है राजन जवाहिर।

जवाहिर के आवाज में ये गीत आज के कार्यक्रम में आप सुन रहे दोस्तों, जबकि वेस्ट इंडीज बैठक गाना कार्यक्रम आपके मन में हम पेश कर रहे हैं। शाम के वक्त है, आप सभी को स्वादिष्ट भोजन करते हुए और नगमे जो आपके नाम चुने हैं दोस्तों, अभी 6 बजे के बाद कुछ मिले जुले गीत आपके लिए हम पेश करने वाले हैं। तो हमारे कार्यक्रम में आप साथ बने रहें। प्रति बुधवार को शाम में 5 से लेकर रात्रि में 8 बजे तक

0: राम मूर्ति लक्ष्मण के बाद आपको लेकर चलते हैं रामदेव चैतु जी और फरमाने के लिए जा रहे हैं वो की बार देखते हैं। तो गीत जो हम आपके लिए चुने हैं राते सपना।
1: पत्ता टूटे डार से कि ले गए पवन उड़ाए, यारी बिछुड़े यार से ये दुख हमसे सहा न जाए।

सुरीनाम देश के मशहूर गायक उस्ताद रामदेव चैत्य की आवाज में आप सुने रात सपना दिखाएं पिया हमको। और दोस्तों ये गीत वही गीत हैगा जिसे आप जब भी सुने हैं हिट हुआ है और आज भी हिट ही रहेगा। तो ऐसे नगमा जो हमारे लिए उस्ताद रामदेव चैत्य जी छोड़ गए हैगा तो हम हमेशा सुनते रहेंगे और उनका नाम ऐसे अमर रहेगा, हम उनका गुण गाते रहेंगे। तो इसके बाद हम आपके लिए और गीत जो चुने हैं तो लेकर चलते हैं, एक और ऐसा ही सुंदर नगमा है फरमाने के लिए जा रहे हैं तेसी रघु सिंह बलिहारी माए बलिहारी।

0: बलिहारी।
1: श्री दई सिरकु सिंह के आवाज में सुने आप बलिहारी, मैं बलिहारी तेरे चरणों के मैं पुजारी। इसके बाद हरिदत्त जयराम फरमाने के लिए जा रहे हैं नवा मारे मछरिया।

इसी धुन के साथ आज के बैठक गाना हमने शुरू किए हैं और इसी धुन के साथ समाप्त होने पा रहा है। शाम के कार्यक्रम में आप सभी के नाम पेश किए, भोजन के समय पर चटनी आपको दिए हैं और आशा है कि ये चटनी आपको अच्छा लगा हो, आपके स्वादमय हुआ हो। अभी आप रकलाम सुनेंगे, रकलाम के बाद बाकी कार्यक्रम जरूर सुनते रहना जिसमें कुछ ज्ञान की बातें और कुछ नगमे। और जैसे आप सभी को मालूम है तो नवरात्रि चल रहा है, तो कुछ ना एक नवरात्रि स्पेशल जरूर आप सुनने वालों के नाम अभी हम पेश करने वाले हैं, तो कार्यक्रम में आप बने रहें।

0: नरेंद्र चंचल और साथियों के वाज में यही सुंदर से आरती आप सुने हैं जगजननी माँ अम्बे के चरणों में समर्पित किया गया है।
1: नवरात्रि कब से मनाई जाने लगी? ये नवरात्रि जिनकी आप पूजा करते हैं ये कौन है? नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? कब से मनाई जाती है? क्या कारण है? तो आपको बताएं, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से ही नवरात्रि का भी उत्सव चालू हुआ। ये जो देवी माँ है ना, जिसे हम नवरात्रि नौ देवियां कहते हैं, ये किनकी पुत्री हैं? ये माता यशोदा की पुत्री हैं। इनका एक नाम है योग माया। इनका नाम क्या है? योग माया। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस धरती पर हुआ, कृष्ण बनकर आए, तो भगवान ने अपनी माया से कहा, देवी आप भी जाओ, क्योंकि आपके बिना हमारी लीला संभव नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया और योग माया ने माता यशोदा के गर्भ से जन्म लिया। और जब श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने रखा तो उस कन्या को लेकर आए। माया, योग माया ने कहा, प्रभु हम आपका इतना बड़ा काम करेंगी, हमें क्या मिलेगा? तब भगवान कृष्ण बोले, देवी हमें लोग साल में एक बार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर पूजेंगे और तुम साल में दो दो बार नव देवी के रूप में पूजी जाओगी, यही तुम्हारे जाने का प्रतिफल है। वह भगवान माता योग माया को भेजते हैं। और जब कंस, अच्छा कृष्ण को रखकर देवी को लाए, तो कंस को पता चला आठवें गर्भ में बेटी नहीं बेटा हुआ है। तो कंस ने पत्थर पर पटक दिया, हाथ से छूटकर वो अष्टभुजाधारी बन गई दुर्गा। पर बोली, मूर्ख तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। और वही अष्टभुजाधारी देवी आज वर्तमान में यहां से मथुरा से जाकर आप पर्वत में जाकर विराजमान हो गई। मुझे स्थान का नाम विस्मरण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, कौन सा पर्वत है? हाँ, विंध्यवासिनी, विंध्याचल पर्वत ना, विंध्यवासिनी मैया के नाम से वो जानी जाने लगी। और वहां पर मैया जी विराजमान हो गई। वह माता यशोदा की पुत्री हैं। तो वह नौ देवियों के रूप में जानी जाने लगी। प्रथमम शैल पुत्री चा, प्रथमम शैल पुत्री चा अर्थात पहली आर्ज के दिन, प्रथम दिन किसकी पूजा होती है? माता पार्वती की पूजा हो, शैल पुत्री अर्थात जो हिमालय है, हिमालय की पुत्री माता पार्वती, पहले दिन माता पार्वती की पूजा होती है। वही माता पार्वती दूसरे दिन, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन अर्थात द्वितीया कल वही माता ब्रह्मचारिणी के रूप में हम पूजेंगे, वो पूजी जाएंगी। तृतीयम चंद्रघंटेती, चंद्रघंटा के नाम से वह तीसरे दिन पूजती हैं। चौथे दिन कोषमांडा के नाम से, पांचवें दिन स्कंध माता, छठवें दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और नौवें दिन सिद्धिदात्री। ऐसे बड़े प्रेम से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। यह दुर्गा को आप राधा रानी कह सकते हैं, सीता जी कह सकते हैं, पार्वती कह सकते हैं, सरस्वती कह सकते हैं, लक्ष्मी कह सकते हैं, जो मन आए वो कहिए। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी हमने उनसे कहा राधे कृष्ण का जाप किया करो। तो उन्होंने कहा, महाराज जी हम तो माता जी के पुजारी हैं, अब हम क्या करें। आज हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन दूर हो नहीं रहा है। हम बहुत प्रयास करते हैं कि आपको समझाएं, तो आप तो समझ लेते हैं, आपका कन्फ्यूजन तो दूर हो जाता है, पर जो नहीं सुनते वो बेचारे कन्फ्यूज रहते हैं। हमने कहा आप राधे कृष्ण जपा करो, सीताराम जपा करो। उन्होंने कहा, महाराज जी हम तो माता जी के पुजारी हैं। हमने कहा, भैया ये जो राधे कृष्ण में जो राधा है यही तो माता है, सीताराम में जो सीता है यही तो माता है, लक्ष्मी नारायण में जो लक्ष्मी है यही तो माता है, जो नवरात्रि की देवियां हैं ये कौन है, इन्हें आप राधा के रूप में भी देख सकते हैं, ये राधा ही तो है। योग माया कौन, भागवत जी में आगे आएगा, योग माया मुपाश्रिता, अर्थात भगवान ने श्री राधा रानी को योग माया के नाम से संबोधित किया है। योग माया कौन है, श्री राधा रानी, और राधा रानी कौन है, महालक्ष्मी। महालक्ष्मी कौन है, सीता जी। एक बार वो सीता बनी, एक बार वो राधा बनी, वही महालक्ष्मी है, महागौरी है, महादेवी है, वही नवरात्रि है। तो कुछ भी अलग नहीं है, सीता राम कहो राधे श्याम कहो, जो सीता है वह नवरात्रि की देवियां हैं, नौ नाम से पुकारी जाती हैं, नौ दिन पूजी जाती हैं। है देवी एक ही, पर नौ नाम से पुकारी गई, तो एक एक नाम को एक एक दिन की पूजा से हम मनाते हैं। है एक ही, पर नौ भागों में नौ नामों से विभक्त हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तब इनका भी जन्म हुआ, और आज तब से लेकर आज तक नवरात्रि हम मनाते आ रहे हैं।
0: श्री अनुरुद्ध आचार्य महाराज जी के जरिए आप नवरात्रि के बारे में, कब से देवी पूजा की जाती है, कैसे की जाती है, ये माता रानी कौन है, ये साक्षात राधा माता है, ये साक्षात सीता माता है, आप विस्तार में ये कथन सुने हैं।

0: धरती न मांगू, अंबर न मांगू, मांगू माँ तेरा प्यार। और इस नवरात्रि में माँ जो है तो प्यार बरसा रहे हैं, सिर्फ आपको उनके साधना करनी है, माँ की भक्ति में आपको लीन हो जाना है, तो जितना प्यार आप चाहें आपको मिल जाएगी। नवरात्रि के अंतर के बारे में बताया जा रहा है कि साल में दो नवरात्रि हैं और ये दोनों में क्या अंतर है, तो ये फर्क जो है, ये अंतर जो है, तो मिलकर हम और आप सुनते हैं।
1: माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा चैत्र नवरात्रि में भी की जाती है और शारदीय नवरात्रि में भी। फिर भी आखिर ऐसा क्या है जो दोनों को एक दूसरे से अलग बनाता है? क्यों इन दोनों नवरात्रियों को एक नवरात्रि नहीं माना जाता? क्यों हम हर साल दो नवरात्रि मनाते हैं? दोस्तों, गृहस्थ और पारिवारिक लोगों के लिए साल में दो बार नवरात्रि का पर्व आता है। पहला चैत्र के महीने में, इस नवरात्रि के साथ हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है, इसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। दूसरी नवरात्रि अश्विन माह में आती है, जिसे शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि पौष और आषाढ़ के महीने में भी नवरात्रि का पर्व आता है? जी हाँ दोस्तों, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, लेकिन उस नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है, इसलिए गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों को या परिवार के लोगों को पौष और आषाढ़ के महीने में आने वाली नवरात्रि मनाने की सलाह नहीं दी जाती। गृहस्थ और पारिवारिक लोगों के लिए सिर्फ चैत्र और शारदीय नवरात्रि को ही उत्तम माना गया है। दोनों में ही माता रानी के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि मनाने का कारण क्या है। ऐसा कहा जाता है कि जब धरती पर महिषासुर का आतंक काफी बढ़ गया और देवता भी उसे हरा पाने में असमर्थ हो गए, क्योंकि महिषासुर का वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसे में देवताओं ने माता पार्वती को प्रसन्न कर उनसे रक्षा का अनुरोध किया। इसके बाद माता रानी ने अपने अंश से नौ रूप प्रकट किए, जिन्हें देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र देकर शक्ति संपन्न किया। ये क्रम चैत्र के महीने में प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर नौ दिनों तक चला। तब से इन नौ दिनों को चैत्र नवरात्रि के तौर पर मनाया जाने लगा, क्योंकि इन नौ दिनों में माँ दुर्गा के नौ रूपों का जन्म हुआ था, तो यह कारण है चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे। अब हम जानेंगे कि क्यों शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि देवी दुर्गा ने अश्विन के महीने में महिषासुर पर आक्रमण कर उससे नौ दिनों तक युद्ध किया और दसवें दिन उसका वध किया, इसीलिए इन नौ दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया है। चूंकि अश्विन मास में शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। माँ दुर्गा ने महिषासुर के साथ नौ दिनों तक युद्ध करके उसे हराया और इस सृष्टि को उसके आतंक से मुक्त कराया। इस कारण माँ दुर्गा के द्वारा महिषासुर नामक अंधकार को इस दुनिया से हटाने व दुनिया को एक नई रोशनी देने के रूप में शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है, और यह शरद ऋतु में आते हैं, इसलिए इन्हें शारदीय नवरात्रों का नाम दिया जाता है। शारदीय नवरात्रि के दसवें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। इन मामलों में भी अलग है चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान कठिन साधना और कठिन व्रत का महत्व है, जबकि शारदीय नवरात्रि के दौरान सात्विक साधना, नृत्य, उत्सव आदि का आयोजन किया जाता है। ये दिन शक्ति स्वरूप माता की आराधना के दिन माने गए हैं। चैत्र नवरात्रि का महत्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अधिक है, जबकि शारदीय नवरात्रि का महत्व गुजरात, पश्चिम बंगाल में ज्यादा है। शारदीय नवरात्रि के दौरान बंगाल में शक्ति की आराधना स्वरूप दुर्गा पूजा पर्व मनाया जाता है। वहीं गुजरात में गरबा आदि का आयोजन कर इसे बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के अंत में रामनवमी आती है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम का जन्म रामनवमी के दिन ही हुआ था, जबकि शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी के रूप में मनाया जाता है। इसके अगले दिन विजयदशमी पर्व होता है। विजयदशमी के दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किया था, यानी महिषासुर का वध किया था, और प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। इसीलिए शारदीय नवरात्रि विशुद्ध रूप से शक्ति की आराधना के दिन माने गए हैं। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि की साधना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। वही शारदीय नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। चैत्र नवरात्रि कहो या फिर शारदीय नवरात्रि, माता रानी की पूजा अर्चना के यह 9 दिन मन को एकदम शांत, शीतल व पवित्र करने वाले होते हैं।

कुछ भजन के साथ साथ कुछ ज्ञान भरी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ज़रूर आप याद रखें दोस्तों कि यह कार्यक्रम में हम पेश जो कर रहे हैं तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए या तो आप स्टूडियो में तार करना चाहते हैं तो 0 7 3 2 7 2 7 7 हर एक काम के लिए इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप या हमारे कार्यक्रम के लिए या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो 0 7 2 7 4 7 7 4 7 तक आप व्हाट्सएप बरख भेज सकते हैं या तो एक SMS बरख भेजिए, क्योंकि लाइव कार्यक्रम चल रहा है तो शायद हम आपके तार नहीं उठा सकें, तो आप एक संदेश जरूर भेजिए 0 7 2 7 4 7 7 4 7 पर। और ये भी नवरात्रि स्पेशल में आपके नाम पेश किया जाता है।

नमूट नमो दुर्गी, ये पूरा दुर्गा चालीसा आप सुने हैं मैथिली ठाकुर और उनके दो छोटे भाई तबला और ढोल पर साथ दिए हैं। इस नवरात्रि के अंतर्गत में हमने आपके नाम पेश किए हैं।

नवरात्रि के अंतर्गत में कुछ भजन, कुछ कीर्तन और कुछ प्रवचन, ये सब मिला जुला कर आप तक पहुंचा रहे हैं। आशा लगाए हुए कि आपको पसंद आ रहे होंगे।

और एक एकदम गेकर के बोल जो है आम देखते लेकर चलते एक नए नगमा को रहे हैं। टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में काम किए ईशा गुप्ता के साथ मिलकर, और ये गीत आपके नाम हम पेश करते हैं।

अश्वनी मशल और साथियों मिलकर ये गीत फरमाएं आज के कार्यक्रम में जो हमने पेश किए हैं, और इसके बाद गीत जो हम चुने आज हमें मालूम।

हकीकत कहो तो उनको ख्वाब लगता है, शिकायत करो तो उनको मजाक लगता है। कितने शिद्दत से उन्हें याद करते हम, और एक वो है जिन्हें ये सब इत्तफाक लगता है। शाकी पेश करते हैं संजू राठौड़।

0: जिस्पा। उठा माजा किंग, ओ माजे किंग।
1: और शेकी शेकी आपके लिए हमने पेश किए हैं दोस्तों, इसके बाद लेकर चलते हैं। और जब कुछ नए फिल्म के ऐसे गीत चुने हैं, क्योंकि पुराने नगमे ये दोनों आपके लिए चलते रहते हैं, तो कुछ नए गीत के बारे है पेश करते आपकी बार एक बार फिर से रंजन। दो पत्ती फिल्म के नाम, शहर शेख और कृति सनन पर फिल्माएंगे ये फिल्म।

याद तेरी आती है जान मेरी जाती है आई है। आपके नाम पेश की है फिल्म का नाम आ गले लग जा। ये नई फिल्म आ गले लग जा से निकाली ही और आज के रात कार्यक्रम में आप सुनने वालों के नाम रख दिए हैं। वो यदि जिसमें तुम नहीं और वो तुम ही क्या जिसके साथ हम नहीं, पेश करते हैं एक और इसे प्यार भरे नगमा प्यार करने वालों के नाम।

कौन सा इश्क हमारा, ये अजय देवगन ऐश्वर्या राय पर फिल्माएंगे ये गीत हैं और संगीत जो इस पर जो मधुरमय दिया गया है, हमें ज़रूर आशा है कि आपको भी पसंद आए होंगे। दोस्तों हम हमेशा अक्सर बतलाते रहते हैं कि हर एक काम के लिए हमारा दफ्तर का पता हैगा, और दफ्तर का तार्क नंबर है 07 3 2 6 2 7 7। और यदि आप हमसे खुद संपर्क करना चाहते हैं तो 06 2 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4 6 7 4
लेकर चलते हैं। अब जब गीतों किसी लगा आगे बढ़ाते हैं, तो अब की बार चुने हैं आवाज

संगीता प्रीतम के मधुर साज, अरिजीत सिंह और निकिता की आवाज है, अमिता भट्टाचार्य जी की कलाम, फिल्म वार्ड टू वार्ड द्वितीय से निकाले हैं, ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी पर फिल्म आएगी नगमा।

0: किसी और से मोहब्बत ना हुई ना है
1: ना हो
0: ना होगी। सोनू निगम और अलका याग्निक दोनों मिलकर फरमाए आशी कार्यक्रम में। फिल्म आन से निकाले हैं दोस्तों, याद करें हर काम के लिए 07 3 2 6 2 7 7 और सीधे स्टूडियो में हमसे संपर्क करने के लिए 07 2 6 7 4 6 7 4 6 पर आप तार करें, व्हाट्सएप करें या तो एसएमएस के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।

साहब ने पेश किए हैं ये सुंदर गीत। दोस्तों रात्रि कार्यक्रम है, आप जो हैगा तो हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं इतना चैन से, तो क्यों ना कुछ ऐसे प्यार भरे नगमा हम आपके नाम पेश करते रहें। गोपाल शर्मा इनके आवाज़ में सुनेंगे आप एक फोल्क शेक सॉन्ग, साथ में राजेंद्र आचार्य।

खुशबू तेरी मुझे महका जाती है, तेरी हर बात मुझे बहका जाती है। सांस को बहुत देर लगती है आने में मेरे दोस्त, सांस को बहुत देर लगती आने में, हर सांस से पहले तेरी याद।

कश्ती का सुहाना सफरनामा कार्यक्रम आपके मन में पेश किए, आशा उम्मीद लगाए हुए कि जिस तौर और तरीके के साथ हमने कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं आपको पसंद आए होंगे। अभी आप रकलामा सुनेंगे और रकलामा के बाद हमारे साथी भाई सुरेंद्र जी कार्यक्रम ऑफर लेने वाले हैं, तो आप सभी को हमारे ओर से एक शुभ रात्रि और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

प्रतिष्ठिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हरिओम एकदम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग साथियों, हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर से भरा हुआ प्यार नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को और आप सभी को भी हरिओम हरिबोल सत श्री अकाल। मैं हूं आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेन कृष्णदत्त भगवान दीन जिसे आप ढेर सारे श्रोतागणों आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड खलिंग में संगीतकारों का दास्ता नामक कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ हूं साथियों, यही आशा उम्मीद लेकर कि आज का सिलेक्शन भी आप सभी को पसंद आएगा। तो जहां पर भी हो जिस हाल में हो, घर पे हो या तो काम कर रहे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे और हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ रात्रि पेश है मैं ढेफी लश्तर प्लेजीर के साथ। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इंटरनेट के लहरों द्वारा faunfm.nl पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। जो भी रेडियो का काम आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो यारो, तो जरूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में फमाडा टॉट फ्रेरा टेनेंस कंटोर यूर ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स कंटोर 97 3 6 2 7 4 और स्टूडियो का तार का नंबर है 97 3 6 2 7 7। क्वालिटी सर्विस और गारंटी के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं यारो, यानी तो फिर खेत है उनसे क्वालिटी इज ऑलवेज योर गारंटी रिमेंबर दैट। हो सकता है कि आपके घर पे एक जश्न मनाया जा रहा है या तो आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे, हो सकता है आप विवाह संस्कार की तैयारियां में लगे हो, जो भी खुशी के दिन जश्न आप सभी मना रहे फाउन हिंदुस्तानी फूल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयां ही बधाइयां खुशियां ही खुशियां प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। ऊपर वाले से हम सब मिलकर बिंदी दुआ करते हैं कि आप सभी की नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। अगर आपके घर पे एक दुख का घड़ियान पड़ा है, आप एक मातम में हो गमी में, तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फूल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है मातम में शरीक है और ऊपर वाले से हम सब मिलकर बिनती दुआ करते हैं कि आप सभी को सहन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। जो बीमार लाचार है आपके तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर बिनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए बेहतर हो जाए चंगा हो जाए। नित्य वृहित है जिंदगी का मजा रोजाना लेते रहना बंधु, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को भी रोजाना सुनते रहना और हो सके तो हम लोगों के बारे में जरूर थोड़ा बहुत बातें शाते करते रहना। फनहर्त बीटर्स का आप कामयाब हो तो हमारे फुल टीम की तरफ से तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां और हो सकता है कि आप आजकल या परसों कामयाब नहीं हुए हो तो चिंता की कोई बात नहीं है बंधु मोर्ख स्वीर दख, दिन पे दिन अपने आप पर विश्वास भरोसा यकीन सेल्फ फर्तुरावत थोड़ा और जोरतों से बढ़ाते रहना और साथ ही साथ कोशिश से जारी रखना था हो सकता है ना कि कामयाबी भी जल्द से जल्द दौड़ दौड़ कर आपके कदमों को भी आकर चूम सकते हैं बंधु। देखो मेहनत तो है दौलत का यारी ना, देखो नो इथ ऑफ वो तो ओवरऑल क्लियर थे घरों कमुआ पर और दोस्तों हिती प्रेमियों के साथ नेफर गिफ ब्राडाना सीसा खाऊं दोर खान हो सकता है हम तो बोले लाख दोर खान तो दच्चे दरबाई नेर फाल या सो काइन ऑफ नर सक्सेस टू रेक एंड ब्रेक दिस नेफर गिफ ब्राडाना सीसा सो सो लोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड आई विल बी डंक्ड फॉर इट लाइस्टरन।
इसमें प्रवेश हुए तो हमारे फुल टीम की तरफ से सुस्वागतम फैन फकांसी ब्लेफ लॉयस्टर नार फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो ये गात इट सेकर लुक फिंड एंड दैट गारंटीर इक यू। और हो सकता है कि आप देश को छोड़ के विदेश यात्रा पे जा रहे हो सुपनार मेयर वारंट तो आपको भी फुल टीम की तरफ से एक शुभ यात्रा फैन फकांसी। तमाम लोग सुनते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को फैन फकांसी एड्रेस तो आप भी सुनिए हम लोगों को। सो बैंट एंड ब्लाइफ टी फन अलस ऑफ द हुक तो फन यू फेवरेट स्टार रेडियो स्टेशन एंड दैट इज नेचुरली हमारे देन हाक सरकार द वन एंड ओनली फाउन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस। साथियों प्रोग्राम का शुरुआत तो मैं सदियों से करते आ रहा हूँ वही शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के साथ एड फिल्म ललकार निगेटिंग टू इन सी मदर कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी। क्या छा लो मुस्कुरा लो महफिली सजा लो क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ परम पिता परमेश्वर को मालूम है। इसीलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते रहते हैं और सदा ही कहते रहेंगे हम इंसान हैं हैव टू नाश्ता होते लीफ है कांधे कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है बंधु खुद को आगे को बढ़ाना है देश को भी आगे को बढ़ाना है कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ आप सुनेंगे साप्ताहिक प्रोग्राम संगीतकार का दास्ता नामक कार्यक्रम खलिंग में गीत और गजल ओट इज गोट। और उसके बाद तकरीबन 9 से 10:30 बजे रात्रि तक आप सुनेंगे सिर्फ नगमे जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी ने काम किया है। बीच में कुछ ज्ञान के बातें शेर शायरी है तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 11:30 बजे रात्रि तक चलेगा। सभी को तो पता है नवरात्रि भी चल रहा है तो जरूर उसके बारे में कुछ जरूर सुनाऊंगा आप सभी को। रफी साहब जी हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत ना

आलोम शुकुरालो महफिले सजालो हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत साथियो वंसदग आवंद 14 अक्टूबर 2026 का ये रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। स्टूडियो की तरफ जब मैं आ रहा था तो तापमान दिन आशर का तकरीबन 14 डिग्री का था, तो थोड़ा बहुत ठंड होने लगा है। तो आज का इस रात्रि का शुरुआत मैं करने वाला हूँ एक हसीन भजन के साथ। बहुत ही जबरदस्त भजन है, आप सभी तो जानते हैं नवरात्रि चल रहा है। तो फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के डायरेक्ट से लीड अल उमरूपर्स और मीड वर्कर्स की तरफ से आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं को एक शुभ नवरात्रि हम लोग पेश करते हैं। और सभी माताओं से यही प्रार्थना विनती है कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं सभी पूर्ण होती जाए। अति सुंदर भजन महान गायक इस जमाने का फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री माएस्ट्रो जुबिन नौटियाल के ब्यूटीफुल आवाज में जय माता दी।

का भजन आप श्रोताओं ने सुने अभी, जो खास करके मैं चलाया नाम स्वाहन हिंदुस्तानी रेडियो के डायरेक्टली लेडर अल उम्रूपर्स और मीड वर्कर्स की तरफ से आप सभी श्रोताओं को एक शुभ नवरात्रि। तो प्रोग्राम का शुरुआत मैं करता हूं साथियों गीत और गजल ओत इस गोद नामक कार्यक्रम साप्ताहिक प्रोग्राम, और लेकर चलते हैं आप सभी को एक पुराना मूवी प्रेम पर्वत जो बनाया गया था 1973 तक में, जिसका महान संगीतकार द वन एंड ओनली मैस्ट्रो जयदेव था, और उसी फिल्म में से अति सुंदर बयान मैंने चुना हूँ आज के इस ओपनिंग सिलेक्शन के लिए। और लाते हैं प्रोग्राम में भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप ये अति सुंदर बयान सुनिए द फिल्म प्रेम भारत 1973 गकंपोनीड डोर मैस्ट्रो जयदेव एंड ऑल्सो रिटन बाय द मिस्टर हिमसेल्फ। ये नीर कहां से बरसे ये बदरी है।

क्वीन ऑफ मेलोडी भारत रत्न लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में थी सुंदर बयान आप सुन रहे थे। कॉम्पोनेड और मास्टरो जयदेव एट फिल्म प्रेम पर्वत 1973। 4 मिनट बाकी है 8:30 बजने में। साथियों अगला बयान फ्रॉम द मूवी प्रेम पर्वत, एक और अति सुंदर बयान जान निशार अख्तार का लिखा हुआ है अति सुंदर बयान, रात पिया के संग जागीरे सखी। एक बार फिर भारत रत्न लता जी, वट एन कॉम्बिनेशन वॉज दिट, प्रachtige nummers uitgebracht in de jaren 60-70 met maestro Jaydeo। मिलके सुनते हैं अति सुंदर बयान आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

रात पिया के संग जागी रे सखी। एक पुराना मूवी प्रेम पर्वत 1973 लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में कंपोनियर डोर माएस्ट्रो जय देव। पूरे 8:30 का वक्त हो चुका है साथियों, बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं कुछ पुराने पुराने नगमे। अगला बयान एक बार फिर माएस्ट्रो जय देव जी के साज और संगीत पर, ये अति सुंदर मजेदार सॉन्ग मुझसे मत रूठो मेरी जान, क्या बात है। द फिल्म सपना

बरसती घटा हो, ना जाने तुम क्या हो, ऐ मेरी हमदम। निगाहों को चुरा के किसी को तड़पा के, चलो न बल खा के जरा रोक लो ये कदम। ऐसी सुहानी रुत फिर कभी न आएगी, मुझसे मत रूठो रूठो मत रूठो मेरी जान चली जाएगी। मेरी जान मुझसे मत रूठो ना रूठो।

0: चली जाएगी मेरी जान।
1: क्या बात है, मजेदार सॉन्ग कंपोनेट दोर मैस्ट्रो जयदेव जी, die zelf een serieuze componist was, had ik dit niet verwacht. Hè? Hij is een mazedare hot shot. Nog maar een visage keer was met een persoonheid uit de film Sapna. V.N. Mangal is de lyrics. आगे बढ़ते हैं साथियों, एक मिनट गुजर चुका है 8:30 बजकर। अगला बयान एक बार फिर आई डू फिल्म सपना, और इस बार पद्म भूषण मन्ना डे जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये दर्द और मतलबी सॉन्ग आप सुनिए। गकंपोनेर्ड आल्सो डोर मैस्ट्रो जयदेव एंड गेस्क्रीव डोर वी एन मंगल।

महान गायक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का पद्म भूषण द ग्रेट मन्ना डे जी के ब्यूटीफुल आवाज में इतनी सुंदर बयान आप सुन रहे थे 1969 फ्रॉम द मूवी सपना गकंपोनीर्ड डोर मैस्ट्रो जय देव। साथियों वक्त हो गया है कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना। पुराने जमाने के और इस जमाने के कुछ पढ़े लिखे लोगों, कुछ मशहूर मशहूर लोगों और कुछ विद्वानों ने जिंदगी के बारे में इतनी सुंदर सुंदर बातें लिखे हैं सिद्धांत के रूप में, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ ये यश उम्मीद लेकर कि इन बातों से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो हम लोग सीखते ही रहेंगे। तो जरा गौर फरमाएं। ग्रेट फुटबॉल प्लेयर आलर टाइड फन नीदरलैंड मैस्ट्रो योहान क्रुइफ ने कहा है, द बॉल इन हिज स्पेलन फ्रॉग मेर टेक्निक दन हम 2000 केर हॉग होल्डन। महाज्ञानी श्री अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, एक वीट वार ऑन फील मेंसन ग्राग हॉट हाकन बाय दिस गेलिगनहाइट सीट मेन डायरेक्ट हेट रिजल्ट। Muzikant, schilder en schrijver Herman Brood ne kaha hai, ik ben ooit gestopt met drinken. Het waren de zwaarste 20 minuten van mijn leven. Daar bedoelt hij geen alcohol mee, hè, denk ik. Hij zegt, ik ben nooit gestopt met drinken, maar met wat, zegt hij niet. Constantijn Huygens ne kaha hai saathiyon ki, het leven is een droom, maar dromen is geen leven. Onthoud dat, hè. Grootmeester Wim Kan ne kaha hai yaroki, wie de berg beklimt alleen omdat hij denkt dat boven iets moet zijn, zal altijd als hij boven komt vragen, waar heeft het allemaal voor gediend? Alleen wie onderweg geniet van het klimmen en het uitzicht op zich, die zal misschien begrijpen dat niets voor niets behoeft te dienen. Nog eentje van maestro Johan Cruijff. Je kunt beter ten onder gaan met je eigen visie dan met de visie van een ander. Een hele goeie hoor. Martin Luther, het geloof is een lege hand. Gottfried Bomans, het gelukkigst is hij die er het minste prijs op stelt het te worden. Gerard Rief, zelfmoord, ach, op mijn leeftijd loont het eigenlijk de moeite niet meer. En de laatste van vanavond, K.H.S.R.I. Richard Wagner. Nee. De dwaling is de moeder van het inzicht. Zo zat je op je. आप कुछ ज्ञान के बातें सुन रहे थे, यही आशा उम्मीद लेकर इन बातों को मैं आप सभी तक पहुंचाया कि इन बातों से हमेशा की तरह हम लोग कुछ ना कुछ तो सीखते ही रहेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं। 18 मिनट रह गया है 9 बजने में। साथियों अगला बयान एक और अति सुंदर बयान है फ्रॉम द सेम मूवी प्रेम पर्वत 1973 मैस्ट्रो जय देव के साथ पर पद्मा सचदेव का लिखा हुआ ये अति सुंदर बयान आप सुनिए भारत रत्न लता जी की आवाज में, मेरा छोटा सा घर बार।

मेरा छोटा सा घर बार, फ्रॉम द मूवी प्रेम पर्वत, भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में कॉम्पोनेट और मैस्त्रो जयदेव और लेखक थी पद्मा सचदेव जी। दिल को थाम लीजिए, लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश जी को लाते हैं और वो सुनाता है आप सभी को एक नॉन फिल्म सॉन्ग जो कभी रिलीज नहीं किया गया इन फिल्म्स में और बना के कोनो कोना में रख दिया और कभी कभी लोग सुनते हैं, मार नगमा तो बहुत ही जबरदस्त है, खास करके हमारे तमाम मुका फैंस के लिए।

रचना है ये सारी, लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ मिलियंस, द माइटी मुकेश जी के ब्यूटीफुल आवाज में थी सुंदर बयान आप सुन रहे थे, स्पेशल फॉर द मूका फैंस। तो साथियों एक आखिरी बयान, पहला अध्याय में आप सुनिए पुराने नगमे के बाहर जो लेकर मैं आया हूँ, और खास करके मास्टरो जयदेव जी का ढेर सारे बनाए हुए नगमे आप सुन रहे थे। तो एक आखिरी बयान आप सुनिए मास्टरो जयदेव जी का कंपोज किया हुआ है ब्यूटीफुल सॉन्ग एड फिल्म चांद ग्रहण, और मास्टरो जयदेव जी का ये इन फन द बेस्ट नंबर्स कंपोनेट, लता जी की आवाज़ में आप सुनिए।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एनाथ्यूलिक वर्क्स बॉयस एंड गर्ल्स सोलो बिलो एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एनाथ्यूलिक बदाउट फॉर हेथ लॉइस्ट्रम। जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइश से जरूरी खबरें इस तिहारे डैंक ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इफाइट सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना, अपमान पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को देश भर में नहीं मिलेगा यार। आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेल फरमांडा टॉट फ्राइडाग टाइडेंस कंटोर यूरन ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स कंटोर 07-362-2047 और स्टूडियो कतार का नंबर है 07-362-2077। जो भी रेडियो का काम होना, देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो इवन फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना साथियों, रेक्लाम बनाते रहना, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी है ना, और इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद एंड नेचुरली हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। बेंटिनों के लिए फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सोशल मेयर दरमाल अब गहोर्त एल्क लास्ट डोंडरडाग फन द मंथ फन 6 uur s'avonds हैव वे लाइव कराओके ऑफ द रेडियो वार हेल वेल ओमरूपर्स एंड ओमरूस sters voor jullie live gaan komen zingen. Dus blijf luisteren hè? En volg onze social media en ook die van de omroepers. Daar gaat u zeer zeker lezen of horen waar wij binnenkort voor u live gaan zingen. Dan bent u ook van harte welkom hoor. तो जरूर आप जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने, और ये जो छोटा सा मोटा सा फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का परिवार बढ़ते जा रहे हैं ना, आप भी उसमें आकर शामिल हो जाए। सभी जानकारी 07-362-2077 फिर तक पर आप तार करें, dan wordt u automatisch doorverbonden naar onze teamleider van Faun in de Stani Radio, the one and only maestro Johnny Number One. To aap bhi hum logo ka member bane aur ko bhi banaye, aapko to dher sare fayda hi fayda hai. Iske bare mein zarur aap soche aur dhyan de. तो वारा के मुताबिक एक ही दम बढ़ते हैं आप सभी को लेकर प्रोग्राम की तरफ। कुछ नगमे है अभी सुनाने के लिए जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी ने काम किए हैं, और बीते हुए हफ्ते हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म टिंकू तक, जो रिलीज किया गया था 1977 में। धर्मेंद्र जी इस फिल्म में काम किया है मैं से ट्वीड ब्यूटीफुल वाइफ द ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी के साथ, महान संगीतकार जोरी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ है, और एक क्रेंस्टुक्य मैं सुनाता हूं क्योंकि ये नगमा भी कुछ अनहेल कोर्ट फैरसी एसेट फन किशोरदा देख बाय द 2 minuten तो मिलके सुनते हैं टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी टिंकू बाय किशोरदा कंपोनेड और एलपी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: Tinku Chale Apne Desh Ko, title, a song from the movie Tinku by Kishore Da, gecomponeerd door Lakshmikant Pyare Lal. 11 minuut guzar chuka hai, 9 bajkar, saathiyo, budhwar ka ratri ka program aap sun rahe hai. Agla bayan from the movie Tinku 1977. एक बार फिर लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साइट पर आप सुनिए किशोर दा ऑप्शन बेस्ट.
1: तुमको शेर खान का कसम
2: नहीं गाएगा,
1: वही तुमको अपना माशूक का कसम.
2: होचे नहीं गाएगा,
1: वही तुमको अपना वतन का कसम.
2: वल्ला नहीं गाएगा,
1: तुमको अल्लाह का कसम.
2: ओए अल्लाह का कसम हम नहीं गाएगा.
1: वही शेर खान तुमको इस मासूम बच्चे का कसम.
2: ओए ओए ओए बेईमान, तुम किसका कसम दे गया, हम जरूर गाएगा, जरूर गाएगा.

संगीतकार का बादशाह और शहंशाह हसीन का पुजारी किशोरदा के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना, जो खास करके निकाला गया फिल्म टिंकू से, कंपोज बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अगला बयान का करूं सजनी, मैं बता दूं साथियों की फिल्म टिंकू में सिर्फ 3 गाने मुझे मिला जो मैं आप सभी को सुना चुका हूं। तो अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक मूवी जो ऑल्सो वो रिलीज किया गया था 1977 में, फिल्म स्वामी। और इस जबरदस्त मूवी में धर्मेंद्र जी ने काम किया है मलकाए हुस्न द ब्यूटी क्वीन शबाना आजमी जी के साथ, ग्रेट एक्टर उत्पल दत्त जी ने इस फिल्म में भी काम किया है, सभी गाने लिखे सुरेश चटवल और अमित खन्ना ने मिलके, और महान संगीतकार राजेश रोशन जी का साज है। तो फिल्म स्वामी से आप नगमे सुनिए, और मैं लाता हूँ एक म्यूजिक लेजेंड को प्रोग्राम में, जबरदस्त गायक जिस पे हमें नाज है और होना भी चाहिए। लोगों तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा गाने यही महान इंसान ने दुनिया भर में गाया है, कोई बोलते हैं सेस्टक डाइसन, कोई बोलते हैं ताख्तक डाइसन, मार है वेल ही फील खसों, और डेंग दत है तो अब नंबर 1 स्टार्ट, मार है फील लिंक्स रेक्स एन पार अंदर इंफॉर्मेशंस, यू वेट एक्सैक्ट क्लोप्ट इट नोइट, मार वॉल्गेंस स्कैनर्स हैव्ड है द टाइटल van het meest gezongen Bollywood, dus Indiase nummers op Guinness Book Records. Ka karo sajni aina balam, maestro Dr. Yesudas ji op zijn best, een van zijn beste nummers. Goed luisteren. Joseph Yesudas, geboren 1940.

सिंह भाई मैस्ट्रो राजेश रोशन, और क्या अंदाज है, क्या आवाज है ये महान फनकार, द म्यूजिक लेजेंड येसुदास जी के ब्यूटीफुल आवाज में थी सुंदर बयान। आप सुन रहे थे द फिल्म स्वामी 1977। मिनट गुजर चुका है साथियों, 9:00 बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम गीत और गजल में संगीतकारों का दास्तान नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और नगमे चल रहे हैं जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी ने काम किया है। और हम पहुंच चुके हैं फिल्म स्वामी तक, जो रिलीज किया गया था 1977 में। अगला बयान फ्रॉम द सेम मूवी स्वामी, एक बार फिर संगीतकार का बादशाह और शहिनशाह, हसीनों का पुजारी की शोरदा ऑब्सेन बेस्ट यादों में वो।

Beautiful song, wonderful song. संगीतकारो का बादशाह और शहंशाह हसीनों का पुजारी द ग्रेट किशोर दा फ्रॉम द मूवी स्वामी 1977 गकंपोनीर्ड डोर राजेश रोशन एंड गेस्क्रीव डोर अमित खन्ना जबरदस्त सॉन्ग. अगला बयान और इस बार लाते हैं द क्वीन ऑफ द रॉक एंड रोल फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड का द रॉक एंड रोल क्वीन ने आयशा भोसले जी को लाते प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं क्लासिकल स्टाइल का सॉन्ग आज की रात कुछ होगी ऐसी बात कंपोनीर्ड और राजेश रोशन.

आज की रात कुछ होगी ऐसी रात, आप तो सुन चुके हैं। साथ दे रहा था आशा जी का मैस्ट्रो येसुदास जी, क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा जी, और संगीतकार राजेश रोशन का कॉम्बिनेशन तो आप सुन चुके। ब्यूटीफुल सॉन्ग हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम। आप सुन रहे 13 अक्टूबर 2020 का रात्रि का प्रोग्राम। घड़ी की तरफ देखता हूं तो 3 मिनट गुजर चुका है, 9:30 तो वक्त हो गया है यारो। कुछ शेर शायरी हो जाए ना हमारे शेर के चाहने वालों के लिए, कुछ ताजे ताजे लिखकर भेजे है भाई भूपेंद्र जी ने, जो मैं उन्हीं के अंदाज में कोशिश करूंगा आप सभी को सुनाने को। अर्ज किया है साथियों कि गुलाब का कोई भी रंग रख लिया जाए, गुलाब का कोई भी रंग रख लिया जाए, मगर पहचान खुशबू सी ही जाता है ना। गुलाब का पहचान तो दो दिखेर है, वीट में दतन रोसेस। इंसान भी वैसे ही है, इंसान भी वैसे ही है, इसका कोई भी रंग हो रूप हो जात हो, मगर पहचाना अपने अखलाक से ही जाता है, यानी कि अपने करैक्टर मोरालिटी से पहचाना जाता है। सही बात, जरूरत है जिसकी वो पास नहीं है, अब उनके दिल में वो एहसास नहीं है। तड़पते हैं दो पल बात करने को, तड़पते हैं दो पल बात करने को, शायद अब वक्त हमारे लिए उनके पास नहीं है। ये भी होता है यार। मत खोलो राज मेरा तुम पढ़ नहीं पाओगे, मत देखो जख्म मेरा तुम भर नहीं पाओगे, हर मुस्कुराता चेहरा खुशी का नहीं होता यारो, हर मुस्कुराता चेहरा खुशी का नहीं होता, तुम इस चेहरे को समझ नहीं पाओगे। मेरा दर्द बहुत कुछ लिख कर मिटाया है मैंने, बहुत कुछ लिख कर मिटाया है मैंने, ठीक ना होने पर भी अपना हाल ठीक बताया है मैंने, बात बात पर अपने दिल को बहलाया है मैंने, अपनी सोच में ही खोकर ना जाने कितने रातों को जाग जाग कर बिताया है मैंने, कोई समझेगा नहीं हाल मेरा, कोई समझेगा नहीं हाल मेरा, बस इसी फिकर में सबसे सब कुछ छिपाया है मैंने। अर्ज किया है साथियों की आंख की चमक पलकों की शान हो तुम, आंख की चमक पलकों की शान हो तुम, चेहरे की हंसी लम्हों की मुस्कान हो तुम, धड़कता है दिल बस तुम्हारी आरजू में, फिर कैसे ना कहूं मेरी जान हो तुम। कुछ शेर शायरी था, आगे के प्रोग्राम में कोशिश करूंगा कुछ और सुनाने को, तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं साथियों। अगला बयान अड फिल्म स्वामी सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को। एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी, पल भर में क्या हो गया।

भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं सुन रहे थे। द फिल्म की आखिरी बयान था एड फिल्म स्वामी का जो रिलीज किया गया था 1977 में। फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है कुछ पुराने पुराने नगमे आप सुन रहे हैं जिन मूवीज में द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी ने काम किए हैं। तो साथियों सभी नगमे सिर्फ चार नगमे थे फिल्म स्वामी में जो मैं आप सभी को सुना चुका हूं। अब लेकर चलते हैं एक फिल्म जो ऑल्सो रिलीज किया गया था 1977 में फिल्म किनारा। तो किनारा में से आप सॉन्ग सुनिए। इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया एक बार फिर ब्यूटी क्वीन अपने पत्नी के साथ द ड्रीम गर्ल मलकाय हुस्न हेमा मालिनी जी के साथ जितेंद्र भी इस फिल्म में काम किए हैं डॉक्टर श्रीराम लग्गू केशव मुखर्जी और ओम शिव पुरी फैमिली यानी देखा जाए रिलीज किया गया था 1977। सभी गाने महान लेखक और इस फिल्म को भी डायरेक्ट किया है लिखा इस फिल्म को भी द ग्रेट गुलजार जी और संगीतकार है द ग्रेट आरडी बर्मन। ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सुनिए एक ही ख्वाब कई बार देखा महान गायक हमारे पुराने जमाने का आईडीआर 60-70 द ग्रेट भूपेंद्र सिंह जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनिए कुछ लाइनें। मेरे ख्याल से हेमा मालिनी जी भी कुछ लाइनें उनके आवाज सुनेंगे आप इस नगमे में। तो मिलकर सुनते हैं

0: देखा है मैंने क्यों चिट्ठी है या कविता
1: अभी तक तो कविता है

0: मुझसे और आगोश में नन्हे को लिए
1: दिल्ली शट अप।
0: ला ला ला ला ला ला ला ला।

Wat hij een gevoelige nummer gezongen door Puranismanik Mahan Finkar, de great Bhupinder Singh uit de film Kinara 1977. Mahan Likhe Gulzar Ka Likha Hua Hai Zunder Bayan, gecomponeerd door Adi Burman. Agla Bayan, ek bar fir de great Bhupinder Ji Ka गजल स्टाइल सीन तो आप लोग जानते हैं, तो एड फिल्म किनारा आप ये सुनिए, कोई नहीं है कहीं, गुस्करीफ डोर गुलजार जी एंड कंपोनेट डोर मैस्ट्रो आरडी बर्मन, सैलमा खफुलग नंबर्स स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़ ताकड़

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

0: फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, जो आप श्रोताओं के समय लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। घड़ी की तरफ देखता हूँ तो 5 मिनट गुजर चुका है 10 बजकर रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। हमारे फूल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स, सुसलो बिलोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड अनतिलक बदंत फॉर हेट लाइस्ट्रन। जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइशें, जरूरी खबरें, इश्तिहारे, देंक अनफाउन हिंदुस्तानी रेडियो, सभी जानकारी बेल ऑफ न्यूज 7 3 5 6 2 2 7 4। बंत नख के लिए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और ओ को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी बेलो अपने सेफ तक ड्रीफेंसेस तक तो इंटरनेट सेफ नम फेयर्ड। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, और रिक्लाम बनाते रहना, और हो सके तो थोड़ा बहुत ढंढोड़ा भी पीट देना फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के बारे में, क्योंकि अगर आप लोग है ना तो हम लोग भी है, और आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सोच लिया अलमाल वेट लास्ट डोंडरदाग एल्क मांत है, लास्ट डोंडरदाग फन द मांत फन 6 uur s'avonds karaoke live op Radio Fahon. Dus luisteren. En volg onze social media en ook van onze omroepers. Dan gaat u zeer zeker zien waar wij binnenkort live voor u gaan optreden. En dan bent u van harte welkom. Sabi Jankari is kebar me aap daar kre op 070-365-2247. Kidam lekker chalte hai kuch nakhme aur reh gaya hai sunane ko oi the film Kinara, a gorgeous classical dance or song a music aap suniye, composed by maestro Adi Burman, aur ga rahe hai us zamane ke classical singer bhaiya Girish ji.
1: Dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dagina dag

क्या बात है, नाचत नाचत भी घुंघरू टूट गए। मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग बाय क्लासिकल डांस सॉन्ग द ग्रेट आर डी बर्मन, गाने वाला था द ग्रेट गिरीश जी। 11 मिनट गुजर चुका है साथियों, 10 बजकर। अगला बयान एक और क्लासिकल गुरु वंदना है, आप सुनिए, अलग स्टाइल के गाने हैं और आप तो सुन रहे कि माएस्ट्रो आर डी बर्मन कितना माहिर था, सभी स्टाइल म्यूजिक देता था वो, क्लासिक हो या पॉप हो, रॉक हो, है कौन धालमाल। तो आप सुनिए एक ब्यूटीफुल गुरु वंदना पंकज मित्रा की आवाज में।

क्या है ब्यूटीफुल क्लासिकल सॉन्ग आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया एड फिल्म की नारा गुरु वंदना और गाने वाला था पंकज मित्रा कंपोज एंड अरेंज बाय मैस्ट्रो आदि बर्मन अल्फाजे था गुलजार जी का साथियों कुछ आखिरी शेयर्स हो जाए ना आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में अर्ज किया है दुआ मांगी थी आशियाने की दुआ तो मांगी थी आशियाने की चल पड़ी आंधी जमाने की मेरा दर्द कोई नहीं समझ पाया क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की पत्थर की है दुनिया जज्बात नहीं समझती दिल में क्या है ये बात भी नहीं समझती तन्हा तो चांद भी है इन सितारों के बीच लेकिन चांद का दर्द बेवफा रात नहीं समझती हर बात में आंसू बहाया नहीं करते दिल की बात हर किसी को भी बताया नहीं करते लोग मुट्ठी में नमक लेके घूमते हैं दिल के सखम हर किसी को दिखाया नहीं करते

मत देखो जख्म मेरा तुम भर नहीं पाओगे, हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता, हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता, तुम इस चेहरे को समझ नहीं पाओगे। आखिरी शेर साथियों, हर दिल का एक राज होता है, होना भी चाहिए। हर दिल का एक राज होता है, हर बात का एक अंदाज होता है, जब तक ना लगे बेवफाई की ठोकर, जब तक ना लगे बेवफाई की ठोकर, हर किसी को अपनी पसंद पर नाज होता है। रिमेंबर डेट। तो यारो, ये था कुछ आखिरी शेर। घड़ी की तरफ देखता हूं तो वक्त भी धीरे धीरे करीब आने लगा, लेकिन उससे पहले ये अति सुंदर एवरग्रीन सॉन्ग आप सुनिए, फ्रॉम द क्लासिकल संगीत का जो मूवी है किनारा में से निकला हूं। और ये तो आप सभी लोग जानते हैं, द एवरग्रीन सॉन्ग, क्वीन ऑफ मेलोडी, लता जी का और भूपेंद्र जी का, की नाम गुम जाएगा लेकिन मेरे जो आवाज है ना, ये तो सभी अभी तक पहचानते हैं, वही रह जाएगा ना। ब्यूटीफुल सॉन्ग, geschreven door de grootste schrijver aller tijden van India, Maestro Gulzar. Ook gecomponeerd door een van de beste music directors van onze Bollywood film industry aller tijden, de one and only Maestro Rahul Dev Burmanjika. क्या बात है, ये गाना जब जितने बार मैं सुनता हूँ उससे ज्यादा और अच्छा लगने लगता है। और गोस बम्स यानी केपफेल तो हमेशा की तरह ये देते रहते हैं। जरा ध्यान से सुनना गाने का जो धुन है और बोल है और अल्फाजे हैं, तिस अली मारोम फंत खनीत स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

Jabberjust is on a masterpiece of composing by maestro Adi Berman, en dat meen ik from the bottom of my heart, uit de film Kinara 1979, van het jij to dosto aap log to dek rahe hain, wacht bhi dheere dheere kareeb aa gaya hai. Ati sundar bayan gezongen door Lata ji en Bhupinder Singh, geschreven door maestro Gulzar en natuurlijk gecomponeerd door the one and only maestro Adi Berman. Toe zat je, jate jate ik vermijs mij chala doona. जैसे आप लोगों को मालूम है एपीएस के जरिए और शायद लोगों को भी मालूम है, तो कल जबकि 15 अक्टूबर है तो फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो का प्यारी सी और हम लोगों का कोलीखा मुफ्रौ बबली भागवंत जी का जन्मदिन है, तो इसी खुशी के उपलक्ष्य पर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के डायरेक्ट सिलेड अल उमरूपर्स सभी मीडिया वर्कर्स के तरफ से बबली जी को तहदिल से बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है मेडिट हेल मोय नंबर। और यही मिलके हम लोग विनती करते हैं कि इसी तरह हम लोगों का साथ बढ़ते रहे, कोलीगियालिटी बढ़ते रहे, मिलजुल के हम लोग काम करते हैं। रिश्ते में तो हमारा पतोहिया लगता है लेकिन हम लोगों का कोलीगा है। दिस एन हेले फाइन डग मॉर्गन नामंस अल कोलीगास डायरेक्टली लेडर एंड फॉर योर स्पेशल दिस प्रachtige verjaardag nummer gezongen door maestro Sonu Nigam ji. Happy birthday!

हैप्पी हैप्पी बर्थडे। कल जबकि 15 अक्टूबर 2020 है तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का अमरूपस्तर मफ्रॉ बबली जी का जन्मदिन है हम लोगों का, प्यारी सी प्यारी कोलेखा का। इसी उपलक्ष्य पे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का डायरेक्शन लीडर सभी अमरूपर्स अलमीड वर्कर्स के तरफ से बबली जी को तहे दिल से बधाइयाँ हैं, बधाइयाँ खुशियाँ ही खुशियाँ प्यार मोहब्बत के साथ पेश कर रहे थे। तो साथियों वक्त भी धीरे धीरे करीब आ गया है आप सभी से विदा लेने को। ये आशा उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूँ कि जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप सभी को सेवा करने में, ये आशा उम्मीद है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले रविवार शाम 5 बजे में आप श्रोताओं से फिर मिलने वाला हूँ सरनाम ही संगीत लेकर। पहला अध्याय दूसरा अध्याय में, पहला अध्याय में कुछ बैठक गाना, दूसरा अध्याय में कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक और तीसरा अध्याय में कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो हमें आप सभी इजाजत दें, हमारे बाद आप सभी को सेवा करने वाला है मास्टर जॉनी नंबर वन। और जाते जाते तो कुछ ना कुछ हमेशा की तरह गुनगुना देता हूँ दादा हिम्मत।

फूल को भी तुझको, रफी जी की, मोहम्मद रफी जी का ये सॉन्ग है। इस मूवी में हीरो था अजीत भाई, जो विलन के रोल अब लोग अब वो करते हैं। तो निगत इंद्रिय से स्टका ये सॉन्ग था। तो अगला गीत की ओर हम चल, ये गीत जो है नहीं किया तो करके देख, मेरे ख्याल से इस गीत को हम पहली बार सुन रहा हूं, नहीं किया तो करके देख। और ये है नाइटिंगेल, नहीं नहीं मुकेश का ये सॉन्ग है, करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ द मिलियन, माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। और मूवी का नाम है चार दिल चार रहे। और 1959 का ये सॉन्ग है दोस्तों, आओ सुना जाए।

करके देख, ये तीतल तो बहुत मस्त है भैया। ओ और ये है हाथ जाओ दीवाने आए, मूवी का नाम है सिंगापुर, ऑल इज गोल्ड फॉर

हट जाओ और दीवाने आए, और कौन सा दीवाना आएंगे, हम आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं। और सुना जाए माइती मुकेश का ये सॉन्ग है।

और ऐसा ठुमक के मत चलो, ऐसा ठुमक के मत चलो कि आपको ठुमका लग जाए। तो ये गीत बहुत यानी कि मशहूर है दोस्तों, और है दिल तेरा दीवाना।

फन होम के हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं फिर आप सबके लिए प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ, जिसका नाम है स्वप्न विज्ञान, यानी सपने। सपने तो हम सबको ज़रूर आते हैं, कभी अच्छे सपने तो कभी बुरे सपने। अच्छे सपनों में हम खुश होते हैं, बुरे सपनों में हम डर जाते हैं। सपने भी बहुत प्रकार के होते हैं सुनने वालों। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि कुछ पूर्वाभासी तथा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्वप्न कि जिन लोगों को सपने आए उसका उनको पूर्वाभ्यास पहले से पता चल गया था और उनके सपने इतने ऐतिहासिक बन गए कि दुनिया भर में मशहूर हो गए। ऐसे ख्वाब यानी सपने उन्हीं व्यक्तियों को आते हैं जिनका जीवन कुछ आध्यात्मिक रहा हो अथवा जिनमें सत्व गुण की प्रधानता रही हो। इनका समाधान फ्रायड के सिद्धांतों से कदापि नहीं हो सकता। उन स्वप्नों में बड़ी विचित्रता होती है जिनके द्वारा बहुत से व्यक्तियों को भावी घटनाओं का पूर्व ज्ञान हो चुका है तथा आज भी हो रहा है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कम से कम एक दो बार ही ऐसे प्रसंग अवश्य आते हैं कि उसके सपने सच होते हैं, जिसके कुछ ही उदाहरण दिए जा रहे हैं। सुनने वालों, ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं कि जिनको सपने आने से पहले ही उसका पता चल जाए कि सपने क्यों आएगा और सपने में क्या क्या चीज़ें उनको दिखाई देंगी।

महाराज हरिश्चंद्र का स्वप्न। भारत के बहुत बड़े राजा हुए हैं जिनका नाम हरिश्चंद्र था और वो सच के देवता कहलाते थे। सुनने वालों, उन्होंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। महाराजा हरिश्चंद्र ने सपने में ही महर्षि विश्वामित्र को अपना संपूर्ण साम्राज्य दान कर दिया था और अगले ही दिन उन्होंने वास्तव में अपना राज्य त्याग दिया। सुनने वालों, महाराजा हरिश्चंद्र जी को ये सपना आया कि इन्होंने अब विश्वामित्र जी को सारा राज्य दान कर दिया और उन्होंने अगले दिन वही सच कर दिखाया और अपना सारा राज्य दान में दे दिया और उसे त्याग दिया। अभिनेता चंद्रमोहन का रेस का घोड़ा। एक प्रसिद्ध अभिनेता स्वर्गीय चंद्रमोहन का घोड़ा रेस में दौड़ने वाला था, परंतु रात को ही चंद्रमोहन को स्वप्न आया कि उनका घोड़ा दौड़ते दौड़ते खड्डे में गिरकर मर गया है और सचमुच उनका घोड़ा ठीक उसी स्थान पर मर गया जहां उन्होंने स्वप्न देखा था। सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। बाइबल में बुद्धिमान का स्वप्न। बाइबल में बालक यीशु ने जन्म पर उन्हें देखने आ रहे बुद्धिमान लोगों में से एक को सपने में हेरोड की तरफ ना जाने का निर्देश मिलता है और वह दूसरे रास्ते से अपने देश लौट जाते हैं। जोसेफ के सपने में एक देवदूत उसे बच्चे और पत्नी के साथ मिस भाग जाने का निर्देश देते हैं। इन स्वप्नों के कारण यीशु के प्राणों की रक्षा हो सकी।

हिल प्रिक तथा प्राचीन शिलालेख। प्रोफेसर हिल प्रिक ने एक प्राचीन शिलालेख का संपूर्ण एवं स्पष्ट उत्तर स्वप्न में ही एक बेबीलोन के गाइडर से प्राप्त किया था।

वासुदेव का स्वप्न। मथुरा के कारावास से भगवान श्री कृष्ण को बचाकर नंदगांव ब्रिज में पहुंचाने में सपनों का योगदान कुछ कम ना था। उसी रात माया रूपनी देवी वासुदेव के स्वप्न में आकर उन्हें ऐसा करने का आदेश ना देती तो सत्यवादी वासुदेव शायद ऐसा कभी नहीं करते।

लेखकों की रचनाओं की प्रेरणा। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के कई गीतों के भाव स्वप्न में ही प्राप्त हुए थे और बाण भट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक कादंबरी भी उनके स्वप्न की ही देन है। सुनने वालों, आप सब जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर बहुत बड़े कवि लेखक हुए हैं जो बंगाल के थे। तो उनको जितने भी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी कादंबरी, और उनका उन्हें ज्ञान स्वप्न में ही पहले हो गया था।

जूलियस सीजर की पत्नी का स्वप्न। शेक्सपियर ने अपने नाटक जूलियस सीजर में एक स्वप्न का जिक्र किया है। रोमान साम्राज्य के ऐतिहासिक लेखक प्लूटक के अनुसार सीजर की पत्नी कानिलिया ने एक रात स्वप्न देखा कि उसके पति सीजर की हत्या हो गई है तथा विरोधियों का षड्यंत्र सफल हो गया है। अगले दिन उसने अपने पति से अनुरोध किया कि आज वह दरबार ना जाएं। उसी दिन दरबार में उनकी हत्या हो गई।

सुनने वालों, आज मैं आपको अलग अलग लोगों के वृत्तांत सपनों में सुना रही हूँ जिनको सपने आए और वह हकीकत में वो सच हुए। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। JW डने का स्वप्न। JW डने ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में अपने एक स्वप्न का वर्णन किया है। वह एक बार स्वप्न में एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा था जो एक द्वीप था और जो ज्वालामुखी के खतरे में पड़ने वाला था क्योंकि उसकी दरारों से भाप उफन कर निकल रहे थे। उसके मन में वहाँ के 4000 निवासियों को बचाने की लालसा जागृत हुई। उसने उसकी यथार्थ संभव चेष्टा की और जितनों को बचाया जा सकता था उसने बचाया। कुछ ही दिनों बाद डने ने डेली टेलीग्राफ नामक पत्रिका में माल्ट पीले ज्वालामुखी के विस्फोट की चर्चा पड़ी जिसमें पश्चिम द्वीप समूह में मार्टिनी के द्वीप के सेंट पियर नगर में 40,000 व्यक्तियों को उनकी प्राण रक्षा के लिए जहाज़ों द्वारा उन्हें स्थानांतरित करने का जिक्र था।

भूतपूर्व राष्ट्रपति कनेडी की दुर्घटना। कनेडी को अपने साथ होने वाली दुर्घटना का अभ्यास स्वपन द्वारा एक दिन पहले ही हो गया था। वह टेक्सास की यात्रा पर गए और गोली लग जाने के फलस्वरूप उनकी यह लीला समाप्त हो गई।

यह है फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। आप सब सुन रहे हैं फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डफरिन की प्राण रक्षा। यह सन 1885 यानी आख्तिन फाइफन ताख्तक में भारतवर्ष के वायस राय थे। एक बार आयरलैंड में उन्होंने अपने किसी मित्र के घर पर स्वप्न देखा कि जंगल में जाते हुए किसी व्यक्ति के करहाने की आवाज़ सुनी, यानी रोने की आवाज़ सुनी, जो पीठ पर बड़ा सा संदूक लादकर ले जा रहा था, जो इतना विकराल तथा विभक्त था कि वह डरकर जहां के तहां ठहर गया। डफरिन ने जोर से पूछा, इस बॉक्स में क्या है? इतने पर ही वह व्यक्ति अदृश्य हो गया और डर के कारण उनकी नींद खुल गई। कुछ समय पश्चात उनको फ्रांस में राजदूत के रूप में जाना पड़ा। एक दिन ब्रांड होटल में किसी राजनीतिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब वह ऊपर की मंजिल में जाने वाली लिफ्ट के पास थे तो वह देखकर चकित रह गए कि स्वप्न में देखा गया विभत्स चेहरे का व्यक्ति ही उस लिफ्ट को चला रहा है। वह होटल के मैनेजर के पास गए और उस लिफ्ट मैन के बारे में पूछताछ करने लगे, तो इतने में ही वह लिफ्ट मकान की पांचवीं मंजिल तक पहुंचकर टूट कर गिर पड़ी और उसमें सवार सभी मारे गए। स्वप्न के कारण उनकी प्राण रक्षा हो सकी।

अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। युद्ध भूमि में अर्जुन का स्वप्न। माँ भारत में जब अभिमन्यु मारा गया तो उसके पिता अर्जुन ने आवेश में आकर यानी गुस्से में आकर दूसरे दिन सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ का वध करने की कठोर प्रतिज्ञा की। अपने शयन कक्ष में जाकर यानी अपने स्लाप कामर में जाकर श्री कृष्ण के आदेशानुसार महर्षि व्यास द्वारा बताए गए शिव मंत्र का जाप करता हुआ वह निद्रा देवी के अधीन हो गया। निद्रावस्था में अर्जुन ने एक स्वप्न में देखा। स्वप्न में श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तुम पशुपत नामक सहारक अस्त्र से ही कल जयद्रथ को यम सदन पहुंचा सकते हो, इसलिए मन ही मन में शंकर जी का स्मरण करो। भगवान शंकर की कृपा से उनके भक्त होने के नाते यह शस्त्र तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। श्री कृष्ण के सुझाव के अनुसार अर्जुन ने स्वप्न में ही आचमन किया और शंकर जी का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। स्वप्न में ही अंतरिक्ष में उड़ते रहे। उत्तर दिशा में एक सफ़ेद पर्वत देखा। कुबेर सरोवर के दर्शन हुए जिसमें खिला कमल पुष्प देखा। गंगा तट पर साटिक मणियों के पर्वत थे। मंत्रशर पर्वत देखा। ब्रह्मतुंग एवं अन्य काले पहाड़ देखे। रत्नों से भरा समुंदर देखा। फिर एक पर्वत पर भगवान शंकर के दर्शन हुए। प्रणाम सूक्ति उपरांत अर्जुन की अभिलाषा देखकर हंसते हुए बोले, वत्स पास के सरोवर से धनुष बाण ले आओ। वहां पर दो नागों का परिवर्तन देखकर अर्जुन ने उनसे पशुपात अस्त्र देने की प्रार्थना की। शंकर जी ने अभेदान के साथ पशु अस्त्र अर्जुन को प्रदान किया। अर्जुन का वह स्वप्न सिद्ध हुआ।

डूबते जहाज का दृश्य। डॉक्टर मेसन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 29 जनवरी यानी कि निघंतन देर तक को कप्तान समुद्र का एक जहाज सिडनी से कोयला भर कर चला। 9 फरवरी को उसमें पानी भरने लगा और वह एक गांव में जा बैठे और एक सप्ताह इसी प्रकार बहते रहने के बाद 16 फरवरी को किसी जहाज ने उन्हें बचा लिया। 9 फरवरी को ही कप्तान की 13 वर्षीय कन्या को स्वप्न आया कि उसके पिता का जहाज डूब गया और उसका पिता फटे कपड़े पहने घर आया है। उसने अपनी माँ को जगाकर स्वप्न सुनाया।

ट्रिले द्वारा वर्णित स्वप्न। श्री ट्रिले ने अपनी पुस्तक में एक स्वप्न का वर्णन किया है। इंग्लैंड का प्रसिद्ध जहाज टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर अमेरिका जा रहा था। इंग्लैंड में एक व्यक्ति ने उसका एक टिकट खरीदा। जहाज रवाना होने से 10 दिन पहले उसने एक स्वप्न देखा कि जहाज का एक सिरा ऊंचा उठ गया है और उसके यात्री आसपास तैर रहे हैं। न्यूयॉर्क से कोई तार आने पर उन्हें यह यात्रा स्थगित करनी पड़ गई और टिकट वापस कर दिया। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ और 14 या 16 को डूब गया। सुनने वालों, आप सबको तो पता है कि टाइटैनिक के ऊपर फिल्म भी बनी है।

अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। मेरना ने भावी पति को बचाया। पोलैंड की एक लड़की ने मेरना को एक रात स्वप्न आया कि उसका भावी पति जो सेना में काम कर रहा था किसी सुरंग में फंसा है जहाँ मोमबत्ती जल रही है और वह बार बार मेरना का नाम लेकर पत्थर हटवाने की प्रार्थना कर रहा है। डॉक्टरों ने उसे पागल घोषित कर दिया। पर एक दिन वह एक किले के पास से गुजर रही थी कि एकाएक चिल्लाने लगी कि यही वह स्थान है जहाँ उसका भावी पति फंसा हुआ है। पत्थरों को हटाकर दरवाज़ा निकाला जहाँ से निर्बल मैली कुचैली हालत में एक व्यक्ति घिसट कर बाहर निकला जो फौजी स्टोर की रखवाली कर रहा था जहाँ एक गोला गिरा था और वह दब गया तथा खाद्य सामग्री और मोमबत्तियों के सहारे जीवित बना रहा। श्री विष्णु महादेव भट्ट सन 1910 में श्री सावकार के दल में एक क्रांतिकारी थे और सन 1915 में लोकमान्य तिलक केसरी और मराठा पत्रों के सहायक संपादक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में 3 स्वप्नों का वर्णन किया है जो इस प्रकार थे।

अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। गणेश गीता का ठीक स्थान। उनके एक मित्र श्री डी के साठे BA BSc एक अच्छे वैज्ञानिक सोंगली इंजीनियरिंग कॉलेज में गणेश के सच्चे भगत थे। एक दिन उन्होंने देखा कि स्वप्न में कोई अनजान व्यक्ति उन्हें श्री गोध लेकर के घर से गणेश गीता की रेशमी जिल्द खरीदने लाने को कह रहा है, जो ऊपर के कमरे में अलमारी के दूसरे खाने में तीसरे नंबर पर रखी है। चाहे उन्होंने पुस्तक व्यवसाय छोड़ दिया था, फिर भी पुस्तक वहीं मिली। सुनने वालों कि उन्होंने जो पुस्तक उनको चाहिए थी वो उनके घर की अलमारी के ऊपर ही पड़ी थी और उनको वहीं से मिली। सुनने वालों, ये है आप सबका अपना फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और मैं आपको थोड़ा और आगे बताने की कोशिश करूँगी छींक के बारे में। छींक तो हम सबको आती है और छींक को हम अशुभ भी मानते हैं, वो तो आप सब जानते ही हैं। एक नाक दो छींक काम बने सब ठीक, छींक प्रायः सभी दिशाओं की खराब होती है। सुनने वालों, हमारा नाक एक है लेकिन अपनी छींक महाअशुभ होती है, वो तो आप सब जानते हो। सुनने वालों, अपनी छींक राम बन गए हूँ, सीता हरण तुरंत ही भय हूँ। गौ की छींक मरण का संकेत देती है, कोशिश करने पर भी यदि छींक ना रुके तो मनुष्य जिस काम के लिए जा रहा है उसमें विघ्न अवश्य होगा। फिर भी सम्मुख छींक लड़ाई भरावे, छींक दहानी द्रव्य विनाशे। पीठ पाचली सुख अभिलाषे, बाई छींक धन सदा प्रकाशे। ऊंची छींक कहे जयकारी, नीची छींक होए भयकारी। शराब संधनी सर्दी से होने वाली छींक, बच्चे और बूढ़े की छींक अथवा हट से छींकना निष्फल होता है। कन्या धोबिन रास वाला विशेष अशुभ होती है। आसन शयन शौच दान भोजन औषधि सेवन विद्याराम और बीज बोने के समय शुद्ध या विवाह में जाते समय छींक हो तो शुभ फलदायक होती है। सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको सुना रही हूँ छींक के बारे में थोड़ी सी, कि जब हम लोगों को छींक आती है तो हम उसे अशुभ मानते हैं। सुनने वालों देखो ना, हम लोग हिंदुस्तानी हिंदू लोग उसे अशुभ मानते हैं और बकरा लोग उसे शुभ मानते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने जब आई तो देखा जब छींक आते हैं तो कहते हैं खजोन ताइद। मैंने कहा वो छींक आने पर खजोन ताइद कहते हैं कि तुम ठीक ठाक रहो, तुम्हारी सेहत ठीक हो। और हम जब भारत में थे तो छींक आती थी कहते ओहो कहीं बाहर जा रहे हो, पैर झाड़ के जाओ, जाओ रुक जाओ एक सेकेंड के लिए। सुनने वालों, ये सब जो मैं आप सबको बता रही हूँ या सुना रही हूँ ये सब हमने स्वप्न विज्ञान से निकाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं छींक पर कार्य, कि जब हमें छींक आती है हमें कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और उसका फल क्या है। छींक पर कार्य, गमन करना, कि हम जब कहीं जा रहे हैं घर से निकल के तो कार्य में बाधा, उसका फल मिलता है अगर किसी को छींक आ जाए तो। एक से अधिक छींक, कार्य सरलता से संपन्न, कहते जब एक से ज़्यादा छींक आए तो कार्य शुभ हो जाता है। प्रवासी के बाईं ओर अशुभ है, कार्य करने जाना खरीद में लाभ। धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ विधन, अगर छींक आ जाए हम कुछ धार्मिक कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें बाधा आ जाती है। व्यावसायिक कार्य, कि अगर हम वैसे कुछ कार्य करने बाहर जा रहे हैं तो व्यापार में वृद्धि होती है। नए मकान में प्रवेश स्थगित करें।

इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या है ही, पर व्यक्ति की हर समस्या का समाधान भी उसके पास ही है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा।

पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते दोस्तों, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। उपस्थित हुए हैं ज्ञान की रोशनी कार्यक्रम लेकर आपके लिए। कुछ न कुछ संदेश हम सब खोज कर आपके लिए रखे हुए हैं। और जब नवरात्रि, तो इस नवरात्रि के अंतर्गत में आज के कार्यक्रम में सहयोग देने वाले हैं अमेरिका न्यूयॉर्क से पंडित लक्ष्मण विश्वानंद जी, और भारत देश से

उत्तर प्रदेश, पंडित पतंजलि जी जो अपनी ओर से हम सबको अपना संदेश को सुनाएंगे। तो कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम पंडित जी लक्ष्मण जी से आग्रह करूंगा कि हम सबको नवरात्रि के अंतर्गत में खास करके जो हमारे व्रतों होते हैं उसके बारे में भी कुछ सुनाने का और कोशिश करना।

हरि ओम, जय जय श्री राम। संजय जी, आपको और सभी सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां ये नवरात्रि के उपलक्ष्य पर। नवरात्रि जो है वो भगवती माता की विशेष कृपा हमारे ऊपर है। देख लिया जाए तो हमारे जीवन में भगवती माता हमको प्रेरणा देती है कि परिवर्तन हम ला सके अपने जीवन में। और कैसा परिवर्तन? जो पहला है, जो चार होती है, वो ये जो नवरात्रि है, चार नवरात्रि, उसमें दो गुप्त है, वो साधु संतों के लिए है ज्यादा से ज्यादा, और दो तो हम मना ही लेते हैं। सबसे पहला जो है तो वो वसंत ऋतु में जो चैत्र मास होते हैं उस समय पर हम जो मनाते हैं नवरात्रि, उस समय पर देखा जाए तो ये मदर नेचर जो है, मदर नेचर है ना, वही तो है हमारी प्रत्यक्ष जो भगवती माता है, मदर नेचर। तो मदर नेचर जो है उसमें परिवर्तन लाने हमारे आसपास में जो पेड़ पौधे हैं, फूल पत्ते हैं, जो है नए नए फूल निकलते हैं, नए नए पत्ते, नए नए सब कुछ, और कितने जानवर भी है जो हाइबरनेशन जिसे कहते हैं, वो सोए रहते हैं बहुत दिनों तक, तो वो भी प्रतीक्षा करते हैं कि राह देखते रहते हैं कि ऋतु बदल जाए, अच्छा हो जाए सब कुछ, गर्मी आने लगे तो हम बाहर निकलें। इसी तरह हमारे बच्चे भी और सब लोग राह देखती है कि हम ट्रेन में जाकर खेलें या तो बाहर जा सके, बहुत अच्छा समय आ रही है। तो हर्षोल्लास के साथ हम मनाते हैं और उसी समय पर हम उपवास भी करते हैं। अब सोचो उपवास क्या है? हाँ, उपवास हम माँ के लिए क्यों कर, माँ के लिए, माँ तो सब, माँ तो अपने बच्चे के पेट भरा देखना देखनी चाहती होगी, तो माँ तो हमको भूखा नहीं देखना चाहती है, तो हम उपवास किस लिए करते हैं? उपवास में फायदा हमारा ही होता। हमारा फायदा कैसे होती है? देखो, साइंस कहती है कि 16 घंटा तक कोई भूखा प्यासा रह जाए तो इनके शरीर जो है वो बदलने लगती है, उनमें क्षमता है, शरीर में जो क्षमता है, तो वो जो बीमारियां हैं हमारे अंदर में वो निकलने लग 16 घंटा के बाद में। तो हम तो 24 घंटा रह जाते हैं, उससे ज़्यादा भी कभी कभी। और उपवास भी कई तरह के हैं, कोई एक आहार, कोई अल्प आहार, कम आहार करते हैं, दो बार तीन बार, जिसका जो क्षमता हो, कोई बीमारी के कारण भी नहीं कर सकते तो वो अलग बात है, जिसका जितना क्षमता हो वो करे। वो निर्जल भी रह सकते हैं, वो एक आहार पर रह सकते हैं, अल्प आहार पर रह सकते हैं, दूध पर रह सकते हैं, फल आहार पर रह सकते हैं, कई तरह के, पर ये जो है हमारी फायदा के लिए है, हमारे जीवन में कोई बीमारी ना आए, क्योंकि ये पवित्रता के लिए है। हमारे जीवन में पवित्रता आए, अंदर से पवित्रता आए, हमारे शरीर में पवित्रता आए उपवास करने से, यह भी ये सब होती है हमारे जीवन में। मैं तो प्रत्यक्ष करके देख रहा हूँ। तो ये है, ये भगवती माता हमको अवसर प्राप्त देती है। और ये जो दूसरा है जो अब हम मना रहे हैं आज, अब इस समय पर, तो ये भी इसमें भी परिवर्तन हमको देखने में मिलती है कि पतझड़ में जब पत्ते झड़ने लगते हैं, सब कुछ सूख जाते हैं, तो हम अपना आंगन वगैरह सब कुछ घर साफ करते हैं, आंगन साफ करते, सब कुछ साफ करते हैं, ये तो साफ बाहर का है, ये तो पवित्रता तो होना चाहिए। हम पूजा पर भी बैठते हैं तो सबसे पहले ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा, है ना, तो वो करते हैं। तो पवित्रता जो है, हमारे अंदर के पवित्रता सबसे बड़ी चीज है। अंदर के पवित्रता जो है, काम को, क्रोध, मद, लोभ, मोह वगैरह, जो किसी से दुश्मनी है तो उसको कम से कम मनाने की कोशिश करो, उसको क्षमा याचना करो, या तो उससे कह दो कि मनाने का कोशिश करो, कुछ कुछ ना कुछ करो कि निकल जाए, है ना, ये सब कुछ हमारे जीवन में, तभी जाकर हम उत्थान के ओर जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो देखो, ये नवरात्रि जो है ये हमारे जीवन में एक बहुत बहुत, अब सप्तशती में चले जाओ, सोचो तो जितना कथा है सप्तशती में हमारे ऊपर सब घटित हो रही है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, यही तो है हमारे, जो शुंभ निशुंभ है और महिषासुर है और मधुकैटभ है, रक्त बीज है, ये सब राक्षस हमारे अंदर में ही है। हम तो बस ले देकर ये पूजा पद्धति तक रह जाते हैं। अब पूजा के बाद देखो, बुरा मत मानना पर मैं बोलने जा रहा हूं कुछ,
बच्चे भी देख राह देखने लगते हैं कि नौ दिन बिना मांस मछली के हम रह गए, और कितना दिन और इंतजार करना पड़ेगा, कितना दिन और रोक कर रखना पड़ेगा। सोचो, अब जिस चार खंभे पर टिकी हुई है, सबसे पहला सत्य दया, तप सत्य दया तप और अहिंसा। तो ये अहिंसा जो है, बिना हिंसा के कोई मांस नहीं आती है, है ना। हिंसा करके तब मांस मिलती है। तो जब हिंसा करके मांस खाओगे तो अपना उत्थान कैसे होगा। भगवती माता के सभी संतान हैं, हम एक दूसरे को मारे तो कैसे हमारा उत्थान, भगवती माता कैसे हमको ऊपर की ओर ले जाएगी। तो ये सब सोचने वाली समझने वाली बात तो बहुत करनी है, पर ये बहुत लंबी हो जाएगी। पर मैं सभी को हार्दिक से शुभकामना बोलना चाहता हूँ। अच्छा, हरिओम, जय श्री राम।

अति सुंदर रूप से। और पंडित जी जो न्यूयॉर्क अमेरिका से हम सबको अपना संदेश नवरात्रि के अंतर्गत में सुनाए, ये कहावत तो आप जानते होंगे कि आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता खुशी की कीमत ना होती, अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से ही तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही ना होती। दोस्तों हमारे साथ युवा राधा सिंह जी भी उपस्थित है, उनसे पूछूंगा कहूंगा आग्रह करूंगा कि कुछ संदेश हमारी यौंग्र के लिए भी और सुनावे नवरात्रि के अंतर्गत।

युव राधा सिंह जी, जिन्होंने अपनी ओर से और जाकर के नवरात्रि के अंतर्गत में यानी कि हम सभी के लिए कुछ संदेश सुनाए हैं, हम एक सुंदर सा भजन के ओर बढ़ेंगे। फिर उसके बाद में विवान से बातचीत किया जाएगा कि वो क्या करने वाले हैं नवरात्रि में और क्या जानते हैं नवरात्रि के अंतर्गत।

या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमम। सुनने वालों, मैं कोशिश कर रहा हूँ भारत देश से पंडित पतंजलि से, जो हम सबके देश में कितने बार आकर के अपना और संदेश यानी कि सुंदर कथन हम सबको सुनाए हैं, वहाँ कोशिश कर रहा हूँ पंडित पतंजलि जी से, जिससे आग्रह करूँगा कि भारत देश से और हम सबको अपना शुभ संदेश इस नवरात्रि के अंतर्गत में सुनाने का कृपा करें।

या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तसे नमस्तसे नमस्तसे नमो नमः। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नवरात्र वर्ष में चार हैं लेकिन दो गुप्त और दो प्रत्यक्ष हैं। जो दो गुप्त हैं लोग इन्हें कम जानते हैं, लेकिन दो जो प्रकट हैं, एक शारदीय नवरात्र एक वासंतिक नवरात्र। तो ये दो नवरात्र हैं जो लोग प्रायः जानते हैं। तो दो नवरात्र की चर्चा बहुत है, वर्ष में दो बार है, तो शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र। और नवरात्र में देवी की आराधना की जाती है और उनकी आराधना पूजा जप मंत्र इत्यादि किया जाता है। इससे भगवती को प्रसन्न करने के लिए, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें बल बुद्धि सब प्रदान करें। इसलिए विद्यावंतम लक्ष्मीवंतम विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मी

तो हम भगवती की आराधना करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं। तो भगवती की आराधना माँ दुर्गा की जाती है ये 9 दिनों में। तो ये दुर्गा की आराधना और नवरात्र पर्व बहुत ही पवित्र पर्व है, बहुत ही अच्छा महोत्सव है। इसमें लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। तो ये प्रार्थना हम करते हैं कि आप भी इस नवरात्र में कोई शुभ कार्य करें, शुभ संकल्प करें, यही प्रार्थना के साथ। और भगवान से, दुर्गा से प्रार्थना करें क्या कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। हमें माँ दुर्गा शक्ति प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करें माँ दुर्गा से, उन्हीं के चरणों में वंदन करें और भगवती से प्रार्थना करें, आराधना करें। तो हम आप मिल करके भगवती से प्रार्थना करें। यही शब्दों के साथ वाणी विराम करते हैं। जय माता दी, जय श्री राम।

सुनने वालों, इस ट्यून से आपको भी मालूम हो गया कि हम अपने कार्यक्रम के समाप्ति की ओर आ चुके हैं। आज के कार्यक्रम में सहयोग देने वाले पंडित विश्वानंद लक्ष्मण जी, जो न्यूयॉर्क अमेरिका से अपना संदेश को हम सबको सुनाए, पंडित पतंजलि पांडे जी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हम सबको अपना सुंदर संदेश को सुनाए, श्रीमती राधा सिंह जी जो अपने ओर से हमारे यौंग्र के लिए कार्यक्रम में सहयोग दिए, और छोटे विवान ने जो अपना संदेश को हम सबको सुनाए। मैं हूँ आपका सेवक संजय, और आशा यही है कि इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ लाभ आपको जरूर प्राप्त होए। आशा यही है कि अगले सप्ताह का कार्यक्रम आप सुनते रहना। आप सभी को एक शुभ नवरात्रि प्रस्तुत है। नमस्कार।

0: है।
1: पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते दोस्तों, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। उपस्थित हुए हैं ज्ञान की रोशनी कार्यक्रम लेकर आपके लिए, कुछ न कुछ संदेश हम सब खोज कर आपके लिए रखे हुए हैं। और जब नवरात्रि, तो इस नवरात्रि के अंतर्गत में आज के कार्यक्रम में सहयोग देने वाले हैं अमेरिका न्यूयॉर्क से पंडित लक्ष्मण विश्वानंद जी, और भारत देश से उत्तर प्रदेश पंडित पतंजलि जी, जो अपने ओर से हम सबको अपना संदेश को सुनाएंगे। तो कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम पंडित जी लक्ष्मण जी से आग्रह करूंगा कि हम सबको नवरात्रि के अंतर्गत में खास करके जो हमारे व्रतों होते हैं उसके बारे में भी कुछ सुनाने का और कोशिश करना।

हरि ओम, जय जय श्री राम। संजय जी, आपको और सभी सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां ये नवरात्रि के उपलक्ष्य पर। नवरात्रि जो है वो भगवती माता की विशेष कृपा हमारे ऊपर है। देख लिया जाए तो हमारे जीवन में भगवती माता हमको प्रेरणा देती है कि परिवर्तन हम ला सके अपने जीवन में। और कैसा परिवर्तन? जो पहला है, जो चार होती है, ये जो नवरात्रि है, चार नवरात्रि, उसमें दो गुप्त है वो साधु संतों के लिए है ज्यादा से ज्यादा, और दो तो हम मना ही लेते हैं। सबसे पहला जो है तो वो वसंत ऋतु में जो चैत्र मास होते हैं उस समय पर हम जो मनाते हैं नवरात्रि, उस समय पर देखा जाए तो ये मदर नेचर जो है, मदर नेचर है ना, वही तो है हमारी प्रत्यक्ष जो भगवती माता है, मदर नेचर। तो मदर नेचर जो है उसमें परिवर्तन लाने लग, हमारे आसपास में जो पेड़ पौधे हैं, फूल पत्ते हैं, जो है नए नए फूल निकलते हैं, नए नए पत्ते, नए नए सब कुछ, और कितने जानवर भी है जो हाइबरनेशन जिसे कहते हैं, वो सोए